0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: time to
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: सुनो और गौर से सुनो. अरे पहले तालियां तो बजाओ. आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात.

0: Chillax with Radio Musty.
1: Wishing you all a very good morning. Suprabhat hai. Subah ki 5:06 hue hai aur aap sun rahe hai Chillax sirf Radio Musty par. Bahar mausam thoda thanda hai, thoda ya bahut, ये आप ही डिसाइड कीजिए। हवा में एक अलग सी ठंडक है और ऐसे मौसम में अगर सातों पुरानी एवरग्रीन सदाबहार गाने तो सुबह और भी खूबसूरत तो हो जाती है। और हमने इस सुबह का आगाज किया है एकदम फिल्मी अंदाज में, कौन है जो सपनों में आया, क्या गाना है ना। कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस भी किए जाते हैं। एंड आज की इस पहली घंटे में हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए आज यूजुअल सदाबहार अमर।

मेलोडीज वो गाने जो समय के साथ अब पुराने नहीं होते, बस और भी खास बन जाते हैं। तो चाहे आप इस समय किचन में चाय बना रहे हैं, ड्यूटी के लिए निकलने की तैयारी कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट ख़त्म करके घर लौट रहे हैं, या फिर कंबल के अंदर आराम से रेडियो सुन रहे हैं, आज की सुबह

0: आपके साथ बहुत ही खूबसूरत गाने लेकर आए हैं आपके नाम. नॉट टू फॉरगेट आपकी डेडिकेशंस मैसेजेस ऑन 5499 1294.
1: With Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जिन्हें सुनते ही पता नहीं क्यों चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ ही जाते हैं, जैसे कि ये गाना जो हमने अभी अभी चलाया, दैट्स फ्रॉम द मूवी जूली, और इस मूवी के सभी गाने बहुत ही खूबसूरत हैं। वेल, हो सकता है कि वो गाना आपने पहली बार बचपन में सुना हो, जिन गानों के बारे में हम बात कर रहे हैं, मम्मी पापा के रेडियो पर, किसी कैसेट प्लेयर पर या फिर टीवी पर संडे को फिल्म के साथ। और आज इतने साल बाद भी जब वही धुन सुनाई देती है तो लगता है जैसे समय थोड़ी देर के लिए पीछे चला गया। यही तो कमाल है सदाबहार गानों का, नए गाने रोज आते हैं, कुछ बहुत पसंद भी आते हैं, लेकिन पुराने गानों में एक अलग सी बात होती है, उनमें कहानी होती है, यादें होती है, और कभी कभी तो किसी खास इंसान की तस्वीर भी होती है। तो आज अगर कोई पुराना गाना सुनकर आपको किसी की याद आ जाए तो उस याद को रोकिए मत, मुस्कुराइए और कहिए क्या खूबसूरत समय था ना। और शायद इसलिए आज की ट्रैक्स सुबह रखी है थोड़ी नॉस्टैल्जिक, थोड़ी रोमांटिक और पूरी तरह सदाबहार। रेडियो मस्ती के साथ बने रहिए और सुनते रहिए वो मेलोडीज जो दिल से कभी रिटायर नहीं होती। एंड यस, विल गेट टू योर मैसेजेस, डेडिकेशंस थोड़ी देर में, बट अभी आप ये गाना एंजॉय कीजिए।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

चलिए जी, हमारे सबसे फेवरेट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर आपकी मैसेजेस हम देख रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी है यहाँ पर व्हाट्सएप पर सवेरे सवेरे दारेंड स्वीटा रवीश प्रीशा लवेश आयना पडू परिवार जो है रोशनवा से गुड मॉर्निंग विश करते हैं सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। एंड यहाँ पर विदुषा कुशा सिंह है सेबास्टोपोल से विश करती है सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। यस, हम भी आपको विश करते हैं, पप्पा की कृपा हमेशा अपने भक्तों पर हमेशा बनाए रखे, बस हम यही प्रार्थना करते हैं। एंड यहाँ पर आप एक मैसेज आपने भेजा है अपने पति के नाम, हु इज ऑलरेडी वेकिंग एट फिलिंग स्टेशन, तो उनसे कहना चाहती हूँ दैट यू लव हिम सो सो मच एंड दैट्स सो लवली ऑफ यू कि यहाँ पर आप प्यार का इजहार कर रही है। एंड एक

0: गणपति जी का गाना सवेरे सवेरे दिस मॉर्निंग आप रिक्वेस्ट करिए, ऑल राइट जरूर हम चलाएंगे। बहुत सारा प्यार एंड गुड विशेस कमिंग फ्रॉम रिया एंड आपका ये सैटरडे बहुत ही अच्छे से कटे यही हम विश करते हैं। तो विदुषा आपके नाम हम जरूर और आपके पति के नाम नेक्स्ट ट्रैक डेडिकेट करेंगे। एंड नेक्स्ट गाना जाता है नसरीन शाकिर केशव जो अभी काम कर रहे हैं और अब्दुल और सारा बानू जी की ओर से ये मैसेज आया है। जयशन जी प्रणाम आपको, सवेरे सवेरे जुड़ चुके हैं हमारे साथ और आज काम के लिए निकल चुके हैं, तो नेक्स्ट ट्रैक आपके नाम आपके दोस्तों के नाम तेम्बा उमिर नाम जीवन अंगुठिया आकाश शर्वन मेविन एंड रेडियो मस्ती टीम एज वेल, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली मैसेज। यहाँ पर ऑल्सो हमारे साथ रेशमा बगन जुड़ी हुई है और आपने एक गाने की रिक्वेस्ट की है जो हम ट्राई ज़रूर करेंगे चलाने के लिए एंड आप इसे डेडिकेट करते हैं पति साइलेश बगन के नाम, बच्चे हैं विनेश दिवेश एंड आपकी बेटी है खुशी मोगू से है और पूरे परिवार के नाम, ज़रूर एक खूबसूरत सा गाना क्यों नहीं ज़रूर चलाएंगे। एंड यहाँ पर नॉर्मल मैसेजेस में भी बहुत सारे मैसेजेस वी हैव विदिता हमारे साथ जुड़ी हुई है, आप है मोचिदा से और एक खूबसूरत गाना आपके नाम आज वेल, प्रेमिला है प्रेंदी पापा इसी बहुत ही आप एंजॉय कर रहे हैं ये खूबसूरत गाने सदाबहार गाने, वह सवेरे सवेरे ये सदाबहार गाने बहुत ही जचते हैं, तो आपके नाम आपके पूरे परिवार के नाम हम ज़रूर डेडिकेट करेंगे नेक्स्ट गाना। एंड इसी के साथ जी हाँ हम एक गणपति जी का गाना भी ज़रूर चलाएँगे थोड़ी देर में।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: अच्छा जी, घड़ी मिलाते चलिए, 6:45 बज रहे हैं और समय हो चला है आपको बताने का कि आज आपका दिन कैसे कटेगा। इट्स योर राशि टाइम, शुरू हम करते हैं।
2: एरीज मेष राशि,
1: आज का दिन आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। काम के सिलसिले में कोई अच्छी खबर मिल सकती है और आपकी मेहनत की तारीफ भी होगी। किसी पुराने काम को पूरा करने का मौका मिलेगा आपको। घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 9।
2: टॉरस वृषभ राशि,
1: आज आप थोड़ा सुकून महसूस करेंगे और मन में चल रही कोई उलझन कम हो सकती है। पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा, लेकिन बेकार के खर्चों से बचना बेहतर ही होगा। किसी अपने से दिल की बात करने का मौका भी मिल सकता है आपको। काम में धीरे धीरे तरक्की नजर आएगी। लकी नंबर है आज आपका 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
1: आज आपकी बातों में खास असर रहेगा और लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। काम की जगह पर कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। किसी दोस्त या पुराने जान पहचान वाले से अचानक बात हो सकती है। रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। दिल की सुनिए, लेकिन फैसले करते समय दिमाग को भी साथ रखिए। लकी नंबर है आज आपका 5।
2: कैंसर कर्क राशि,
1: आज का दिन अपनों के नाम करने का दिन है। घर में किसी छोटी सी बात से खुशी मिल सकती है और परिवार के साथ अच्छा समय क्या गुजरेगा। काम का बोझ थोड़ा ज्यादा हो सकता है, इसलिए बीच बीच में आराम जरूर कीजिए। किसी करीबी की सलाह आपके काम आ सकती है। लकी नंबर है आज आपका 2।
2: लियो सिंह राशि,
1: आज आपके अंदर पूरा जोश और भरोसा रहेगा। काम में अपनी बात रखने का मौका भी मिलेगा और लोग आपकी सोच को पसंद करेंगे। कोई नया मौका सामने आ सकता है जो आगे चलकर फायदेमंद रहेगा। रिश्तों में भी आज आपका अंदाज प्यार भरा रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 1।
2: वर्गो कन्या राशि,
1: आज का दिन थोड़ा संभल कर चलने का है, खासकर पैसों के मामले में। किसी पुराने काम को लेकर अच्छी प्रगति हो सकती है और आपकी मेहनत का नतीजा धीरे धीरे सामने आएगा। घर में किसी अपने के साथ अच्छी बातचीत तो होगी और अपनी सेहत और आराम को नजरअंदाज ना करें। लकी नंबर है आज आपका 4।
2: लिब्रा तुला राशि,

0: आज रिश्तों के लिए बहुत अच्छा दिन है। किसी खास इंसान के साथ दिल की बात शेयर करने का मन हल्का करने से मन हल्का होगा आपका। काम में आपको किसी की मदद मिल सकती है और पैसों से जुड़ा कोई फैसला कर रही है तो थोड़ा समय लेकर आप सोचिए। आज आपकी मुस्कुराहट और अच्छा बढ़ता व लोगों को आपके करीब लाएगा। लकी नंबर है आज आपका 7।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आज आप किसी पुरानी परेशानी का हल ढूंढने में कामयाब हो सकते हैं। काम के मामले में आपका ध्यान अच्छा रहेगा और कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। किसी अपने के साथ हुई गलत फहमी दूर भी हो सकती है। लकी नंबर है आज आपका 8।
1: सजिटेरियस धनुराशि,
0: आज का दिन हल्का फुल्का और खुशनुमा रहने वाला है। आपका मन किसी नई जगह जाने या कुछ नया करने का करेगा। काम के बीच थोड़ा समय या अपने शौक के लिए निकालना आपको अच्छा लगेगा। किसी दोस्त से मिलना या बात करना मूड और बेहतर कर सकता है। लकी नंबर है आज आपका 3।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज आपकी मेहनत रंग ला सकती है और काम में कोई अच्छी खबर मिल सकती है आपको। जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ेगी लेकिन आप उसे अच्छी तरह संभाल लेंगे। पैसों के मामले में किसी पर बिना सोचे भरोसा ना करें। घर में अपनों का साथ मिलेगा और लकी नंबर है आज आपका 10।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज नए ख्याल आपके मन में आएंगे और उनमें से कोई एक आगे चलकर बहुत काम आ सकता है। काम में किसी नए मौके पर गौर करना चाहिए और दोस्त या साथी की सलाह आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। लकी नंबर है आज आपका 2।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: आज का दिन दिल के लिए सुकून भरा हो सकता है। किसी अपने से हुई अच्छी बात आपका मूड बना देगी। काम में आपको अपनी रफ्तार थोड़ी संभल कर रखनी होगी ताकि कोई जरूरी चीज छूटे न जाए। एंड पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 7। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की राशि, आपके नाम। आई होप कि आपका दिन बहुत ही अच्छा कटे। चलिए, रिया की ओर से आपको शुभ दिन और शुभ शनिवार।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: north, south, east, or west. Tune into the very best. Radio Masti, your number one Balalut station.
1: RM2 Radio Masti.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
1: Radio Masti.
2: North, South,
1: 103.5.
2: East, West,
1: 96.4.
2: Center,
1: 99.4.
4: RM2 Radio Masti.
1: Radio Masti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti.
5: A very good morning, आप सभी को सुप्रभात. घर में लाते चलिए सुबह की ठीक 6 बज रहे हैं. समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम टीना के साथ है संध्या. नमस्कार आपको टीना.
6: नमस्कार. संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें. कैबिनेट ने शागस मुद्दे को लेकर मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच जारी बातचीत का जायजा लिया और बताया कि दोनों सरकारें समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रही है. साथ ही शागस द्वीप समूह को लेकर मालदीव के एक नागरिक संगठन की ओर से किए गए कथित क्षेत्रीय दावे का भी जायजा लिया गया. मॉरिशस सरकार संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान मालदीव की किसी भी आधिकारिक घोषणा या पहल पर करीबी नजर रखेगी और देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर उचित कदम उठाएगी. पिछले हफ्ते से ही ये बात सामने आ चुकी है कि मॉरिशस अपना एयर स्पेस खोलने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए सबसे पहले एक एविएशन काउंसिल का गठन किया जाएगा. नेशनल एविएशन काउंसिल आने वाले दिनों में बनाया जाएगा. प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते 3 सितंबर को इसकी घोषणा की थी. सैन्य रामसामी, जो 2001 से 2004 तक पुराने एयर एक्सेस एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य रह चुके हैं, उनका कहना है कि ये नई संस्था देश के लिए कई नए मौके लेकर आएगी. मॉरिशस में 16वां गोप्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कल 11 सितंबर से अब 13 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है. सम्मेलन में दुनिया के विभिन्न देशों से भारतीय मूल के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं. इसका उद्देश्य वैश्विक भारतीय समुदाय को एक मंच पर लाना, आपसी सहयोग बढ़ाना और प्रवासी भारतीयों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना है. विदेश में पाकिस्तान में सेना का प्रभाव केवल देश की सुरक्षा तक सीमित नहीं रही है, बल्कि अब पाकिस्तानी आर्मी सरकारी संपत्तियों, रियल एस्टेट और कानूनी व्यवस्था पर भी पूरी तरह से हावी हो चुकी है. लग्जरी सेलिंग क्लबों से लेकर असैधानिक कब्जे वाली जमीनों तक पाकिस्तानी सेना देश के अहम संसाधनों पर अपने अधिकार को लगातार मजबूत कर रही है. और अंत में मौसम का हाल. दक्षिण पूर्व की तरफ से पाए जा रहे सक्रिय बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है. साथ ही मस्कारेन समेत

0: पाए जा रहे एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंडी हवाओं का असर है। पूर्वानुमान आज सुबह देश भर में बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी, खासकर पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों और ऊंचे इलाकों पर। दोपहर बाद के समय भी ऊंचे इलाकों पर हल्की वर्षा होगी और अन्य जगहों पर बादल घिरे रहेंगे। रात्रि के समय भी बादल छाए रहेंगे, खासकर पूर्वी इलाकों और सेंट्रल बातों पर हल्की वर्षा होगी। तापमान सेंट्रल बातों पर न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परिसर में खराब रहेगा और दक्षिण की तरफ 2 मीटर 50 सेंटीमीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है, खासकर सुबह के समय। सूर्योदय 6:09 पर और सूर्यास्त शाम के 6:03 पर।
1: Your weather forecast on RM2
2: Radio Musti.
0: तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हमें आगे आ दीजिए, नमस्कार।
3: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
4: Chillax. With Radio Musti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन आप सभी को. 6:10 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं चिलैक्स सिर्फ रेडियो मस्ती पर. पहले घंटे में हमने सफर किया पुरानी सदाबहार गानों के साथ, वो मेलोडीज जो दिल को यादों से जोड़ती है. लेकिन ना वह थोड़ा सा मूड बदलते हैं. अब प्लेलिस्ट में कुछ सूदिंग, कुछ रोमांटिक, कुछ फील गुड और कुछ ऐसे गाने जो सुबह को बिल्कुल हल्का फुल्का बना दे. बाहर अभी भी ठंडक है, बहुत ही सुबह धीरे धीरे रोशन हो रही है. और जी हाँ, आज तो सैटरडे है, वीकेंड टाइम है. लेकिन लेट मी टेल यू कि वीकेंड की ताक में नहीं है लोग. लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मंडे ट्यूसडे आएगा, क्योंकि ये वाला जो मंडे है ना जो आ रहा है, इट्स स्पेशल, बहुत ही स्पेशल है. क्योंकि हम सेलिब्रेट करेंगे गणेश चतुर्थी का पावन पर्व. जी हाँ, गणेश चतुर्थी की तैयारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है. घरों में सफाई, सजावट, फूलों की तैयारी, कहीं मोदक की प्लानिंग, कहीं गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारी. और सबसे खूबसूरत बात है, त्यौहार आने से पहले ही घर का माहौल बदलने लगता है. एक अलग सी खुशी, एक अलग सी रोशनी और दिल में एक ही एहसास, गणपति बप्पा मोरया. तो आज की सुबह भी इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करते हैं. चाय या कॉफी जो भी आपके पास है, एक सिप लीजिए, वॉल्यूम आप थोड़ा सा बढ़ाइए और मेरे साथ है इस सैटरडे को बनाइए म्यूजिकल, पीसफुल और मस्त. मैं हूँ आपके साथ आपकी रिया एंड यू आर लिसनिंग टू योर रिलैक्स शो सिर्फ रेडियो मस्ती पर.
0: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.
3: वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
4: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरया.

0: Chillax with Radio Masti.
1: चलिए आपके मैसेजेस की ओर हम फिर से बढ़ते हैं और यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस और दिख रहे हैं कि बर्थडे मैसेजेस ज़्यादातर है. सो व्हाट्सअप पर हेलो नमस्ते जी. नमस्ते आपको भी. आज आपकी बेटी वियाना 11 महीने की हो गई है. सो सून 1 साल की होने वाली है. तो वियाना को हम बहुत सारा प्यार दे रहे हैं एंड लॉट्स ऑफ गुड विशेज. और आप रिक्वेस्ट कर रही है अगर हो सके तो एक बेटी वाला गाना. वेल दिस आवर तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट आवर अगर हो पाए तो हम ज़रूर चलाएंगे. बेस्ट विशेज कमिंग फ्रॉम मामा वर्षा, पापा विकेश, भाई है वायु, विहान. वाल आपके बेटे के नाम भी बहुत खूबसूरत है. नानी है जामना और लक्ष्मण परिवार जो बिल्वी मोबाइल से है. और हमारी ओर से भी वियाना को बहुत सारा प्यार. हैप्पी 11th मंथ. गणपति पप्पा मोरिया, किसी ने मुझे सुबह सुबह पुकारा. ऑलराइट, कौन है आप? यहाँ पर आप पति ईश्वर के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं तो प्रिया हमारे साथ है, जुड़ चुकी है और आपके पति के नाम नेक्स्ट ट्रैक ज़रूर डेडिकेट करेंगे. अमृता जी पौजेसाबले से है और गाने का जो सिलेक्शन है आपको बहुत ही पसंद आ रहा है. सो नेक्स्ट ट्रैक आपके पूरे परिवार के नाम. एंड यहाँ पर आज पत्नी माया चोकालाल का जन्मदिन है. सो हैप्पी बर्थडे आपको माया चोकालाल जी. बहुत सारी गुड विशेज आपको कमिंग फ्रॉम हस्बैंड राजेश. बेटी है निष्ठा, आपके दामाद है अमल और लिटिल दिव्येश सुकन फ्रॉम मिलविल. और आपके पूरे परिवार की ओर से आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे. तो हम भी आपको विश करते हैं वेरी हैप्पी बर्थडे. एंड ऑल्सो यहाँ पर एक मैसेज. ओम श्री गणेशाय नमः. हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल, स्पेशली आपके 4 grandchildren जो सेलिब्रेट कर रही हैं, रिद्धि, सोनाक्षी, अवनी एंड अ लवली वंश. सो यस, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. सुया बिहारी जी, हम ज़रूर इनके नाम एक खूबसूरत गाना डेडिकेट करेंगे. हैप्पी बर्थडे टू शांता सिबालक जी जो है कच्छे मिली तैसे फ्रॉम डॉटर रेशमा, चगामन, रेणुका, शांति, ऋषि, रविश, शिवान, सूरज, सभी परिवार की ओर से आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे.
0: चिलैक्स विद रेडियो मास्टी,
2: योर नंबर 1 बॉलीवुड रेडियो स्टेशन.

सुबह के 6:30 बजे। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज की प्रमुख खबरें। कैबिनेट ने शागस मुद्दे पर मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच जारी बातचीत का जायजा लिया। दोनों देश समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सरकार मालदीव की किसी भी आधिकारिक पहल पर करीबी नजर रखेगी। मॉरिशस में जल्द ही नेशनल एविएशन काउंसिल का गठन किया जाएगा। सिन्हा सामी ने कहा कि इससे देश रीजनल एविएशन हब और बिजनेस सेंटर बन सकता है। मॉरिशस में 16वां गुप्यो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कल से शुरू हुआ। इसमें दुनिया भर से भारतीय मूल की प्रतिनिधि शामिल हो रही है। विदेश में पाकिस्तान में सेना के बढ़ते दखल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सरकारी जमीन और रियल एस्टेट से जुड़े मामलों में सेना के हस्तक्षेप के आरोप सामने आए हैं। और अब समाचार विस्तार से। कैबिनेट ने शागस मुद्दे को लेकर मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच जारी बातचीत का जायजा लिया और बताया कि दोनों सरकारें समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। साथ ही शागस द्वीप समूह को लेकर मालदीव के एक नागरिक संगठन की ओर से किए गए कथित क्षेत्रीय दावे का भी जायजा लिया गया। मॉरिशस सरकार संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान मालदीव की किसी भी आधिकारिक घोषणा या पहल पर करीबी नजर रखेगी और देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर उचित कदम उठाएगी। कैबिनेट ने इस बात का भी जायजा लिया कि प्रधानमंत्री को नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल नैडक के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी से कैनाबिस पॉलिसी रिफॉर्म पर गठित तकनीकी कार्य समूह की रिपोर्ट मिल गई है। इस रिपोर्ट के सबसे पहले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नेशनल ड्रग कमीशन जांच करेगी। इसके बाद रिपोर्ट को कैबिनेट के सभी सदस्यों के बीच विचार के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट ने शिवसागर रामगुलाम की 126वीं जयंती के मौके पर शिक्षा मंत्रालय के तहत आयोजित की जा रही विभिन्न गतिविधियों का जायजा लिया। इन कार्यक्रमों का मकसद विद्यार्थियों को उनके विचारों, नेतृत्व और देश निर्माण में उनके योगदान के बारे में बेहतर जानकारी देना, देशभक्ति, जिम्मेदार नागरिकता और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना है। इसके तहत प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए कला और भाषण प्रतियोगिताएं, विरासत कोनों की स्थापना, संगीत कार्यक्रम, आजादी के संघर्ष और देश निर्माण पर चर्चा तथा युवा नेतृत्व कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही विद्यार्थियों को सर शिवसागर राम गुलाम के कार्यकाल में लागू की गई मुफ्त शिक्षा के महत्व को भी बेहतर ढंग से समझने का मौका मिलेगा।

0: पिछले हफ्ते से ही ये बात सामने आ चुकी है कि मॉरिशस अपना एयर स्पेस खोलने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए सबसे पहले एक एविएशन काउंसिल का गठन किया जाएगा। नेशनल एविएशन काउंसिल आने वाले दिनों में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते 3 सितंबर को इसकी घोषणा की थी। सनाम सामी जो 2001 से 2004 तक पुराने एयर एक्सेस एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य रह चुकी है, उनका कहना है कि ये नई संस्था देश के लिए कई नए मौके लेकर आएगी। उनके मुताबिक मॉरिशस हवाई यातायात के लिए एक रीजनल हब बन सकता है। इसके साथ ही सबसे अहम बात यह है कि देश व्यापार और बिजनेस के लिए एक बड़ा केंद्र बन सकता है। बाजार में भिंडी यानी लालू की कीमत में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जबकि सर्दियों के इस मौसम में इसकी सप्लाई भी कम होती जा रही है। उत्पादकों के अनुसार पौधों को प्रभावित करने वाली बीमारियों के कारण भी इसकी खेती मुश्किल हो गई है। कुछ किसानों ने भिंडी की पैदावार कम कर दी है, जबकि कुछ ने उत्पादन पूरी तरह बंद कर दिया है। इसके चलते बाजार में सप्लाई कम हुई है और कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इसकी जानकारी स्मॉल प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव कृपालु संग
1: Et surtout quand l'INFER prête dernier des trois semaines là, là-bas ça aussi même, on va trouver du tout.
2: हाल के सप्ताहों में बहुत ही ठंडी हवा बह रही थी, ऐसे में फूल दिखे ही नहीं। हो सकता है कि इसी कारण उत्पादन में कमी आई है। हमारे विचार से भिंडी काफी पहले बोई गई थी, अभी जो निकल रही है मंडी में है वे बहुत पहले ही रोप दिए गए थे। 15-20 वर्षों से एक तरह की बीमारी देखी जा रही है, हरे रंग का एक छोटा सा कीड़ा है जो भिंडी के बीच वाले हिस्से में बैठ जाता है, इसे काटता है, रस पी लेता है और प्रभावित करता है, सब क्लोरोफिल खा जाता है। भिंडी में जबरदस्त दवाइयां या कीटनाशक नहीं डाल सकते हैं।
0: मॉरिशस में 16वां गोपियों अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 11 से 13 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में दुनिया के विभिन्न देशों से भारतीय मूल की प्रतिनिधि शामिल हो रही है। इसका उद्देश्य वैश्विक भारतीय समुदाय को एक मंच पर लाना, आपसी सहयोग बढ़ाना और प्रवासी भारतीयों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना है। यह आयोजन भारतीय मूल के लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। गोपियों मॉरिशस के प्रधान चंद्र प्रकाश विनय डसोई से इस सम्मेलन के उद्देश्य के बारे में सुनते हैं।
3: एक उद्देश्य बड़ा सीधा बा, हमने हर बार दो दो साल में अंतर्राष्ट्रीय मिलन कर लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मिलन बोला जाए, जहाँ पर हमने देखी ला जा कि दो बरिस में का हो और नया जो चुनौती आवा था हमने के सामने ओकर खत्म का करे के चाहे, कौन नया चुनौती बार ओकर खत्म का करे के चाहे सब विचार करे के, और जिससे हमने के प्यायो डायस्पोरा जो है आगे बढ़ी और समृद्ध बनी और आगे बढ़ी। और एक में हमने के 16 गो देश से अभी डेलीगेट लोग आल हो जा, कई नए नए देश से हमने के नाता जुड़ल बा, वो लोग के भी डेलीगेट आल हो जा मॉरिशस।
0: और गोपियो बिजनेस कॉन्फ्रेंस के कोऑर्डिनेटर अनुपम जैन को सुनते हैं कि क्यों बिजनेस पर बल दिया जाना चाहिए।
4: गोपियों का पर्पस पीआईओ को स्ट्रॉन्ग करना है वर्ल्ड वाइड, और वो तभी हो सकता है जब बिजनेस कम्युनिटी एक साथ अलग अलग देशों से जब एक साथ आए गोपियों के। और जब देखिए किसी भी संस्था का जो मेन बेस है वो है कि हम उस संस्था में आदान प्रदान कर सकें, ट्रेड का, इन्वेस्टमेंट का, अपने सोशो कल्चर का, यूथ एक्सचेंजेस कर सकें, तभी वो कोई भी संस्था आगे बढ़ सकती है। और जो GIBC का उद्देश्य है गोपियो इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस का, वो यही है कि अलग अलग देशों से जो लोग हमारे बिजनेस ओनर्स आए हुए हैं उनको मॉरिशस, अफ्रीका, इंडिया ये कनेक्ट कर सके हम लोग। और जो ये सेशन होने जा रहे हैं उसमें 4 पैनल्स हैं अलग अलग, 4 सेशन में हमने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का पार्ट रखा है, टूरिज्म का पार्ट रखा है, उसके अलावा ब्लू ओशन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, उसके साथ साथ फाइनेंस है, AI है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके साथ साथ हम लोगों ने हेल्थ वेलनेस और योगा, आयुष ये भी सेगमेंट रखा है, विच इज़ मेडिकल टूरिज्म, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
0: वैसे ये सम्मेलन सिर्फ अतीत को याद करने के लिए नहीं, नज़र है भविष्य पर। युवाओं को जोड़ना, व्यापार और पेशेवर अवसरों को बढ़ाना, नेटवर्किंग को मजबूत करना और भारतीय संस्कृति एवं भाषा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना सम्मेलन के मुख्य मुद्दों में शामिल है। आलियन गोल्ड सिंगा

0: आपो के सीईओ डॉक्टर कमल आनंद हमें बैंकिंग की आवश्यकता पर बता रहे हैं।
1: एक्चुअली मैं बैंकिंग साइड से हूँ, मैं डिजिटल एसेट साइड से हूँ। आज के डेट में डिजिटल एसेट का बहुत ज़्यादा बूम है साउथ ईस्ट एशिया में। मैं वो चाहता हूँ वो सारे साइड में हो, बिकॉज ऑफ कि अभी पैरेलल बैंकिंग का टाइम चल रहा है, जिसके अंदर में बहुत सारे गवर्नमेंट, जैसे अभी हमने DMCC के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है और हम और भी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं। यहाँ भी मैं बैंकिंग के लिए ही आया हूँ, जिसके अंदर में अगर जो परमिशन मिलती है तो मैं बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग और क्रिप्टो बैंकिंग के को प्रमोट कर रहा हूँ, जिसके कारण से ये जो बैंकिंग प्रॉब्लम है, जो फंड जो है कहीं कहीं पे काफ़ी टाइम से पहुँचते हैं, अभी बहुत सारा सेंक्शन लग रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही फ़ंड ट्रांसफ़र, और उसके कारण से बिजनेसमैन को हो रहे लॉसेस बिकॉज ऑफ द ट्रांसफ़र टाइमिंग एंड ऑल, सो वी आर ट्राइंग टू डू इट शॉर्ट।
0: इस सम्मेलन के बारे में हमें मलेशिया के लिए मॉरिशस के उच्चायुक्त प्रवीण गंगू जी अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं।
2: हमें देखा जाए कैसे कौन कौन चीज यहाँ पे मॉरिशस में लोग सची को मिले सेवी करे यहाँ से, और यहाँ से क्या बिजनेस करा रही यहाँ से लास्ट जाए। हमने खोजा था यहाँ पे ब्रांच जो मॉरिशस करे वो गेट हुए, वो गेट हुए टू अफ्रीका, सेकेंड सेवी करेंगे बिजनेस करेंगे। सोमवार यूथ प्रोग्राम हमी के जवान मान कैसे कर जाए, जवान के सब के चले रहे आपके युग के सब रिलीज प्रोग्राम कल्चर रही इंटरमेंट एक्सचेंज कर हम लोग सबसे कर बजा दे गए पाँच सातों सात खाली मालेजी दूसरा हम ले जा लोग के सातों मालेजी से हम ले आए, और दूसरा देश भी आना बन जाए, जैसे श्रीलंका बा, म्यांमार बा, सिंगापुर बा, सिंगा बा, चेन्नई से भी बा,
0: रविवार 13 सितंबर को यह वैश्विक सम्मेलन समाप्त हो रहा है, कोप्यो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2026, जहां विरासत जो रही है, समुदाय एकजुट हो रहा है और भारतीय डायस्पोरा अपने भविष्य की नई कहानी लिख रहा है। पोर्ट्री में विदेशी मछली पकड़ने वाले जहाज़ों के फिश होल्स में फिर से ईंधन रखने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रथा पर पहले रोक लगा दी गई थी क्योंकि फिश होल्स का इस्तेमाल मछलियों को रखने के लिए किया जाता है, लेकिन लंबे समय तक समुद्र में रहने वाले इन जहाज़ों को बड़ी मात्रा में ईंधन की ज़रूरत होती है, इसलिए डीजल को अस्थायी तौर पर फिश होल्स में रखा जा सकता है और फिशिंग एरिया में पहुँचने के बाद इसे जहाज़ की ईंधन टंकियों में डाल दिया जाए। इसके बाद फिश होल्स को हाई प्रेशर यानी तेज दबाव वाले पानी से और खास सफाई सामग्री से अच्छी तरह साफ किया जाएगा, जिसके बाद ही वहां मछलियां रखी जाएंगी। हालांकि इस व्यवस्था में साफ सफाई और खाद्य सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। हमारी विरासत को बहुत देर होने से पहले बचाना, यही सरकार का मकसद है। सरकार नेशनल हेरिटेज अथॉरिटी बिल लाने की तैयारी कर रही है, जिसे मार्च 2027 तक संसद में पेश किया जाएगा। कला एवं सांस्कृतिक विरासत मंत्री महेंद्र गोंदिया का कहना है कि विरासत की सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा ताकि नुकसान पूरी तरह होने से पहले ही कदम उठाया जा सके। खासतौर पर जलवायु परिवर्तन, समय के साथ हो रही खराबी और तोड़फोड़ से ऐतिहासिक धरोहरों को होने वाले नुकसान को रोकने पर ध्यान दिया जाएगा। इस बीच तीन ऐतिहासिक जगहों पर बड़े पैमाने पर मरम्मत और संरक्षण का काम किया जाएगा। पॉम्पलमसिस बोटानिकल गार्डन, पुरानी सुप्रीम कोर्ट और मेबर्ग म्यूजियम में इस काम में फ्रांस भी मदद कर रहा है। इसके लिए 10 लाख यूरो की आर्थिक सहायता दी जा रही है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और त्वचा से जुड़ी समस्याओं के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई दवाइयों का स्टॉक आजकल देश में नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय की फार्मास्यूटिकल विभाग के अनुसार निजी सेक्टर में 900 से 1000 दवाएं उपलब्ध नहीं है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में ये संख्या लगभग 50 है। हालांकि इनमें से कई समस्याओं के इलाज के लिए दूसरे विकल्प मौजूद है। इन दवाओं की कमी के क्या कारण है और मरीजों के लिए क्या समाधान उपलब्ध है, विस्तार इस रिपोर्ट में।
3: रोज रोज की दवाइयां ढूंढना भी मुश्किल हो गया है। निजी फार्मेसीज में कई ऐसी दवाइयां हैं जिनकी मांग ज्यादा है, लेकिन जो मिल ही नहीं रही। ऐसी स्थिति जो अब फार्मासिस्ट के लिए आम सी हो गई है।

0: qui sont un problème de la peau, qui sont un problème diabétique, qui sont un problème de tension. Beaucoup de produits, ils manquent parce qu'ils peuvent constater ces derniers temps, ils souvent.
1: त्वचा, मधुमेह या रक्तचाप की दवाई की कमी है। दवाई जैसे ही मिलती है खत्म हो जाती है। लोगों को जगह जगह जाना पड़ता है। साल की शुरुआत से ये समस्या हो रही है और स्थिति सुधर ही नहीं रही। मंत्रालय के अनुसार निजी क्षेत्र में 90 से 100 दवाइयां उपलब्ध नहीं और कारण है विदेशी सप्लाईज में कठिनाई। सप्लायरों और उत्पादकों के पास दवाई की पैदावार के लिए इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, यूक्रेन युद्ध आदि के कारण सप्लाई चेन प्रभावित है और यूक्रेन, चीन जैसे देश ही ये सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार करते हैं। इन्हें बनाने में ही देरी हो रही है।
2: Et peut-être personne n'a pas réalisé que l'Ukraine, la Chine, l'Inde, c'est un gros producteur de matières premières. Nous trouvons-nous dans une période que ce produit-là n'est pas produit à temps.
1: इसका संबंध सार्वजनिक क्षेत्र से भी है, जहां करीब 50 दवाइयां आउट ऑफ स्टॉक हैं। सप्लाई प्रणाली में बाधाओं के कारण। मंत्रालय आश्वस्त करता है, ब्रांड्स की कमी का ये अर्थ नहीं कि इलाज नहीं हो पाएगा। इनकी जगह पर अन्य दवाइयां भी उपलब्ध हैं।
2: Sa confiance qui vous gagnez avec un produit là, vous pensez c'est ça qui peut soigner.
1: जब किसी दवाई से कोई ठीक होता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि यही ब्रांड सही है। लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि दवाई का मॉलिक्यूल जरूरी है, न कि ब्रांड। डॉक्टर को भी मरीजों को आश्वासन देना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट हैं। ब्रांड बदल भी जाए तो भी दवाई में वही मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं।
2: Et nous sommes capables de donner confiance à sa patiente-là, qui malgré pendant combien de mois tu n'as pas pu te prendre ça là, te stabiliser, le tlala, ce nom différent, mais de contenir le même produit.
1: अधिकारी मरीजों से मांग कर रहे हैं कि दवाई की कमी के कारण अपना इलाज न रोकें, इसके बदले डॉक्टर की सलाह लेकर सब्स्टिट्यूट यानी अन्य विकल्पों के साथ इलाज जारी रखें।
3: विवरण याचना मिश्रा का रहा। इंडोनेशिया में अनाक क्रकातुआ ज्वालामुखी 4 सितंबर से लगातार फट रहा है और बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी की राख हवा में फैल रही है। इसका असर पहले ही इस इलाके के कुछ एयरपोर्ट्स पर पड़ा है और उन्हें बंद करना पड़ा है और अब मॉरिशस पर भी इसका असर पड़ सकता है। ओशियानियोग्राफर वासन कुपेमुचू के मुताबिक इस ज्वालामुखी के फटने का असर हमारे इलाके में भी महसूस किया जा सकता है। ज्वालामुखी की राख में सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैस होती है और ये गैस जब हवा में फैलती है तो एयर क्वालिटी और मौसम की स्थिति पर असर पड़ सकता है। बुधवार तक ज्वालामुखी से निकला राख का बादल मॉरिशस के करीब 1800 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। इन पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बारिश हुई है लेकिन हमारे जलाशयों को भरने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। CWA के महानिदेशक श्याम तानू के अनुसार महोबा कुआ अभी भी 39% भरा है। उनका कहना है कि करीब 40% होने पर भंडारण का संचालन अच्छी तरीके से किया जा सकेगा जबकि 20% से कम होने पर स्थिति चिंताजनक हो जाएगी। उनको सुनते हैं।
4: इन दिनों मारोवाकवा और लानिकोलिया में पानी का स्तर उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है कि हम दोबारा अपने फैसले देख सकें। जब तक पानी का सतह इस तरह बरकरार रहेगा हम सप्लाई के वक्त पर दोबारा काम करेंगे। मारोवाकवा 39% भरा है इसलिए वहां से जल को पंप नहीं कर सकते। जब वो 20% तक पहुंचता है तो ये कीचड़ वाला पानी होता है। नवंबर दिसंबर तक मोगोवाकवा में सिर्फ 20% पानी का संचालन करना पड़ेगा।
5: लीला पो कंसेय नू ए अथॉरिटी पो अजेट पो गेटे एस्ट के नो का रिकंसीडर नो डिसीजन डोंक ए ना बान सी डिटेल की नो बिजा फाइन ट्यून बियन श्योर मेन लेसेंशियल डेडन से के नो फिनेन कोलैबोरेशन टोटल डे ला पॉपुलेशन।
3: गणेश चतुर्थी से पहले बेलेरिविया सेश के पुष्पालोचनिया मंदिर में 150 बच्चों और युवाओं ने भगवान गणेश की प्रतिमाएं अपने हाथों से बनाई। मुर्शी सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन और आर्ट्स इंस्पायर्स के सहयोग

0: से आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य युवा पीढ़ी को इस परंपरा से जोड़ना है, साथ ही पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल मिट्टी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना भी है।
1: मिट्टी का एक गोला, सृजन में तल्लीन नन्हे हाथ और कल्पनाओं की उड़ान धीरे धीरे एक आकृति आकार लेती है और सामने आता है भगवान गणेश का सौम्य स्वरूप। पुष्पलोचन मंदिर में गणेश चतुर्थी के उपलक्ष में आयोजित इस कार्यशाला में 150 बच्चों और युवाओं ने भाग लिया। प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में उन्होंने मिट्टी की मूर्ति बनाने की विभिन्न विधियां सीखी। साथ ही प्रत्येक प्रतिभागी ने अपनी कल्पना के अनुसार अपनी मूर्ति को एक विशेष रूप और भाव प्रदान किया।
2: भैया ने क्या बनाया है?
3: मैंने गणपति जी की मूर्ति बनाया, मैं इसकी पूजा करना चाहती हूँ। गणपति पप्पा मोरिया।
4: हम यहाँ पे माटी से मूर्ति बना रहे हैं गणेश जी के, जो नदियों में पोल्यूशन नहीं करता और मछलियों को नहीं मारता है और अच्छे से नदी में घुल जाता है।
2: तो आपने क्या बनाया हमें बताइए अपने डिजाइन के बारे में।
4: यहाँ पे हमने बाल गणेश बनाया, इनके हाथ पैर और मोदक हमें बनाना सिखाया गया है। हमारे लिए हमारे गणेश जी एक दोस्त है और वो हमारे सारे दुख खत्म कर देते हैं। चतुर्थी के दिन हम इसको समंदर में या फिर नदियों में इसका विसर्जन करा देंगे।
5: मूर्ति बनाने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, जब मन लगा कर करते हैं तो बहुत अच्छा और आसान दिखता है। मैंने एक गणेश मूर्ति बनाई है और उसके साथ मैंने मोदक और लड्डू उसके बाजू बीच लगाए, क्योंकि गणेश भगवान को माना जाता है कि उसे बहुत मिठाइयाँ बहुत पसंद है।
1: किसी भी शुभ कार्य के आरंभ से पहले भगवान गणेश की वंदना की जाती है। वे बुद्धि, विवेक और जीवन की बाधाओं को दूर करने वाली शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। मूर्ति निर्माण के लिए मिट्टी का चयन करना पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देता है। ये प्राकृतिक सामग्री विसर्जन के समय सरलता से जल में विलीन हो जाती है, जिससे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को सीमित किया जा सकता है।
6: सब टेक्निक बता रहे हैं कैसे मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं और उसके साथ कैसे काम करते हैं। मुश्किल कुछ नहीं था, बच्चे लोग अब समझ गए कैसे करने के लिए। और हम बता रहे हैं जो आर्ट्स इंस्पायर का जो टीम है यहाँ पर,
7: हमारा जो लक्ष्य है फेडरेशन का, हम यही चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे लोग हैं, नौजवान लोग हैं, वो हमारे मंदिर की ओर आए, हमारे जो हिंदू सनातन धर्म है फिर से उन लोगों का रुचि फिर से भरे।
1: कार्यशाला के दौरान माता पिता भी बच्चों का उत्साह बढ़ाते दिखाई दिए। कहीं वे उनके कार्य को निहार रहे थे तो कहीं मूर्ति को पूरा करने में उनका मार्गदर्शन कर रही थी।
8: मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं एक अध्यापिका हूं और हमारी संस्कृति को और आगे बढ़ाने के लिए, हमारी नई पीढ़ी को जागृत करने के लिए कि हमारी संस्कृति क्या है।
9: आज बच्चों ने बहुत सुंदर, सभी बच्चों ने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है। इससे देख के लगता है कि बच्चों में एक कल जो उनके अंदर जो एक कला है उनको उभारने का एक अच्छा अवसर दिया गया है बच्चों को। बच्चों का जो ध्यान आजकल जो भटक रहा है, आज अच्छे काम में लगाया जा रहा है उनका ध्यान, जिससे उनकी कला और भी निखर कर सामने आएगी। इसके
1: मूर्ति निर्माण से लेकर विसर्जन तक इन बच्चों और युवाओं ने इस परंपरा को केवल जाना ही नहीं बल्कि अपने हाथों से गढ़कर उसे आत्मसात भी किया।
0: विदेश में पाकिस्तान में सेना का प्रभाव केवल देश की सुरक्षा तक सीमित नहीं रही है बल्कि अब पाकिस्तानी आर्मी सरकारी संपत्तियों, रियल एस्टेट और कानूनी व्यवस्था पर पूरी तरह से हावी हो चुकी है। लग्जरी सेलिंग क्लबों से लेकर असैधानिक कब्जे वाली जमीनों तक पाकिस्तानी सेना देश के अहम संसाधनों पर अपने अधिकार को लगातार मजबूत कर रही है। दरअसल हाल ही में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 2022 के उस फैसले को चुपचाप पलट दिया गया जिसमें पाकिस्तान नेवी के 300 एकड़ के आलीशान रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और कथित तौर पर सरकारी जमीन पर बने लग्जरी नेवल सेलिंग क्लब को अवैध घोषित किया गया था। देश विदेश की खबरों के बाद आइए अब मौसम का हाल सुनते हैं।

0: पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ पाए जा रहे सक्रिय बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है। साथ ही मस्कारियन के दक्षिण में पाए जा रहे एंटी साइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंडी हवाओं का असर है। पूर्वानुमान आज सुबह देश भर में बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी, खासकर पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों और ऊंचे इलाकों पर। दोपहर बाद के समय भी ऊंचे इलाकों पर हल्की वर्षा होगी और जगहों पर बादल छाए रहेंगे। रात्रि के समय भी बादल घिरे रहेंगे, खासकर पूर्वी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर हल्की वर्षा हो सकती है। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परिधि समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण की तरफ 2 मीटर 50 सेंटीमीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है, खासकर सुबह के समय। सूर्योदय आज 6:09 पर हुआ और अब सूर्यास्त शाम के 6:03 पर होगा। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। इसे आप तक पहुंचाने में हमें कादर और मौसिन का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। बुझावन लेन अपदागुतिया सैंपिया में इक्यासी साल के टिवानियो जोर के श्री श्रद्धानंद बुझावन की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके बेटे श्री सुदेश बुझावन के घर बुझावन लेन अपदागुतिया सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लोअर दागुतिया सैंपिया की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड कांजियाब में 82 साल की 82 years old की श्रीमती आनंदी बाई दर्मिया पैदाइशी नाम बिकिया और जो आनंदी बाई नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उनके बेटे श्री विराज दर्मिया के घर रॉयल रोड कांजियाब से उठाकर दफनाने के लिए कांजियाब की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन फ्यूनरल टुडे एट 12:30 PM। ट्रियो रोड 66 साल के 66 years old के श्री राजेंद्र नाथ भजन जो राजन मासो नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उनके बेटे श्री रितेश कुमार भजन के घर ट्रियो रोड त्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टर्मिनस ट्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 12:30 PM। डॉक्टर मनीलाल रोड लाल माटी में 71 साल के 71 years old के श्री बानीदेव सीतल जो शोफर फ्यूएल नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनकी पत्नी श्रीमती इंद्रानी सीतल के घर डॉक्टर मनीलाल रोड लाल माटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी लाल माटी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Goody good morning, सभी को घड़ी मिलाते चलिए सुबह के ठीक 7:01.
4: Chillax with Radio Musti.
0: Your number one Bollywood radio station.
5: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा. गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: Chillax with Radio Musty.
1: गुड मॉर्निंग सभी को, 7:07 हो चुके हैं, सूरज पूरी तरह से निकल आया है, सैटरडे मॉर्निंग एकदम खिल उठी है और रिलैक्स का थर्ड आवर इज ऑफिशियली ऑन। अब सुबह का मूड भी चेंज हो गया है, पहले थोड़ी ठंडक, थोड़ी नींद, थोड़े सदाबहार गाने, मिक्स गाने, सूथिंग गाने, सब कुछ हमने चलाए, लेकिन अब फुल सैटरडे वाइब्स, ब्यूटीफुल गाने, कभी रोमांटिक, कभी मस्ती भरे, कभी ऐसे फील गुड ट्रैक्स जो बस मूड को और अच्छा कर दे। Exactly the way your Saturday morning should be. और आज का Saturday एक और वजह से खास है, ये बहुत ही खास है, क्योंकि गणेश चतुर्थी की तैयारियां शुरू हो चुकी है। जी हाँ, हम मंगलवार को गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाने वाले हैं और घरों में सफाई, सजावट, पप्पा के स्वागत की तैयारी, फूल, लाइट्स, रंगोली और सबसे इम्पोर्टेंट दिल में वो एक्साइटमेंट कि गणपति पप्पा आ रहे हैं। आने वाले दिनों में घरों और आसपास का

होल आउट भी फेस्टिव होने वाला है. तो इस सैटरडे मॉर्निंग में हम भी थोड़ी सी फेस्टिव एनर्जी, थोड़ी पॉजिटिविटी और बहुत सारी मस्ती लेकर आए हैं. और इसी के साथ गेम टाइम. आज आपके पास मौका है जीतने का 2 entry टिकट्स टू वॉच सियक जवाता. गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फिल्ड विद मैजिक थ्रिल्स लॉफ्टर एंड स्पेक्टेकुलर सर्कस परफॉर्मेंसेस फॉर द होल फैमिली. कैच सियक

0: तो आंसर आप सोचिए, व्हाट्सएप आप भेज सकते हैं या नॉर्मल मैसेजेस पर भी आप भेज सकते हैं, सही जवाब पूरे नाम और पूरे पति के साथ। मैं हूँ आपके साथ आपकी रिया एंड आप सुन रहे हैं योर रिलैक्सर शो सिर्फ रेडियो मस्ती पर। तो चलिए फटाफट भेजिए सही जवाब पूरे नाम और पूरे पते के साथ ऑन 5499-1294। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

अब है यूनिसाइकिल। जी हाँ, आपने यहाँ पर बहुतों ने सही जवाब दिए हैं, एक दो ने गलत जवाब भी दिए, बट इट्स ओके, आपने पार्टिसिपेट किया, यही बड़ी बात है। तो यहाँ पर लकी ड्रॉ हमने कर लिया है और हमारे लकी विनर है मिस्टर धीरज तीतर, आप है ट्रियोली से और आपने दिया है सही जवाब, तो आप जीत चुके हैं। जी हाँ, आपने खेला है MBC रेडियो के साथ और आप जीत चुके हैं 2 entry ticket to watch Sieka Zavata. Get ready for an unforgettable experience filled with magic, thrills, laughter and spectacular circus performances for the whole family. Catch Sieka Zavata at Bagatelle, which shows every Thursday and Friday at 6 p.m. and Saturday and Sunday at 14:30 p.m. and 2:30 p.m. sorry, and 5:30 p.m. For bookings and information, आप कॉल भी कर सकते हैं 5250-941-FREEBIRD, 5250-941-FREEBIRD. Don't miss the magical big show. तो चलिए आपको हम बता दें दैट ये टिकट आपको कलेक्ट करना है। आप आ सकते हैं एट MBC टू कलेक्ट योर टिकट। आप मंडे से फ्राइडे तक आ सकते हैं एट सवेरे 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक। यू कैन कम विद योर आईडी और आप ले जा सकते हैं अपने दो टिकट। सो वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस आपको। और जो लोग नहीं जीत पाए, वी हैव गॉट अनदर गेम जो हम थोड़ी देर में जरूर खेलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड और मीनवाइल आप गाने एंजॉय करते रहिए।

0: Jacks with Radio Musty.
1: राइट चिलैक्स में गेम हमने खेला है और क्वेश्चन भी पूछा है दैट व्हाट डू वी कॉल अ बाइसिकल दैट हैज ओनली वन व्हील और सही जवाब

0: Chillax with Radio Musty.
1: जैसे कि हमने कहा था, we have another game आपके नाम, so get ready, Mauritius, the grand final of the Island Cricket Extravaganza Season 4 is here, organized by the Mauritius Cricket Federation in partnership with Indian Oil Lesevu, co-sponsored by Myop, make your own perfume and food partner for finals, drinks Little India. This thrilling season kicked off on 1st August with six power-packed teams, and now it all comes down to the big finale between the continental Cheetahs versus Campus Abroad Lions on Sunday, 13th September, SSR National Cricket Ground Mappu. Our match shuru hota hai at 10 AM. तो उनको आप लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं एट द ग्राउंड फॉर द फुल ऑफ हाई एनर्जी क्रिकेट फन एंड एक्साइटमेंट. एंड चलिए यहाँ पर हम आपके नाम एक गेम लेकर आए हैं, सो यू जस्ट हैव टू प्ले विद RM2 एंड स्टैंड अ चांस टू विन अ 500 रुपी गिफ्ट वाउचर courtesy ऑफ इंडियन स्वाद रेस्टोरेंट वेयर यू कैन savor द ऑथेंटिक फ्लेवर्स ऑफ इंडिया. तो यहाँ पर क्वेश्चन बॉलीवुड ही हम लेकर आए हैं, एंड हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो प्रश्न है बहुत ही सरल है. इन द मूवी ओम शांति ओम व्हाट इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर प्लेड बाय दीपिका पादुकोण. अगर आपको पता है सही जवाब तो पूरे नाम और पूरे पति के साथ है सही जवाब भेजिए ऑन 5499-1294. चलिए गुड लक वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू.
0: Chillax with Radio Musty.
2: Your number one Bollywood radio station.
3: That's right. Pump it up.

0: Chillax with Radio Musty.
1: राइट यहाँ पर आपके सही जवाबों में हम फंस गए थे बट वी हैव आवर लकी विनर. लेकिन सबसे पहले हम फिर से पूछते हैं क्वेश्चन. जी हाँ, हमने पूछा था इन द मूवी ओम शांति ओम व्हाट इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर प्लेड बाय दीपिका पादुकोण और सही जवाब है शांति प्रिया. जी हाँ, यही है सही जवाब और बहुतों ने सही जवाब अभी दिए. सो थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग. और यहाँ पर हमारी लकी विनर बनी है सुचित्रा पुरन. आप हैं वॉशवासी, सो कंग्रेचुलेशंस आपको. आप जीत चुकी है एक 500 रुपी का गिफ्ट वाउचर बाय इंडियन स्वाद रेस्टोरेंट वेयर यू कैन फेवर द ऑथेंटिक फ्लेवर्स ऑफ इंडिया. इट्स बाय आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंसा सीजन 4. जी हाँ, इसके लिए आप सभी तैयार हो जाए. ऑर्गेनाइज्ड बाय द मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन इन पार्टनरशिप विद इंडियन ऑयल सेवु को स्पॉन्सर्ड बाय माय ऑप मेक योर ओन परफ्यूम एंड फूड पार्टनर फॉर फाइनल्स ड्रीम्स लिटिल इंडिया. दिस थ्रिलिंग सीजन किक्ड ऑफ ऑन 1st ऑगस्ट विद 6 पावर पैक्ड टीम्स और अब इट ऑल कम्स डाउन टू द बिग फिनाले बिटवीन कॉन्टिनेंटल चीटास वर्सेस कैंपस अब्रॉड लायंस ऑन संडे 13 सितंबर SSR नेशनल क्रिकेट ग्राउंड में मापू. और ये मैच शुरू होता है एट 10 AM. तो उनको आप लाइव ज्वाइन कर सकती है एट द ग्राउंड फॉर अ डे फुल ऑफ हाई एनर्जी क्रिकेट फन एंड एक्साइटमेंट. चीयर फॉर योर फेवरेट टीम, एंजॉय ग्रेट फूड एंड म्यूजिक एंड स्टैंड अ चांस टू हैव अ ग्रेट ग्रेट संडे. आप भी. जी हाँ, तो आप जीत चुकी है सो आपको हम कंग्रेचुलेशंस कहते हैं. एंड नॉट टू वरी, क्योंकि ये वाउचर, जी हाँ, ये वाउचर आप तक पोस्ट किया जाएगा. तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं. और जो लोग नहीं जीत पाए, दिल छोटा ना करें, आपकी बारी भी ज़रूर आएगी.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: राइट घर मिलाते चलिए 7:31 और स्टूडियो में वी हैव विकास जी, उनका स्वागत करते हैं और सुनते हैं कि आजकल स्पोर्ट्स जगत में क्या कुछ हो रहा है। तो चटपटी स्पोर्ट्स खबरें से के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार आपको विकास जी।
4: नमस्कार रिया, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्पोर्ट्स फैंस। वीकेंड की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से इंग्लिश प्रीमियर लीग का चौथा सप्ताह आरंभ हो रहा है शाम 6 बजे से। सारा ध्यान यदि कल के मैनचेस्टर डर्बी पर है तो आर्सेनल और लिवरपूल भी अपनी अपनी धार तेज कर रहे हैं। और इस बीच लीग चैंपियनशिप में वेस्ट हैम यूनाइटेड ने अपना तेवर दिखाया और रेक्सम को 6-0 से पछाड़कर चैंपियनशिप का पहला स्थान हड़प लिया। वेस्ट हैम यूनाइटेड 6-0। जारेड बोवेन के बाद पिरोए, मावरोपानोस, कैस्टिलानोस, कैंटी और सोलोमन ऑन टारगेट फॉर द हैमर्स। वेस्ट हैम 6-0। बाकी चैंपियनशिप के मैच आज और कल खेले जाएंगे। स्कॉटिश चैंपियनशिप में लिविंगस्टोन ने एवे जाकर मोटन को 4-1 से परास्त किया। तो स्पेन के लालीगा में कल जो मात्र मैच खेला गया उसमें सेविलिया ने वेलेंशिया को 1-0 से हराया। जर्मनी के बुंडेसलीगा में भी एक मैच, यूनियन बर्लिन 1-0-4-3। इटली के सीरिया में एवे मैदान पे फ्योरेंटिना ने वेनेजिया को 4-2 से हराया। तो फ्रांस के लीग ए में रेन ने ओलंपिक दे मार्सेई को 1-0 से परास्त किया। थोमासन का ये मात्र गोल रेन के लिए और इस जीत के साथ रेन अल्पकाल के लिए लीग टेबल के पहले स्थान पर आ गया है 4 मैचों के बाद 10 अंक। उल्लेखनीय बात यह है कि डिफेंडिंग चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन अभी लीग टेबल के 13वें स्थान पर है। 3 मैचों में उसने केवल 2 ड्रॉ हासिल किए हैं, 1 हार। तो ओलंपिक दे मार्सेई के पास 3 अंक। कल की हार के बाद मार्सेई अब 11वें स्थान पर आ गया है। सो आज और कल फ्रांस के लीग ए में भी बाकी सभी मैच खेले जाएंगे। इटली के सीरिया, जर्मनी के बुंडेसलीगा, स्पेन के लालीगा में भी सप्ताहांत के दौरान सभी मैच निर्धारित हैं। सो बात कर रहे थे इंग्लिश प्रीमियर लीग की जिसका चौथा सप्ताह आज आरंभ हो रहा है। आज शाम 6 बजे से विला पार्क में एस्टन विला का मुकाबला नॉटिंगहम फॉरेस्ट से, बोर्नमुथ खेलेगी ब्रेंटफोर्ड के विरुद्ध, चेल्सी वर्सेस हल सिटी। ये मैच एक तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण है इसलिए भी क्योंकि चेल्सी के स्ट्राइकर होआओ पेड्रो बन गया है प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द मंथ। तो हल सिटी का मैनेजर को बनाया गया है प्रीमियर लीग मैनेजर ऑफ द मंथ। अगस्त महीने में हल सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-0 से हराकर अपना दूसरा मैच 1-0 से जीत लिया था। इस कारण दोनों टीमों के लिए ये मैच आज बड़ा ही महत्वपूर्ण

0: ahead, Chelsea versus Hull City. João Pedro बना प्रीमियर लीग मैनेजर प्लेयर ऑफ द मंथ. ब्राजील के इस 24 वर्षीय स्ट्राइकर ने चेल्सी के साथ दो गोल और कई असिस्ट किए, इसीलिए कोच क्साबी अलोंसो ने उसकी तुलना करीम बेंजेमा और अर्लिंग हैलैंड से भी की है. और इस प्रकार आज शाम 6 बजे चेल्सी अपने स्टैमफोर्ड ब्रिज में खेलेगी, हल सिटी के विरुद्ध का सामना करेगी. क्रिस्टल पैलेस का मुकाबला सिल्हर्स पार्क में इपस्विच टाउन से, और आज शाम 6 बजे ही एनफील्ड में लिवरपूल वर्सेस फुलहम, ये मैच भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए. फुलहम ने अब तक एक भी जीत हासिल नहीं की है, तो लिवरपूल ने गत सप्ताह एक शानदार जीत हासिल की, और अंदोनी इराउला के लिए आज ये मैच उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अल्वारो अबेलोआ के लिए. और अबेलोआ वापस इतने सालों बाद अपने पुराने टीम लिवरपूल में आ रहा है, कहीं कुछ हो ना जाए, इसलिए सारी चिंताएं अभी लिवरपूल के लिए हैं कि उसका विंगर कोडी गाकपो घायल है और ब्रैडली बाकुला भी घायल हो गया था. आज शाम तक पता चलेगा कि ये दोनों खेल पाएंगे या नहीं. लिवरपूल वर्सेस फुलहम आज शाम 6 बजे. फिर रात 8:30 बजे टोटेनहम हॉटस्पर वर्सेस एवर्टन, ये भी एक गर्मा गर्म हॉट हॉट मुकाबला बिटवीन टोटेनहम हॉटस्पर एंड एवर्टन, रात 8:30 बजे. और आज का लेट मुकाबला रात 11 बजे डिफेंडिंग चैंपियन आर्सेनल एवे जाएगी संडरलैंड के मैदान पे. फिर बाकी दो मैच कल संडे रविवार के लिए रखे गए हैं. कल शाम 5 बजे कोवेंट्री सिटी वर्सेस ब्राइटन, तो कल रात 7:30 बजे 7:30 PM नॉट टू मिस, सेव द टाइम. 7:30 बजे कल की रात मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, देखते रहिए और सुनते रहिए. सो बाकी मैच जो हैं आज और कल खेले जाएंगे बाकी लीग चैंपियनशिप में, स्पेन के ला लीगा, इटली के सीरिया, जर्मनी के बुंडेसलीगा और फ्रांस के लीग ए में भी. टेनिस में इट्स अलेक्जेंडर ज़ेरेव वर्सेस बेन शेल्टन, यूएस ओपन का ग्रैंड फिनाले तय हो गया है. आज सुबह ही बेन शेल्टन की जीत हुई, कल रात जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेरेव ने कारेन काशानोव को 6-3 7-6 और 7-6 से हराकर इस सीजन अपने तीसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में कदम रखा है. फ्रेंच ओपन जीतने के बाद यानिक सिनियर ने उसे अलेक्जेंडर ज़ेरेव को विंबलडन के फाइनल में हराया था, यानी इससे सीजन इस साल तीन ग्रैंड स्लैम फाइनल. अलेक्जेंडर ज़ेरेव कल ये फाइनल खेलेगा बेन शेल्टन के विरुद्ध, जिसने आज सुबह ही फ्रांसिस चियाफोए को 4-6 6-3 6-3 और 7-5 से परास्त कर यूएस ओपन के फाइनल में कदम रखा. ये महाफाइनल कल खेला जाएगा जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेरेव और यूएसए के बेन शेल्टन के बीच. वुमेन सिंगल फाइनल आज शनिवार के लिए रखा गया है, एलेना रायबाकिना का मुकाबला अरीना सबालेंका से. फॉर्मूला वन मोटर रेसिंग चैंपियनशिप में किमी एंटोनेली ने स्पेनिश ग्रैंड प्री की पहली प्रैक्टिस रेस जीत ली. शार्ल लेक्लेयर दूसरे स्थान पर आया, तो थर्ड प्रैक्टिस के बाद पोल पोजीशन के लिए भी आज रेस लगेगी. स्पेनिश ग्रैंड प्री कल के लिए निर्धारित है. जनरल स्टैंडिंग में किमी एंटोनेली पहले स्थान पे है 267 पॉइंट्स के साथ. जॉर्ज रसेल 201 अंक यानी 66 अंक पीछे हैं. लेविस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर 191 पॉइंट्स. और मॉरिशस में आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा का सीजन 4 अपनी चरम सीमा पर आ गया है. कल रविवार के लिए ये फाइनल रखा गया है दिन के 10 बजे. कैंपस अब्रोड लायंस का मुकाबला कंटिनेंटल चीता से कल दिन के 10 बजे मापू के एसएसओ नेशनल क्रिकेट ग्राउंड में. देखते रहिए और सुनते रहिए. नमस्कार और शुभ दिन.
1: थैंक यू सो मच विकास जी.
2: दिस मैगजीन वाज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको द फ्लो एक्सपर्ट.
3: Pour donner vie à vos projets de rénovation, choisissez Quality Décor. Carrelage, quartz, granit, ardoise, slab, tout est là pour vous dans nos 12 showrooms répartis sur toute l'île. Besoin d'un petit coup de pouce? Nous offrons des facilités de crédit pour rendre vos rêves accessibles et un service de transport pour vous livrer à la maison. Venez découvrir nos produits de qualité tout en profitant des conseils de nos experts. Suivez-nous sur Facebook, Quality Décor, pour ne pas manquer nos offres exclusives.
4: Sondero.

0: Chillax with Radio Musty.
1: चलिए जी, यहाँ पर एक बर्थडे मैसेज आया है लाल माटी के विनेश जी का. आज जन्मदिन है, सो हैप्पी बर्थडे आपको विनेश, बहुत सारा प्यार एंड शुभकामनाएं ये बर्थडे. वेल, गणेश चतुर्थी के इस पावन और खुशियों भरे माहौल में आपके जन्मदिन का ये खूबसूरत दिन और भी खास हो गया है. वैसे सैटरडे है आज, यानी वीकेंड के दिन बर्थडे पड़ गया है. ऊपर से गणेश चतुर्थी का जो पावन पर्व चल रहा है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो ही गई है. पापा पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ, सुकून, अच्छी सेहत और बरकत भर दे. पापा आपके हर रास्ते की मुश्किलें दूर करें और आपकी हर अच्छी दुआ को कबूल करें. आने वाला हर साल आपके लिए नए सपने, नई उम्मीदें और बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए. और आज आपका पूरा परिवार आप को विश कर रहा है अ वेरी हैप्पी बर्थडे. जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं कमिंग फ्रॉम आपकी प्यारी पत्नी उषा बेटी है, राहुल एंड रोहन बेटी है, नेहा दामाद है, यशवंत पूरा गुप्पल और रामचरण परिवार ऑल्सो. यहाँ पर आपकी और बेटी है दिव्या जानवी एंड आपके भाई है राज, विकास धीरज भी है साथ में एंड आपकी सभी भाभियाँ है मीरा अंजू, आपको विश कर रहे हैं अ वेरी हैप्पी बर्थडे. और आपकी जो भांजी है निखिल निवेश, ये सभी आपको विश करती है अ वेरी हैप्पी बर्थडे. सो पूरे परिवार की ओर से आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे. एंड आपके दामाद भी है यश, आपको विश कर रही है. तो आपका दिन बहुत ही अच्छा जाए, बस हम यही कामना करते हैं, यही आशा करते हैं. सो हैप्पी बर्थडे आपको एक बार फिर.

0: Chillax. Chillax. Chillax. With Radio Musty.
1: Your number one Bollywood radio station.
2: और इसी गाने के साथ इस टाइम फॉर रिया टू से बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं कल सवेरे.

0: The Time is brought to you by
1: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
2: Radio Musti.
3: North, South,
2: 103.5.
3: East, West,
2: 96.4.
3: Center,
2: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, 8 a.m.
6: के बीच जारी बातचीत की जायजा लीलन दोनों देश की सरकार समझौता की अंतिम रूप देवे की दिशा में आगे बढ़त हवन एक संगे शगस द्वीप समूह के लेके मालदीव के गो नागरिक संगठन की ओर से करलगल कथित क्षेत्रीय दावा के भी जायजा लेवलगल मॉरिशस सरकार संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वां सत्र के बखत मालदीव के कोनों भी आधिकारिक घोषणा या पहल पर करीबी से नजर रखता और देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा खातिर जरूरत पड़ी पर उचित कदम उठावे के निर्णय भी ले ले बाते गल हफ्ता से ही ये बात सामने आल बातें कि मॉरिशस अपन एयर स्पेस खोले के तैयारी करता एक खातिर सबसे आगे एगो एविएशन काउंसिल के गठन करल जाए नेशनल एविएशन काउंसिल आवत दिन में कायम होय प्रधानमंत्री गल हफ्ता 3 सितंबर के कर घोषणा कर ले रहलन सनाम सामी जून 2001 से 2004 ले पुराना एयर एक्सेस एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य रहलन उबोलन कि नवा संस्था देश खातिर कई गो नवा मौका लेके सामने आए उनके मुताबिक मॉरिशस हवाई यातायात खातिर एगो रीजनल हब बने सकेला कर संगे सबले जरूरी बात यह कि देश व्यापार और बिजनेस खातिर भी एक बड़का केंद्र बने सकेला मॉरिशस में 16वां गोप्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 11 से 13 सितंबर 2026 आयोजित करल जाता सम्मेलन में दुनिया के कई गो देश से भारतीय मूल के प्रतिनिधि शामिल होल हवन एक उद्देश्य दुनिया भर के भारतीय समुदाय को एक गो मंच पर लावे के बाते आपसी सहयोग बढ़ावे के और प्रवासी भारतीय लोग से जुड़ल जरूरी मुद्दा पर चर्चा करे के बाते ये आयोजन भारतीय मूल के लोग के बीच संबंध के मजबूत करे के दिशा में एक जरूरी पहल भी बाटे बाजार में भिंडी यानी लालू के दाम में काफ़ी बढ़ोतरी होल बाते जबकि सर्दी के मौसम में एक सप्लाई भी कमती हुआ था उत्पादक लोग के मुताबिक पौधा की प्रभावित करे होला बीमारी खातिर भी एक खेती मुश्किल हो गल बाते कई गो किसान भिंडी के पैदावार कम कर दिले हवन जबकि कई गो उत्पादन पूरी तरह से बंद कर देवल कर बाते ये खातिर बाजार में सप्लाई कमती होल बाते और वो कर दाम भी बढ़ गल बाते ये जानकारी स्मॉल प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव कृपालू संगुन दिले हवन विदेश में पाकिस्तान में सेना के प्रभाव खाली देश के सुरक्षा ले सीमित नए बातें बखेर अब पाकिस्तानी आर्मी सरकारी संपत्ति रियल एस्टेट और कानूनी व्यवस्था पर पूरा रूप से हावी हो गल बातें लग्जरी सेलिंग क्लब से लेके असैधानिक कब्जा होला जमीन ले पाकिस्तानी सेना देश के जरूरी संसाधन पर अपन अधिकार की लगातार मजबूत करता तय रह भोजपुरी में समाचार आप लोग के ध्यान का दिन धन्यवाद
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Shameless तड़का
1: RM2।
2: तो चलिए दोस्तों, बरसाती मौसम और इसी मौसम में आपको गुड मॉर्निंग कहने आ गए हैं हम ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती। वेल इट्स टाइम फॉर योर टाइमलेस तड़का। मैं हूं परी आपके साथ, गुड मॉर्निंग विशेस के साथ लेकर आए हैं आपका टाइमलेस तड़का। अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक लेकर आए हैं कुछ एवरग्रीन मेलोडीज आपकी मॉर्निंग को मस्त जबरदस्त बनाने। वैसे मौसम तो आज नहीं लग रहा दार ऑसम, लेकिन चलिए इसके लिए लेकर आए हैं मौसम का हाल। जो भी है आपके प्लान्स, देखते हैं कैसा रहेगा मौसम का साथ।
0: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स।
3: ओनली टू विनर्स।
4: पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से पाए जा रहे सक्रिय बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है। साथ ही मस्कारीन समय पाए जा रहे एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंडी हवाओं का असर है। पूर्वानुमान, आज सुबह देश भर में बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी, खासकर पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों और ऊंचे इलाकों पर। दोपहर बाद के समय भी ऊंचे इलाकों पर हल्की वर्षा होगी और अन्य जगहों पर बादल घिरे रहेंगे। रात्रि के समय भी बादल छाए रहेंगे, खासकर पूर्वी इलाकों और सेंट्रल बातों पर हल्की वर्षा होगी। तापमान, सेंट्रल बातों पर न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस

जिसके बीच रहेगा तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परिसर में खराब रहेगा और दक्षिण की तरफ 2 मीटर 50 सेंटीमीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है, खासकर सुबह के स-

0: Offre uniquement pour les fonctionnaires, les employés des organisations para-étatiques et les pensionnaires de la SICOM. Conditions applicables. Pour plus d'infos, appelez-nous sur le 203 84 70 ou visitez notre site web sicom.me.
1: SICOM Group, a lifetime commitment.
0: SICOM Financial Services Limited opère sous licence de la BOM et de la FSC. Loan is not an insurance policy under Insurance Act 2005.
2: Samsung Galaxy S26 FE अब आ गया है सिर्फ 36,990 रुपीस में. साथ में मिल रहा है 6,000 रुपीस का डिस्काउंट. आप सब जानते ही हैं, लेकिन प्रोसेसर में आपके पास पेमेंट की चॉइस भी है. आप चाहें तो अपने बैंक कार्ड से 3 महीने में बिना किसी इंटरेस्ट की पेमेंट करें, या फिर अपने क्रेडिट कार्ड से 12 महीने में बिल्कुल बिना इंटरेस्ट की पेमेंट. और हाँ, भूलिएगा मत, गिफ्ट में मिलेंगे सैमसंग केयर प्लस और गूगल AI प्रो. तो देर किस बात की है, सैमसंग गैलेक्सी S26 FE अब अवेलेबल है थ्वासिसान के स्टोर्स में और थ्वासिसान.mu पर भी.
3: RM2 रेडियो मस्ती.

0: सो वेल फ्रेंड्स, वीकेंड ने स्वागत किया है लेकिन कुछ बरसात के साथ, कुछ बादलों के साथ. सो इस सर्दी वाली सुबह में हम आपको वार्म वेलकम करने आए हैं विद सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, टेकिंग यू डाउन मेमोरी लेन. इट्स टाइम फॉर योर टाइमलेस तड़का. अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक कुछ ऐसे ही टाइमलेस क्लासिक्स हम आपके लिए प्ले करने वाले हैं. सो साथ ही रहे हैं अभी एंड मॉर्निंग टाइम में. अगर आपको भी किसी की मॉर्निंग को खास एंड स्पेशल बनाना है, सो ऑल यू हैव टू डू इज आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस ऑन 5499-1294. सुबह सवेरे अगर किसी के लिए स्पेशल विशेज आ जाएं तो जिनके लिए विशेज होती हैं वो भी हैप्पी हो जाते हैं कि भाई सुबह उठते ही आपने हमारे बारे में सोचा. एंड इट्स रियली अ स्पेशल फीलिंग. जहाँ पर सुबह सवेरे जिसका ख्याल आता है वो इंसान तो स्पेशल फील करता ही है, लेकिन ऑफकोर्स वो इंसान आपके लिए भी काफ़ी मायने रखता है. सो लेट्स मेक दिस मॉर्निंग स्पेशल फॉर देम एंड ऑफकोर्स हमारे सभी लिसनर्स जो हमारा साथ हमेशा देते हैं. आपके लिए तो हम मॉर्निंग हो या नाइट स्पेशल बनाते रहते हैं विद सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. सो फॉर नाउ मैं हूं परी आपके साथ एंड यू कैन सेंड मी आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस, आपके दिल का हाल ऑन 5499-1294. चलिए यहां पर जो अगला गाना है गोज आउट फॉर अक्षत एंड दक्ष जो इस वक्त गणेश चतुर्थी की तैयारी में लगे हुए हैं. गणेश चतुर्थी तो हम सेलिब्रेट करने वाले हैं और उनके पापा जो है सुपर एक्साइटेड और अपने प्यारे प्यारे बेटों के लिए डेडिकेट कर रहे हैं नेक्स्ट गाना. सो गाना होगा आपके नाम एंड चलिए यहाँ पर मिस्टर रवि आप भी आ गए हैं वंडरफुल वीकेंड विशेस के साथ. सो हम भी आपको विश कर रहे हैं वंडरफुल टाइम ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. गुड विशेस के साथ गुड म्यूजिक होगा आपके लिए. स्टे कनेक्टेड एंड ऑल द वे फ्रॉम फ्रांस पेरिस हमारे साथ कनेक्टेड है आप मिस्टर देव. गानों को एंजॉय करते हैं सात समंदर पार से हमेशा और अपनी स्वीट विशेस जो है वो हम तक पहुँचाते हैं. सो इट मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए. कल्याणी जी कौन तो हेल्प से आप भी हमारा साथ दे रही हैं. सो हम भी आपकी मॉर्निंग को बना रहे हैं खास. जैसे हमने कहा इट्स योर टाइमलेस तड़का. सो होने वाले हैं कुछ एवरग्रीन सॉन्ग्स, कुछ एवरग्रीन मेलोडीज जो हम आपको सुनाएंगे ऑन RM2 रेडियो मस्ती.
1: ले जा, ले जा रे.
2: You're listening to Radio Masti.

0: और आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। MBC की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। MBC wishes you all a pious गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।
1: Timeless Tadka.
2: RM2.
1: Timeless Tadka.

0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: And well friends, कहते हैं कि जिंदगी को परफेक्ट बनाने के चक्कर में आप मत पड़िए, जो मोमेंट्स मिल रहे हैं उन्हें ब्यूटीफुल बनाइए, क्योंकि कहते हैं ना कि वक्त टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो हमेशा साथ चलती हैं वो यादें, वो मेमोरीज होती हैं. सो मेक एवरी मोमेंट काउंट एंड हर पल को खास बनाते चलिए. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल सैटरडे, अ वंडरफुल वीकेंड.
0: Le sport c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
5: Timeless Tadka.
6: RM2.
5: Timeless Tadka.

0: So, चलिए दोस्तों मॉर्निंग टाइम कनेक्टेड हैं आप हमारे साथ एंड इट्स टाइम फॉर योर टाइमलेस तड़का इन टाइमलेस मेलोडीज को आप भी एंजॉय कर रहे हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती. और चलिए यहाँ पर स्पेशल विशेज एंड गुड मॉर्निंग विशेज ये है फॉर पूर्वी गोकुल सिंह और सेलिब्रेट कर रही हैं अपना बर्थडे. एक्चुअली कल मनाया उन्होंने अपना जन्मदिन एंड विशेज उनके लिए फ्रॉम ममा प्रियंका, डैड शालिल और साथ में है भाई नमीश, नानी पूर्णिमा, माला सरिता, नाना ईश्वरलाल, मामू एशले, मामी आशनी, रोही आनवी, आर्या, आरती, विशाल, अवनीश एंड सभी गोगुल सिंह, भगवंत राम प्रताप, सीतोहल परिवार विश कर रहे हैं उन्हें वेरी हैप्पी बर्थडे. वैसे बर्थडे कल था लेकिन सेलिब्रेशन कंटिन्यूज और आपके लिए प्यार एंड स्पेशल विशेज पूरे परिवार की ओर से. ललिता जी यहाँ पर कहते हैं सो सो स्वीट परी, अरे वाह थैंक यू सो मच. हम स्वीट तो आप सुपर स्वीट ललिता जी साथ दे रहे हैं आप और गोइंग टू सी साइड बन गया है वीकेंड का सुपर प्लान. सो ऐसे में आपने शामिल किया है सभी दोस्तों को, सिमी, नीना, मीला, खुशी, साथ में है सारिका, पूर्वू, दर्शी एंड शीशा है. वी ऑल्सो हैव लैला एंड सभी जीतन परिवार लावॉन्चर से हमारा साथ दे रहे हैं. सो गुड मॉर्निंग विशेज भेज रहे हैं आपके लिए भी. हैव अ वंडरफुल टाइम, स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ एंड दैट्स योर टाइमलेस तड़का.
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती.

0: और संक्षिप्त समाचार लेकर के पहुंच गई है हमारी सहयोगी तीना बुधना। आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार तीना।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। कैबिनेट ने शागस मुद्दे को लेकर मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच जारी बातचीत का जायजा लिया और बताया कि दोनों सरकारें समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। साथ ही शागस द्वीप समूह को लेकर मालदीव के एक नागरिक संगठन की ओर से किए गए कथित क्षेत्रीय दावे का भी जायजा लिया गया। मॉरिशस सरकार संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान मालदीव की किसी भी आधिकारिक घोषणा या पहल पर करीबी नजर रखेगी और देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर उचित कदम उठाएगी। पिछले हफ्ते से ही ये बात सामने आ चुकी है कि मॉरिशस अपना एयर स्पेस खोलने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए सबसे पहले एक एविएशन काउंसिल का गठन किया जाएगा। नेशनल एविएशन काउंसिल आने वाले दिनों में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते 3 सितंबर को इसकी घोषणा की थी। सनाम सामी जो 2001 से 2004 तक पुराने एयर एक्सेस एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य रह चुके हैं, उनका कहना है कि ये नई संस्था देश के लिए कई नए मौके लेकर आएगी। मॉरिशस में 16वां गोप्यू अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 11 से 13 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में दुनिया के विभिन्न देशों से भारतीय मूल के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक भारतीय समुदाय को एक मंच पर लाना, आपसी सहयोग बढ़ाना और प्रवासी भारतीयों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना है। ये आयोजन भारतीय मूल के लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। बाजार में भिंडी यानी लालू की कीमत में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जबकि सर्दियों में कि इस मौसम में इसकी सप्लाई भी कम होती जा रही है। उत्पादकों के अनुसार पौधों को प्रभावित करने वाली बीमारियों के कारण भी इसकी खेती मुश्किल हो गई है और कुछ किसानों ने भिंडी की पैदावार कम कर दी है, जबकि कुछ ने उत्पादन पूरी तरह बंद कर दिया है। इसके चलते बाजार में सप्लाई कम हुई है और कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। और आज की चर्चा कार्यक्रम में कर्क रोग और कीमियोथेरेपी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होने जा रही है। हमारे सहयोगी अभी उदय के मेहमान होंगे डॉक्टर वासु कमलेश साधु और फार्मासिस्ट श्री नितिन कुमार। तो आज की चर्चा कार्यक्रम 9 बजे के इन समाचारों के बाद इनकी 10 बजे तक रेडियो मॉरिशस पर। विदेश में शुक्रवार को रूस के उत्तरी किंजल्स क्षेत्र में एक मिनी बस कार और लकड़ी ले जा रहे ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग घायल हो गए हैं। क्षेत्रीय अधिकारियों के हवाले से दी गई जानकारी के अनुसार मिनी बस किसी अन्य वाहन को ओवरटेक कर रही थी, तभी उसकी ट्रक से टक्कर हो गई। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: News on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: US Tadka.
1: RM2.
2: वेल दैट्स योर टाइमलेस तड़का और इस आवर में आप सभी का हम स्वागत करते हैं सुबह के 9:08 सैटरडे मॉर्निंग दोस्तों क्या हाल चाल वेल फाइनली द वीकेंड इज हियर एक वीकेंड जिसका हम कितना इंतजार करते हैं After 5 long working days, finally आता है weekend, so make it special. I know हमारे कुछ दोस्त आज भी काम कर रहे हैं, so not to worry, हम हैं आपके musical हमसफर. घर पर हो, shopping कर रहे हो, घूमने निकले हो, या फिर जो भी है आज के आपके plans. आपके plans में शामिल होने वाला है good music, RM2 Radio मस्ती के साथ. For now it's time for your timeless तड़का, जहां पर हम लेकर आए हैं evergreen melodies आपके लिए. मैं हूं परी आपके साथ दिन के 11 बजे तक and waiting for your messages, your dedications 5499-1294
1: पर. RM2 Radio Musti.

0: RM2 Radio Musti.
1: टाइमलेस क्लासिक्स एंड जी हाँ टाइमलेस तड़का में आपका तो हम वेलकम कर चुके हैं दोस्तों. सुबह के 9:31 कुछ गाने ऐसे हैं जो नए भी आए हैं लेकिन ऐसे गाने जो लगता है इन्हें बार बार सुनते जाएं. सो दैट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक, सुपर रोमांटिक ट्रैक.

ट्रैक फ्रॉम द फिल्म धुरंधर, अरिजीत सिंह अरमान खान की आवाज़ें। हमारे सभी लिसनर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं, विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल मॉर्निंग, अ वंडरफुल टाइम रेडियो मस्ती के साथ। योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस, योर दिल का हाल हमेशा करते हैं वेलकम ऑन 5499-1294।

0: Chris Tadka.
1: RM2.
2: So well, that's your timeless tarka. It's 9:48. और जी हाँ दोस्तों, weekend के दिन taking you down memory lane. यानी कि weekend शुरू होते ही बस वो प्यारी प्यारी खुशबू जहाँ पर आप एक बार फिर पहुँच जाते हैं उसी दौर में जहाँ पर आपके कुछ beautiful memories या फिर कोई special moments छुपे हुए हैं. So time for your timeless तड़का अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक मैं हूं परी आपके साथ और आपका प्यार आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस आपने पहुंचा दिए हैं on 54991294. Davis and all the way from Lal Mati, good morning wishes आपको हम पहुंचा रहे हैं right here from Radio Masti. I do hope that you are going to have a wonderful weekend. शुरुआत तो मस्त होगी और पूरा वीकेंड होगा आपका जबरदस्त. तो साथ देते रहिए एंड कीप एंजॉयिंग गुड म्यूजिक ऑन द वेव्स ऑफ RM2 Radio Masti. और यहाँ पर सात समंदर पार ऑल द वे फ्रॉम बेल्जियम आई हैं हमारी प्यारी सी प्रकाशवती जी. कहती है ठंडी ठंडी हवाएं 13 degrees. तो यहाँ मॉरिशस में भी रात में कुछ ऐसा ही होता है. कुछ सर्दियाँ जो हैं यानी कि सर्दियों का जो मौसम है अभी एक बार फिर दस्तक दे रहा है. एंड वेल थैंक यू सो मच प्रकाशवती जी. 13 degrees आप इंजॉय कर रही हैं एट बेल्जियम. सो यहाँ मॉरिशस से आपके लिए हम भेज रहे हैं लोड्स ऑफ लव ब्यूटीफुल सॉन्ग्स के साथ. आपके वीकेंड को बनाएंगे खास आपके नाम प्रकाशवती जी और आपके सभी परिवार सभी अपनों के लिए जो साथ दे रहे हैं फ्रॉम बेल्जियम एंड फ्रॉम मॉरिशस. और कहते हैं हेलो पैरी आप कैसे हो. मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ. और कहते हैं हमेशा की तरह आप शुभकामनाएं पहुंचाना चाहती हैं स्पेशली गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं सभी फ्रेंड्स सभी फैमिली के नाम रेडियो मस्ती टीम के लिए भी. थैंक यू सो मच अनीता जी. इफ्लिकम फ्लैग से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आप. सो आई डू होप दैट यू ऑल्सो हैविंग अ नाइस टाइम. चतुर्थी की तैयारियाँ तो शुरू हो चुकी है. गणपति बप्पा मोरया के नाम से हम भी आप सभी के दिल को बहलाएंगे. आप सभी के लिए गुड विशेस पहुँचाएंगे. एंड ऑफकोर्स बापा जब आते हैं तो लेकर आते हैं बहुत सारी खुशियां. जब जाते हैं तो आंखें नम भी करके जाते हैं लेकिन दैट्स बापा इफेक्ट्स. और हम तो अभी से हैं सुपर सुपर एक्साइटेड बापा को वेलकम करने के लिए. सो थैंक यू सो मच अनीता जी साथ देने के लिए शुक्रिया. गाना होगा आपके नाम. और यहाँ पर आ गए हैं हमारे डियरेस्ट स्वीटेस्ट पारू परिवार. हमेशा की तरह जुड़े हुए हैं आप रेडियो मस्ती के साथ और कहते हैं मे योर सैटरडे फील एग्जैक्टली लाइक अ डीप कंफर्टेबल एक्सेल. एंड यहाँ पर सभी अपाडू परिवार अपनी गुड विशेस पहुंचा रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम होशनुआ. लेकर आए हैं आप अपना प्यार फॉर ऑल द लिसनर्स.

ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती. साथ ही यहाँ पर निशा गोकुल शमे ग्रेनिय से हमारा साथ दे रही हैं. कहते हैं गाना हो जाए परिवार के नाम, बेटी राया, बेटा ताविश, पति रमेश और सभी गोकुल परिवार के लिए आप भेज रही हैं बहुत सारा प्यार एंड स्पेशल विशेज. और चलिए कहते हैं कि आज ब्रदर इन लॉ किरण दसोए अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो उनके लिए बहुत सारा प्यार, गुड हेल्थ, गुड विशेज. साथ ही विशेज कमिंग फ्रॉम सिस्टर इन लॉ आशा, नेफ्यू केशव, उनके भाई विकास और सभी परिवार फ्रॉम पाल्मा. तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर गानों का सिलसिला तो जारी है और आपके मूड को सेट करने के लिए जैसे हमने कहा लेकर आए हैं योर टाइमलेस तड़का अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक. यू कैन एंजॉय सम टाइमलेस क्लासिक्स ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. दिल का है

सो वन मोर टाइमलेस क्लासिक और इसी गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं आपके समाचारों की ओर. आप कहीं मत जाइए, यू आर द राइट प्लेस, जहां पर आपके लिए हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही प्यारे गाने आपके वीकेंड मॉर्निंग को सजाने के लिए, सैटरडे मॉर्निंग को सजाने के लिए. परी का साथ दिन के 11 बजे तक. एंजॉय दिस वन.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, exactly 10 a.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है टीना, आपको नमस्कार।
6: नमस्कार, संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। कैबिनेट ने शागस मुद्दे को लेकर मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच जारी बातचीत का जायजा लिया और बताया कि दोनों सरकारें समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। साथ ही शागस द्वीप समूह को लेकर मालदीव के एक नागरिक संगठन की ओर से किए गए कथित क्षेत्रीय दावे का भी जायजा लिया गया। मॉरिशस सरकार संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान मालदीव की किसी भी आधिकारिक घोषणा या पहल पर करीबी नजर रखेगी और देश की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर उचित कदम उठाएगी। मॉरिशस में 16वां गोपियों अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 11 से 13 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में दुनिया के विभिन्न देशों से भारत

भारतीय मूल की प्रतिनिधि शामिल हो रही है। इसका उद्देश्य वैश्विक भारतीय समुदाय को एक मंच पर लाना, आपसी सहयोग बढ़ाना और प्रवासी भारतीयों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना है। यह आयोजन भारतीय मूल के लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। पोर्टवी में विदेशी मछली पकड़ने वाले जहाजों के फिश होल्स में फिर से ईंधन रखने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रथा पर पहले रोक लगा दी गई थी क्योंकि फिश होल्स का इस्तेमाल मछलियों को रखने के लिए किया जाता है, लेकिन लंबे समय तक समुद्र में रहने वाले इन जहाजों को बड़ी मात्रा में ईंधन की जरूरत होती है, इसलिए डीजल को अस्थायी तौर पर फिश होल्स में रखा जा सकता है और फिशिंग एरिया में पहुंचने के बाद इसे जहाज के ईंधन टंकियों में डाल दिया जाएगा। इसके बाद फिश होल्स को हाई प्रेशर यानी तेज दबाव वाले पानी से और खास सफाई सामग्री से अच्छी तरह साफ किया जाएगा, जिसके बाद ही वहां मछलियां रखी जाएंगी। हालांकि इस व्यवस्था में साफ सफाई और खाद्य सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। विदेश में भारत चौथी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, लेकिन इस समय इस समूह की अगुवाई करना भारत के लिए कूटनीतिक रूप से काफी जटिल है। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के करीब दो महीने बाद ही अमेरिका और इसराइल ने ब्रिक्स सदस्य ईरान पर हमला कर दिया। इसके बाद तेहरान ने भी ब्रिक्स के सदस्य यूएई और सऊदी अरब पर जवाबी हमले किए। अब भारत के सामने इन तीनों देशों को एक ही मंच पर साथ लाने की चुनौती है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। कमलन रोड नुवेल फ्रांस में 72 साल की 72 ओल्ड की श्रीमती सुशील जोगी जो शोभा उदिन नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थ आज दिन के 11 बजे उनके घर कुमलुन रोड नुवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मागशानी रोजबेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। हमदानी लेन पों पाला में 43 साल के 43 ओल्ड के श्री जसबीर रामदानी जो गासो नाम से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थ आज दिन के 11 बजे उनके पिता श्री लोल रामदानी के घर रामदानी लेन पोंफाले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचुए की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। Avenue des Pinées 4 Bornemis, à Tartar Sal, qui est 78 years old, qui est Shemati Hemauti Kedan, Pedajnam Rambersad, ou Jusunanam, c'est Adajani Jati, qui est Mathieu Hogehem, Unkirtia, Jadinke Ekbaji, Unke Betia Shiraj, Kedan Kikar, Avenue des Pinées 4 Bornemis, ou Takar, et Timson Skarki, Diko, de Gaut, Kishmashan, Gumili Jajagi, Commission Today, at 1 PM. Tagore Road, Kongo Me, Atatar Sal, ki 78 years old, ki Shmati Bhanumati Bhagbat, jo Pedashinam Kandal Singh, jo Bhanumati naam se zyada jani jati thi, ki mrityu ho gayi hai. Unki arthi aaj din ke 2 baje, unke ghar, residence Bhagbat, टैगोर रोड कांगोप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कांगोप की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। पी नंबर 10 पियर दे सोलेय टेरासिन सुयाक में 65 साल के 65 years old के श्री विजय राम टूहल जो संतीश नाम से सदा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज शाम चार बजे उनके बेटे श्री अश्वेर राम टूहल के घर पी नंबर 10 पियर दे सोलेय टेरासिन सुयाक से उठाकर दफनाने के लिए रिवियरा गाले की श्मशान भूमि ली जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM। रागुलेन बांबूमी 67 साल की 67 years old की श्रीमती गीता काली पैदाइश नाम गुरुदयाल और जो मंदिरा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी वैसे इसी समय दिन के 10 बजे उनके घर रागुलेन बांबू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन बांबू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। शोक में सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं।

एफएम लव आज के लव जैसे हम कहते हैं कि हर दौर में डिफरेंट काइंड ऑफ लव स्टोरीज हमने देखी लेकिन जब ऐसी लव स्टोरीज होती हैं दिल करता है कि बस इन लव स्टोरीज को हमेशा देखते जाएं इन गानों को हमेशा सुनते जाएं तभी तो लेकर आए हैं आपके लिए हमारा ये प्रोग्राम जिसका नाम ही है टाइमलेस तड़का टाइमलेस मेलोडीज आप तक पहुंचाते हैं हम और आप भी हमारा साथ देते हैं ऑन ब्यूटीफुल वीकेंड सो अभी के लिए तो सैटरडे की सुबह है आप भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं मैं ऊपरी आपके साथ दिन के 11 बजे तक और उम्मीद करते हैं इन गानों को आप पसंद करेंगे इन गानों को आप एंजॉय करेंगे वंस अगेन थोड़ा सा रोमांटिक तड़का आज के इस मौसम को एंजॉय करने के लिए सो वेल फ्रेंड्स वीकेंड है टाइम टू स्लो डाउन टाइम टू रिलैक्स टाइम टू चिलैक्स आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ दिल का हाल चाहे कैसा भी क्यों ना हो बस हम इसे रोमांटिक एंड ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करेंगे कुछ गाने ऐसे जो आपको गुनगुनाने पर मजबूर करेंगे एंड ऑफ कोर्स अगर है किसी स्पेशल इंसान की याद अपनों के लिए कोई स्पेशल विशेस हमारा इंतजार रहता है आपके इन मैसेजेस डेडिकेशंस के लिए हमेशा ऑन 5499 1294

0: full of high energy cricket, fun and excitement. Cheer for your favorite team, enjoy great food, music and stand chance to win exciting gift vouchers. All while Radio Masti goes live as from 11 to 2:30 p.m. So do not miss the biggest cricketing showdown of the year with RM2 Radio Masti Island Cricket Extravaganza Season 4, the Grand Finale.
1: इस गणेश चतुर्थी पूरे भाव भक्ति और जोश से मनाएं, वो भी जुड़ावन ब्रदर्स के साथ। यूनिफॉर्म साड़ीज, डिफरेंट कलर्स, रेडीमेड काश्ती, कुर्ता यूनिफॉर्म्स फॉर जेंट्स एंड मेनी मोर आइटम्स नाउ ऑन सेल्स। जुड़ावन ब्रदर्स विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी। जुड़ावन ब्रदर्स ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल, सेंचुअल स्ट्रीट एंड औकात व्यजनी सेंट्रल फ्लैग। फोन नंबर 4132651।
2: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। और केजी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
3: RM2
4: रेडियो मस्ती।
3: North, South, East or West, tune into the very best. Radio Masti, your number one Balalut station.

0: FM2
1: रेडियो मस्ती।
0: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: अल्लू काजों गणेश चतुर्थी फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्लोरिस प्लांटे एपोटाटे फ्लेयर पे ऑफर एंड डिस्काउंट स्पेशल लोसुबान गेलोंट बुके एक फ्लेयर डॉन टू बन मैगज़ीन अ ट्रैवेल लील लालमाची फ्लैक कियर दे विल गुडलैंड्स कियर दे विल रॉयल रोड गुडलैंड्स रिविया दु ग्रैंड पार्क फ्लैक रिटेल पार्क बेलेयर एक रिश्टेयर मॉल पो प्लस रेंसेमेंट कांटेक्टे नू लो 57 96 92 24 57 96 92 24।
0: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। और केजी क्लासिक प्योर घी विशेज यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
2: इस गणेश चतुर्थी पूरे भाव भक्ति और जोश से मनाएं, वो भी जुरावन ब्रदर्स के साथ। यूनिफॉर्म साड़ीज, डिफरेंट कलर्स, रेडीमेड काश्ती कुर्ता यूनिफॉर्म्स फॉर जेंट्स एंड मेनी मोर आइटम्स नाउ ऑन सेल्स। जुरावन ब्रदर्स विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी। जुरावन ब्रदर्स, ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल, सेंचुअल स्ट्रीट एंड औकात वेजनी, सेंट्रल फ्लैग। फोन नंबर 4132651।
0: RM2
1: Radio Musti।

0: FM2
1: Radio Musti.
0: We invite you to a spectacular celebration of timeless beauty presented by Fortis Beauty with a novel purpose by Miss India Worldwide Mauritius 2026, co-powered by LIC and Mutual Aid. Join us this Saturday, the 12th of September 2026 at Triano Convention Center at 7:30 p.m. For more information, call us on 5257-7777. Catch us live on MBC TV.
2: गणेश चतुर्थी पूरे भाव भक्ति और जोश से मनाएं, वो भी जुड़ावन ब्रदर्स के साथ। यूनिफॉर्म साड़ीज, डिफरेंट कलर्स, रेडीमेड काश्ती कुर्ता यूनिफॉर्म्स फॉर जेंट्स एंड मेनी मोर आइटम्स नाउ ऑन सेल्स। जुड़ावन ब्रदर्स विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी।

0: Rowan Brothers, opposite Government School, St. Cecil Street and Arkad Virginie, Central Flag. Phone number 413-2651.
1: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्यू घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है. इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय और रैपिड सर्विसेज लिमिटेड. फोन नंबर 412-8468. और केजी क्लासिक प्यू घी विशेष यू अ पायस गणेश चतुर्थी.
2: RM2 रेडियो मस्ती.
3: So well, ladies and gentlemen, यहाँ पर आपके लिए कुछ beautiful songs हम लेकर आए हैं, साथ दे रहे हैं आप on RM2 Radio मस्ती. आपके messages, आपके dedications भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं on 54991294. Wishing heavenly happy birthday to late Sadanand Sukram. May you be happy wherever you are today. Best wishes from wife Hazmai, उनके बेटे हैं ताश्विन and Vashil, Dil Diksha और grandson Shivansh. सभी की ओर से प्यार and special wishes. चलिए अभी के लिए यहाँ पर ऐसे ही आपके sweet messages पहुँच रहे हैं on 54991294. कहते हैं एक ही नज़र में आप हमारे मेहमान बन गए, दो बातें क्या कर ली आप हमारी जुबान बन गए, पास होकर भी लोग हमें अपना बना ना पाए, दूर होकर भी आप हमारी जान बन गए. वेल दैट्स कमिंग फ्रॉम आकाश चेतन मनसुख बॉम्बू से साथ दे रहे हैं. ब्यूटीफुल शायरी आपने पहुंचाई है, डेडिकेटिंग गाना फॉर ऑल मनसुख परिवार और सभी लिसनर्स के नाम. थैंक यू सो मच आकाश, दैट्स रियली ब्यूटीफुल और इतना प्यारा मैसेज आपने हम तक पहुंचाया. थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल शायरी. साथ ही यहाँ पर हमारे साथ कनेक्टेड हैं हमारी प्रकाशवती जी. हाँ, मैंने भी प्यार किया है, द गाना रियली टच्ड योर हार्ट और बस हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही गाने आपके लिए हम चलाते जाएं. अनीता जी है फ्लैग से और घर के कामों में लगी हैं एंजॉयिंग नाइस सॉन्ग्स, सो आई एम श्योर कि ये गाना भी आपके दिल के सुकून को ज़रूर पहुँचाएगा. 10:33 परी का साथ है एंड दैट्स काफिराना. निकिता गांधी, अरिजीत सिंह की आवाज़ें फ्रॉम द फिल्म केदारनाथ. एन्जॉय दिस वन.

0: YouTube.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: Fashion tips powered by Halkari Fashion, house of ready-made garments.
1: Timeless Tadka.
0: RM2.
3: So well friends, time for your fashion tip. Timeless fashion के बारे में बात करेंगे and well जैसे हम जानते हैं बहुत ही जल्द we are going to celebrate गणेश चतुर्थी. So आज को festive looks के बारे में हम बात करेंगे. पांच पट्टी साड़ी ड्रेप आप try कर सकते हैं. Traditional साड़ी को आप slightly different तरीके से drape करें और simple jewellery के साथ look जो है वो instantly graceful लगता है. वहीं try कर सकते हैं आप चंदेरी पस temple jewellery यानी कि चंदेरी साड़ीज या सूट के साथ एंटिक गोल्ड टेम्पल ज्वेलरी वो फेस्टिव और एलिगेंट लुक देता है विदाउट लुकिंग ओवरडन. फुलकारी या फिर बनारसी दुपट्टा आप ट्राई कर सकते हैं. प्लेन कुर्ता सेट के साथ स्टेटमेंट दुपट्टा हमेशा वर्क करता है. वन ब्यूटिफुल पीस कैन ट्रांसफॉर्म योर एंटायर आउटफिट. सो ये आप ट्राई कर सकते हैं फॉर दिस फेस्टिव सीजन. गजरा मोमेंट ये सारी लहंगा या फिर अनारकली के साथ फ्रेश गजरा सिंपल ट्रेडिशनल एंड ऑलवेज टाइमलेस. सो यहाँ पर कुछ ट्रेडिशनल फैशन टिप्स आपके लिए फॉर दिस गणेश चतुर्थी. स्टे स्टाइलिश एंड स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ.
2: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स.
4: North, South, East, or West. Tune into the very best. Radio Masti, your number one Bollywood station.
3: So well, Saturday ka din, mausam not that awesome, lekin we have some awesome songs aapke mood ko set rakhne ke liye. So for now, we have this evergreen, beautiful gana aap sabhi ke naam. For all the listeners jo humara saath de rahe hain on Radio Masti, that's your timeless tadka, Parika saath din ke 11 baje tak.

0: FM2
1: Radio Musty.
2: Pour donner vie à vos projets de rénovation, choisissez Quality Décor. Carrelage, quartz, granit, ardoise, slab, tout est là pour vous dans nos 12 showrooms répartis sur toute l'île. Besoin d'un petit coup de pouce? Nous offrons des facilités de crédit pour rendre vos rêves accessibles et un service de transport pour vous livrer à la maison. Venez découvrir nos produits de qualité tout en profitant des conseils de nos experts. Suivez-nous sur Facebook, Quality Décor, pour ne pas manquer nos offres exclusives.
3: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है. इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड. फोन नंबर 4128468. आर के जी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी.
0: RM2
1: Radio

0: RM2 Radio Musti.
1: And well, it's 10:56 with this beautiful track. It's time for Pari to say goodbye. आ रही है पूनम लेकर योर बॉली ब्रांच, उनका साथ निभाइए। और जाते जाते यहाँ पर रोशनी कहती है बरसाती मौसम में

enjoying cool romantic songs. Thank you so much. साथ दे रहे हैं आप. So stay connected. तैयब जी सलाम आपको. प्यार भरा सलाम आप सभी के नाम. For your family, for all your loved ones. Thank you so much for staying connected. ये गाना आपके नाम.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
3: 103.5,
2: East, West,
3: 96.4,
2: Center,
3: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: टाइम चेक सुबह के 11 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार टीना से। टीना, आपको नमस्कार।
5: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। कैबिनेट ने इस बात का जायजा लिया कि प्रधानमंत्री को नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल नाडेक के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी से कैनबिस पॉलिसी रिफॉर्म पर गठित तकनीकी कार्य समूह की रिपोर्ट मिल गई है। इस रिपोर्ट की सबसे पहले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नेशनल ड्रग कमीशन जांच करेगी। इसके बाद रिपोर्ट को कैबिनेट के सभी सदस्यों के बीच विचार के लिए भेजा जाएगा। मॉरिशस में 16वां गोपियों अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 11 से 13 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में दुनिया के विभिन्न देशों से भारतीय मूल के प्रतिनिधि शामिल हो रही है। इसका उद्देश्य वैश्विक भारतीय समुदाय को एक मंच पर लाना, आपसी सहयोग बढ़ाना और प्रवासी भारतीयों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना है। यह आयोजन भारतीय मूल के लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। बाजार में भिंडी यानी लालू की कीमत में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जबकि सर्दियों के इस मौसम में इसकी सप्लाई भी कम होती जा रही है। उत्पादकों के अनुसार पौधों को प्रभावित करने वाली बीमारियों के कारण भी इसकी खेती मुश्किल हो गई है। कुछ किसानों ने भिंडी की पैदावार कम कर दी है, जबकि कुछ ने उत्पादन पूरी तरह बंद कर दिया है। इसके चलते बाजार में सप्लाई कम हुई है और कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इसकी जानकारी स्मॉल प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव कृपालु संगुन ने दी है। इंडोनेशिया में अनाक

क्रगाटुआ ज्वालामुखी 4 सितंबर से लगातार फट रहा है और बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी की राख हवा में फैल रही है। इसका असर पहले ही इस इलाके के कुछ एयरपोर्ट्स पर पड़ा है और उन्हें बंद करना पड़ा है और अब मॉरिशस पर भी इसका असर पड़ सकता है। ओशियानोग्राफर वासन कोपेमुतु के मुताबिक इस ज्वालामुखी के फटने का असर हमारे इलाके में भी महसूस किया जा सकता है। ज्वालामुखी की राख में सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैस होती है। ये गैस जब हवा में फैलती है तो एयर क्वालिटी और मौसम की स्थिति पर असर पड़ सकता है। बुधवार तक ज्वालामुखी से निकला राख का बादल मॉरिशस के से करीब 1800 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। विदेश में कल रूस के उत्तरी केंजल क्षेत्र में एक मिनी बस कार और लकड़ी ले जा रहे ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग घायल हुए हैं। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। थोड़ी देर में शोक समाचार। हमदानी लेन पोपाला में 43 साल के 43 ईयर्स ओल्ड के श्री जसबीर रामदानी जो गासू नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज इसी समय यानी दिन के 11 बजे उनके पिता श्री लोल रामदानी के घर रामदानी लेन पोपालन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। टीबीएस लेन विच्यमिल ट्रियोले में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड की मिसिज बीबी अमीना फकिया मामू का इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज दिन के डेढ़ बजे उनके घर टीबीएस लेन विच्यमिल ट्रियोले से निकालकर दफनाने के लिए पेंडे पापाया के कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 1:30 PM। कौलाबू मोंटाइलोंग में 79 साल के 79 ईयर्स ओल्ड के श्री कनाया गाउजो जो जगदेव नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, मृत्यु हो गए। उनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनके घर कौलाबू मोंटाइलोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ट्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.
2: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 11:10 हो चुके हैं। नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या कहें भाई, हम आ जाते हैं RM2 रेडियो मस्ती में लेके आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे से गाने। सबसे पहले तो मैं आपका सभी का स्वागत करूंगी आप ही के प्रोग्राम में। और आज है सैटरडे, वीकेंड भी है और गणेश चतुर्थी भी आ रही है, तो पूजा पाठ भी करना है और एग्जाम्स भी आ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई, पेरेंट्स की टेंशन, थोड़ा टफ टाइम है पर सब बैलेंस हो जाएगा। मैं तो यही कहती हूँ कि सब चीज़ें करो बट बैलेंस करते करते करते करते, और ये जो टाइम है ना, इस ये दोबारा नहीं वापस आने वाला। और ये टाइम चाहे स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे फैमिली के लिए हो, चाहे पढ़ाई के लिए हो, चाहे मस्ती के लिए हो, तो आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है, इन्जॉय करना है। मैं तो थैंक यू बोलूँगी हमारी प्यारी सी रिया को जो मॉर्निंग में सुबह 5 बजे से आपके साथ थे। उसके बाद हमारी प्यारी सी परी आई परियों की तरह, और इस समय आ गई हूँ मैं यानी कि पूनम। तो चलिए इन्जॉय करते हैं RM2 रेडियो मस्ती पर आपका बॉली ब्रंच प्रोग्राम। और सबको यही कहेंगे गाने बहुत बढ़िया चल रहे हैं।

0: colors, ready-made kashti, kurta uniforms for gents, and many more items now on sales. Jo Ravan Brothers wishes you a pious Ganesh Chaturthi. Jo Ravan Brothers, opposite Government School, St. Cecil Street, and Akad Vyajani, Central Flag. Phone number 413-2651.
1: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्यू घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है. इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड. फोन नंबर 412-8468. आर के जी क्लासिक प्यू घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी.
2: RM2 रेडियो मस्ती

0: Family Brunch RM2 Radio Masti
1: 11:23 हो चुके हैं दोस्तों, और अभी जो लोग इस समय प्रोग्राम सुन रहे हैं, चाहे ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं, चाहे घर पे सुन रहे हैं, मुझे पक्की उम्मीद है आपको वो पुराना ज़माना याद आ गया होगा। अगर न्यू जनरेशन का कोई सुन रहा है तो उसको ये जो नया मिका का कहते हैं ना रीमेक जो बना, ये भी बहुत मस्त बना, क्योंकि पहले 1986 में जाबाज मूवी में ये गाना आया था, और उस टाइम जो धमाका जो धमाल इस गाने ने मचाया था कि शायद उसके लिरिक्स कह लो, उसका स्टाइल कह लो, या उस तरीके से जो जिस तरीके से वो बनाया गया होगा गाना शायद रह गया होगा किसी ना किसी के दिल में। तो मिका ने भी कहा कि क्यों ना मैं फिर से गाऊं और फिर से बनाऊं इसको, और ये सच में बहुत ही ऑसम सॉन्ग था। तो मैं तो यही बोलती हूँ बॉलीवुड ब्रंच में हम ऐसे गाने चलाते हैं कि जब आपका लंच आवर हो तो आपका जो खाना है ना वो भी जब खा लो तो डाइजेस्ट बड़ी जल्दी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हम चलाते हैं मस्ती वाले गाने, डांस बीट्स वाले गाने, जिसमें आपको थोड़ी सी थकावट ख़त्म हो जाए और आपको याद ही ना रहे कि आप सुबह कब उठे और रात कब हो गई। और जो इस समय ट्रैवल कर रहे हैं हम तो उनको यही बोलेंगे आराम से गाड़ी चलाएं, एंजॉय कीजिए गानों को और मस्त मस्त रहें। ये गाने सभी आप सबके लिए।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती

0: और M2
1: रेडियो मस्ती।
2: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय और रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। और केजी क्लासिक प्योर घी विशेष यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
0: RM2
1: रेडियो।

0: Holly Branch RM2 Radio Masti
1: 11:33 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम बॉली ब्रंच के साथ में। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं लेटेस्ट मूवीज की जो लास्ट वीक आई है 3rd September को गंधारी तापसी पन्नू की, और मिर्ज़ापुर जो अभी लगी हुई है रिलीज हुई थी 4th September, और पंकज त्रिपाठी और अली फाजिल की जो एक्टिंग है बहुत ही खूब है, सब लिए उनको सराह रहे हैं। साथ में आई जीवन बीमा योजना 4th September को रिलीज हुई थी अरशद वारसी और विजय राज की, और साथ में आई है यानी कि कल आई है लास्ट मैन इन टावर मनोज बाजपेयी दिव्या दत्ता एंड बोमन ईरानी की। पर जो बात चल रही है ना सभी के मुंह पर है, चाहे कह लो कि हर एक्टर की जुबान पर एक ही मूवी का नाम चल रहा है आज की डेट में, हनुमानंश आज से रिलीज हो रही है मॉरिशस में। और मैं तो कहती हूँ कि ये एक ऐसा टाइम है, एक तो गणपति जी आ रहे हैं, साथ में हनुमानंश आ रही है और साथ में बच्चों के एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि एक बार दिखा लाओ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है। और बहुत ही सही मूवी है, मतलब अगर कहा जाए तो इसने अभी तक तो 200 करोड़ कमा लिया, मतलब 2 करोड़ में मूवी बनी और 200 करोड़ कमाना सिर्फ अभी तो वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है, अभी सिर्फ इंडिया में ही मतलब बढ़िया चल रही थी, जहाँ पर हर घर में सब लोग निकल गए और कहा कि सारी मूवीज इसके सामने फेल हो रही हैं। तो हम तो यही कहेंगे थोड़ा सा रिलैक्स करो, इन्जॉय करो, सैटरडे संडे है, मूवी देखो, खुद के लिए भी देखो, थोड़ा सा अच्छा लगता है, एंजॉय कर लीजिए ये वाला गाना।
0: बॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती

0: north, south, east, or west. Tune into the very best. Radio Masti, your number one Balalut station.
1: RM2.
2: Radio Masti.
3: इस गणेश चतुर्थी पूरे भाव भक्ति और जोश से मनाएं, वो भी चुरावन ब्रदर्स के साथ। यूनिफॉर्म साड़ीज, डिफरेंट कलर्स, रेडीमेड काश्ती, कुर्ता यूनिफॉर्म्स फॉर जेंट्स एंड मेनी मोर आइटम्स नाउ ऑन सेल्स। चुरावन ब्रदर्स विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी। चुरावन ब्रदर्स, ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल, सेंट जोसेफ स्ट्रीट एंड औकात व्यजनी, सेंट्रल फ्लैग। फोन नंबर 4132651।
4: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। और केजी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
1: RM2
2: रेडियो मस्ती।

0: हिंदी ब्रांच
1: और एम टू रेडियो मस्ती।
2: 11:46 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम बॉली ब्रंच के साथ और मैं इस समय आपका साथ दे रही हूँ पूनम। तो भाई ये जो बड़े सारे जो बॉलीवुड की जो लेटेस्ट न्यूज़ आती है ना वो बताने में और सुनाने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि हमें भी पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है और बॉलीवुड के अंदर तो कुछ ऐसे ऐसे करिश्मे होते हैं कि कुछ अलग ही हो जाता है। तो चलिए भाई प्रोड्यूसर कार्तिक निशानदार और अर्जुन सिंह बरन जो हैं कि एक हिंदी थ्रिलर फिल्म में काम करने जा रहे हैं जिसके लिए उन्होंने पहली पसंद को रखा है शाहरुख खान को और उन्होंने बताया है कि ऐसा जो जॉनर है ना अभी तक एसआरके ने नहीं किया है उसको एक एक्सप्लोर करना चाहिए और उसको एक भूत वाली मूवी में आना चाहिए चाहे थ्रिलर मूवी में आना चाहिए चाहे कुछ अलग करना चाहिए जिससे कि लोगों को शौक लगे और एसआरके फिर वापस अपनी उसी जगह पर आगे खड़े हो जाए जहाँ पर वैसे तो उनको उनकी सीट से कोई हटा नहीं सकता पर फिर भी एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर अपनी एज को लेकर या अपने एक ही जैसे रोल्स करते करते थोड़ा सा वो खुद भी बोर हो जाते हैं और वो कहते हैं कुछ नया लेकर आओ। तो ही जो हमारे स्क्रीन प्लेयर लिखते हैं जो स्क्रिप्ट्स लिखते हैं वो कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं और वो कह रहे हैं कि अब एसआरके जो आने वाले हैं वो आने वाले हैं कुछ ऐसे थ्रिलर के साथ में और ऐसी मस्ती के साथ में जहां पर सब लोग बोलेंगे अरे वाह ऐसा।

0: के तो एस आर के हैं भाई, वही है ना कि जो किंग ऑफ बॉलीवुड है वो है एस आर के। तो हम भी यही कहते हैं कि उनको ऐसी मूवीज मिलते रहें जो फैंस हैं उनके साथ जुड़े रहें, जब तक वो काम कर सकते हैं इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में हमारे साथ, मतलब हमारे साथ खड़े हो सकें और हम उन्हें बार बार देख सकें स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि वो बहुत ही किरण वाला जो स्टाइल करते हैं ना वो सभी को पसंद आता है। तो इन्जॉय कीजिए साथ में। इस समय हमारे साथ दे रही हैं कविता जी, इसके साथ में ही डैरन श्वेता, रविश, प्रिशा, लुवेश, आपादू फैमिली साथ दे रही है नौश रोशनवा से, उसके साथ में एलिना और अमित साथ दे रहे हैं इस समय, और हमारे बहुत सारे जो प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं जो कि कोई मैसेज कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, वो भी कह रहे हैं कि भाई मस्त प्रोग्राम चल रहा है, गाने बहुत अच्छे हैं। तो हम भी आपको कह रहे हैं कि अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5491294 पर। इंजॉय कीजिए अपने गानों को।
1: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: program to Radio Misty.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Musti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Time check, दोपहर के 12 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार टीना से. टीना, आपको नमस्कार.
5: नमस्कार. संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें. कैबिनेट ने शगुन मुद्दे को लेकर मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच जारी बातचीत का जायजा लिया और बताया कि दोनों सरकारें समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रही है. साथ ही शगुन द्वीप समूह को लेकर मालदीव के एक नागरिक संगठन की ओर से किए गए कथित क्षेत्रीय दावे का भी जायजा लिया गया. मिशन सरकार संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान मालदीव की किसी भी आधिकारिक घोषणा या पहल पर करीबी नजर रखेगी और देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर उचित कदम भी उठाएगी. मॉरिशस में 16वां गोपियों अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 11 से 13 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है. सम्मेलन में दुनिया के विभिन्न देशों से भारतीय मूलक के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं. इसका उद्देश्य वैश्विक भारतीय समुदाय को एक मंच पर लाना, आपसी सहयोग बढ़ाना और प्रवासी भारतीयों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना है. पिछले हफ्ते से ही ये बात सामने आ चुकी है कि मॉरिशस अपना एयर स्पेस खोलने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए सबसे पहले एक एविएशन काउंसिल का गठन किया जाएगा. नेशनल एविएशन काउंसिल आने वाले दिनों में बनाया जाएगा. प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते 3 सितंबर को इसकी घोषणा की थी. सनहाम सामी, जो 2001 से 2004 तक पुराने एयर एक्सेस एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य रह चुके हैं, उनका कहना है कि ये नई संस्था देश के लिए कई नए मौके लेकर आएगी. हमारी विरासत को बहुत देर होने से पहले बचाना, यही सरकार का मकसद है. सरकार नेशनल हेरिटेज अथॉरिटी बिल लाने की तैयारी कर रही है, जिसे मार्च 2027 तक संसद में पेश किया जाएगा. कला एवं सांस्कृतिक विरासत मंत्री महेंद्र गोंदिया का कहना है कि विरासत की सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा ताकि नुकसान पूरी तरह होने से पहले ही कदम उठाया जा सके और खासतौर पर जलवायु परिवर्तन, समय के साथ हो रही खराबी और तोड़फोर से ऐतिहासिक धरोहरों को होने वाले नुकसान को रोकने पर ध्यान दिया जाएगा. विदेश में भारत चौथी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, लेकिन इस समय इस समूह की अगुवाई करना भारत के लिए कूटनीतिक रूप से काफी जटिल है. ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के करीब 2 महीने बाद ही अमेरिका और इजराइल ने ब्रिक्स सदस्य ईरान पर हमला कर दिया. तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई. थोड़ी देर में शोक समाचार. टागोलेन लाफ्लोआ में

0: Tagolène, la fleur amée. एक सच साल की 61 years old की श्रीमती प्रमीला कालीचंद, श्रीमती प्रमीला कालीचंद जो आदुन नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके भतीजे श्री शिव कुमार विष्णुदत्त प्रसाद की घर तगोली लफलोगा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गौम्बुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। मोंसलमान कॉन्स्टांस पोस्ट द फ्लैक मी 62 साल के 62 years old के श्री आत्मा प्रभु जो प्रभु नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनकी पत्नी श्रीमती अनीसा प्रभु के घर मोंसलमान कॉन्स्टांस पोस्ट द फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावंतिया की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। TBS Lane with Yamil Triole में वैसे ये शोक समाचार हमने पढ़ ली है। कौलाबू मोंटाइलोंग में 79 साल के 79 years old के श्री कनाया गाओजो जो जगदेव नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनके घर कौलाबू मोंटाइलोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमशन टुडे एट 2:30 PM। कैथ्रोबो रोड बोनाकोई में 57 साल के 57 years old के श्री चित्रंजुन माधो जो राजू मौसम रोची नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल रविवार को दिन के ग्यारह बजे उनके घर कैथ्रोबो रोड बोनाकोई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावंतिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। रोडबॉ शेरी मोका में 65 साल की 65 years old की श्रीमती भामा रामचंद जो फी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े दस बजे उनके भाई श्री अशोक रामचंद के घर रोडबॉशेरी मोका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टांस सैंपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10:30 AM। शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: रेडियो मस्ती।
1: 12:13 हो चुके हैं दोस्तों, अभी भी आप जुड़े हैं हमारे साथ, यानी कि मैं आपके साथ पूनम, और मेरा जो प्रोग्राम है, शो का नाम है वो बोली ब्रंच है। और बोली ब्रंच में हम तो आपको कहते हैं साथ में बॉलीवुड की भी सुनो और लंच भी लो, पर हमने आज ये एक माइक जो बनाया हुआ है ना, ये उन हमारे स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, जो भी इस समय हमारा प्रोग्राम्स पेरेंट्स सुन रहे हैं, तो थोड़ी सी वॉल्यूम तेज़ कर दें, उन सभी बच्चों को हम कुछ बताना चाहते हैं। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम समझते हैं, हम जानते हैं, आपको पढ़ने के लिए थोड़ी सी मेहनत चाहिए और साथ में प्लानिंग चाहिए, थोड़ी सी कुछ खाना पीना ऐसा चाहिए जिससे कि आपकी आंखें खुली रहें, आप कुछ अच्छा पढ़ सकें, जिससे आपको थोड़ी सी एनर्जी एक्स्ट्रा मिल सके। तो हम आपको इतना ही बोलेंगे, आपने बहुत ही छोटी छोटी सी काम करनी है, कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है और कुछ लेनी है। तो आपको क्या करना है कि एक ग्लास दूध में 2 खजूर डालने हैं और उसमें 4-5 भीगे हुए बादाम रात को आप रख देना। आप पूरा मंथ जब तक आपके एग्जाम्स हैं एवरी डे आप कर सकते हैं। और छोटी सी चुटकी इलायची सबको ब्लेंड कर दीजिए, उसमें आप 1 चम्मच ओट्स भी डाल सकते हैं और उसको ब्लेंड करके अच्छे से एक स्मूदी टाइप से बन जाएगी, आप उसको पी सकते हैं, जिससे आपको मतलब 3-4 घंटे एक तो पेट भरा रहेगा और भरने के साथ में आपको एनर्जी मिलेगी। खजूरों से आपको स्पेशल उसमें शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको इतना ही बोलेंगे कि बहुत सारे बच्चे ना ऐसे टाइम में क्या करने लग जाते हैं कि एक्स्ट्रा कॉफ़ी पीने लग जाते हैं, मतलब बार बार कॉफ़ी बनाते हैं कि आंखें खुली रहें। तो आपको क्या करना है, जूस लेने हैं नेचुरल, आपको फ्रूट्स लेने हैं जो बिल्कुल फ्रेश है, फ्रूट्स वो खाने हैं। आपको एक प्लेट खा सकते हो तो भी बहुत बढ़िया बात है, अगर आपको 2 पसंद है, जैसे एक ऑरेंज पसंद है, एक एप्पल पसंद है, आप ये लीजिए, आप स्मूदी बनाइए, पर आप कॉफ़ी का जो इनटेक है उसे बहुत कम से कम रखिए। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ प्रिपरेशन करनी है, रिविजन करनी है रात को, तो पूरे दिन में आप सिर्फ 1 या 2 कप पीजिए, बार बार बार बार कॉफ़ी मत पीजिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा, कई बार बच्चे बहुत बार देखने को मिलता है 5-6-7-8-9 कप पी जाते हैं पूरे दिन में, और उसके बाद जब मॉर्निंग में एग्ज़ाम टाइम होता है तो या तो उनके पेट में बहुत दर्द होता है या उनको बहुत स्ट्रांग हेडेक होने लग जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉफ़ी कम करना पड़ेगा, फ्रूट्स सादा लेने पड़ेंगे, एनर्जी के लिए आपको ओट्स खाने पड़ेंगे, जो भी आपके पेरेंट्स खाना बना रहे हैं वो खाइए। तो ये बस सिर्फ कॉफ़ी को अवॉइड कीजिएगा और प्लानिंग कीजिएगा, स्माइल रखिएगा चेहरे पे, थोड़ी सी वॉक कीजिएगा घर पे, थोड़ा सा मस्ती भी कीजिएगा, गाने सुन सकते हैं, गाने सुनिए, अपने पेरेंट्स से बात करें 5-6 मिनट, उनसे थोड़ी सी बूस्ट लीजिए। पेरेंट्स को हम इतना ही बोलेंगे, थोड़ा सा डांटिए मत, बहुत प्यार से संभाल के उनके साथ चलिए, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा प्रेशर होता है। और बस ऐसे ही चलते रहिए, देखिए आपके एग्जाम्स भी बहुत अच्छे होंगे और पेरेंट्स भी खुश होंगे, और जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आपकी एकदम से फिट होगी। तो इन्जॉय कीजिए गानों को।
0: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: ऑलिव ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 12:26 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम बॉली ब्रंच के साथ और इस समय का इंतजार सभी को होता है जहां पर हम खेलते हैं गेम्स। जी हाँ, हम इस टाइम के लिए खुद वेट कर रहे होते हैं कब ये कहाँ गेम स्टार्ट होगी और हम कब आपके साथ खेलेंगे। तो चलिए भाई, रेडी हो गए आप सब? अगर बिल्कुल पास आ जाइए, ध्यान से सुनिएगा। हम आप जितने जाएंगे सर्कस जवाटा की तरफ से गेम खेली जा रही है और यहाँ पर आपको मिलेंगे 2 एंट्री टिकट्स और यहाँ पर जो होगा आपको अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस मिलेगा जहाँ पे मैजिक होगा, थ्रिल्स होगा, लाफ्टर स्पेक्टुलर सर्कस परफॉर्मेंस फॉर होल फैमिली जहाँ पर आप सर्कस जवाटा एट बागेतल विद शो एवरी थर्सडे जो होता है और फ्राइडे 6 बजे से लेके सैटरडे एंड संडे 2:30 यानी कि 2:30 से शुरू होता है 5:30 बजे तक, जहाँ पर आप बुकिंग करवा सकते हैं 5250-9413 जो कि गेम है सर्कस जवाटा की तरफ से। तो हमको आपने हमें 5491294 पर बस ये बताना है कि जो अभी हम गाना प्ले करने जा रहे हैं थोड़ी देर में, उस मूवी का नाम क्या है और उसके अंदर जो मेन लीड हैं उन्होंने किस बॉलीवुड एक्टर ने काम किया है। तो फिर हम जब ये गाना फिनिश होगा तब हम बताएंगे कौन विनर बना। सबसे पहले आपको इतना ही बताएंगे, सर्कस बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। जहाँ पर भी आपको लगता है कि सर्कस हो रही है वहाँ ज़रूर

0: आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है खुद के लिए, ब्रेन के लिए और बच्चों के लिए। एंजॉय कीजिए गाने को।
1: बॉडी ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: लेडीज एंड जेंटलमैन, सर्कस की तारीख में आज की रात एक यादगार रात होगी, क्योंकि बरसों के बाद आज फिर आपके सामने आ रहा है आपका प्यारा हंसता गाता जोकर राजू। मैं नहीं जानता पिछले 20 वर्षों में वो कहां था, उसने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, ये तो बेचारा राजू जानता है या उसका दिल जानता है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, वो जहां भी था, जिस हाल में भी था, सुखी था, दुखी था, खुशहाल था, मुफलिस था, बीमार था, वो लोगों में खुशी बांट रहा था। और ये वो दौलत है जो जितनी लुटाई जाए उतनी ही बढ़ती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, राजू का कहना है कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी तमाशा है, लेकिन मैं कहता हूं कि राजू का तमाशा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये तमाशा नहीं, ये जिंदगी है।
1: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह उछल कूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
0: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

0: RM2
1: Radio Musti.
2: Cirque Zavata à Bagatelle. Prépare-vous pour un moment magique et un spectacle cirque extraordinaire. Tous les jeudis et vendredi, 18h, achetez des billets, gagnez un gratis. Ou pour rouler un bon plan pour week-end, vingez Cirque Zavata samedi et dimanche, 14h30 et 17h30. Et ban l'école, compagnie et ban groupe, nous pas fin briller eux. Nous avons un package spécial pour eux avec ban spectacle à partir 11h. Allô, qui se piatane? Réserve votre place à ce la même, l'eau 50 50 94 13.
3: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है. इंपोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड. फोन नंबर 4128468. आर के जी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी.
0: RM2
1: रेडियो मस्ती.

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 12:41 हो चुके हैं दोस्तों। हमने बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सवाल आपसे पूछा था, जो कि सर्कस ज़वाटा की तरफ से आया था, और जहां पे आप जीत सकते थे 2 एंट्री टिकट्स, और यहां पर आपको मिलेगा बहुत ही प्यारा सा अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फिल्ड विद मैजिक थ्रिल्स लाफ्टर एंड स्पेक्टिकुलर सर्क परफॉर्मेंस हो फॉर द होल फैमिली, जहाँ पर आप जा सकते हैं भगतल में, जो शो थर्सडे एंड फ्राइडे 6 बजे से लगता है, एंड सैटरडे एंड संडे जो कि 14:30 से स्टार्ट होता है और 5:30 बजे तक होता है, जहाँ पे आप बुकिंग कर सकते हैं, अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं, खुद जा सकते हैं। कईयों को सर्कस बहुत पसंद होती है, जैसे मुझे पसंद है, तो आपको अगर मोर इन्फॉर्मेशन लेनी है या आपने अपनी बुकिंग करानी है तो आप कर सकते हैं कॉल 5250-9413 पर, जो कि एक प्यारा सा मैजिकल शो, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आपको जो टिकट्स लेनी है, यहाँ पर आपको MBC आना पड़ेगा सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक, और यहाँ पर आपको कलेक्ट करनी होगी। और अब बात आती है उसी क्वेश्चन की जो हमने आपसे पूछी थी। हमने पूछा था आपको कि जो हम गाना चलाने वाले हैं वो किस मूवी से लिया गया है, और उसके जो मेन लीड हैं वो उनका क्या नाम था। तो वही बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया, पर क्या करें, हमारी एज यूजुअल प्रॉब्लम हमारे ऊपर पड़ जाती है कि भी किसको ये टिकट दें, कौन किसने गेम खेला। आप लोग, इतने सारे लोगों ने गेम किया, पहले तो आप सभी को थैंक यू बोलूँगी, और उसके साथ साथ आपको उस लकी विनर का नाम भी बताने जा रही हूँ कि जिन्होंने ये 2 एंट्री टिकट जीती हैं। सबसे पहले नाम चलो उनके लिए पहले तालियां बजाते हैं और उसके बाद बताते हैं उनका नाम। क्या बात है भाई, बहुत सारी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस किया जाता है मिसेस जर्गर को, जिन्होंने जीता है ज़वाटा की 2 एंट्री टिकट्स। आप बनी हैं लकी विनर, और आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया। मूवी का नाम था मेरा नाम जोकर, और उसमें जो मेन लीड थे वो थे हमारे जो सबसे ब्रिलियंट कहते हैं बॉलीवुड के वो एक्टर, जिनका नाम था राज कपूर। यस, मेरा नाम जोकर मूवी से लिया गया। तो हम तो आपको इतना ही बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस,

0: इंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ और साथ में ये गाने आप सबके लिए।
1: Body Branch RM2 Radio Masti।

0: मस्ती ब्रांच
1: और M2 रेडियो मस्ती।
2: 12:53 हो चुके हैं और हम तो लेकर आते हैं आपके लिए बहुत सारी टिप्स, बहुत सारी बातें, थोड़ी सी गेम्स जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग से वेरिएशन मिलते हैं एक शो में, जहाँ पे आपका दिल भी लगा रहता है और हमारा भी दिल लगा रहता है आप सबके मैसेजेस के साथ में। अभी इस आवर के बाद हम आपके मैसेजेस भी लेंगे, पर अभी हम बात करते हैं कि अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जो मूवी आई है कल, जो रिलीज़ हुई है हैवान, उसने थोड़ा सा अभी सिनेमा हॉल पर अपनी जो नज़ारा है वो नहीं दिखाया, क्योंकि उनकी थोड़ी सी ओपनिंग फुस्सी रही, मतलब उसमें इतना कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अक्षय कुमार या सैफ अली खान ये तो एक बहुत ऐसे नाम है जिनकी जिनका नाम सुनते ही पूरे लोग भागते हैं, पर यहाँ पर उनका कुछ कमाल ज़्यादा दिखा नहीं पाए हैं। अभी तक सिर्फ 5 करोड़ की ही कलेक्शन हो पाई है, जहाँ पर हम बात करें बाकी मूवीज़ में बहुत सारे पैसे भी बना रहे हैं, और साथ में कहते हैं ना कि अगर स्क्रिप्ट में दम नहीं होता, एक्टर्स सब अच्छा काम करते हैं, बॉलीवुड में जो भी आता है हर डायरेक्टर उनको या प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर्स उनको देखकर ही लेते हैं, पर अगर बात होती है स्क्रिप्ट के अंदर, अगर स्क्रिप्ट एक्टर्स ने ढंग से नहीं पढ़ी, उस चीज़ को जो वो डायरेक्टर मांग रहा है उसमें नहीं दे सके, तो मुश्किल आ जाती है, और जब ये मुश्किल खड़ी हो जाती है तब हमारे ऐसे ही मूवीज़ बन जाती हैं जहाँ पे ज़्यादा कलेक्शन नहीं हो पाती, और जहाँ पर स्क्रिप्ट के ऊपर पूरा मतलब दिल और दिमाग और सभी एक्टर्स मिलके काम कर जाते हैं वहाँ पर बात होती है कुछ अलग ही। तो ऐसे ही बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है बिना टेंशन के, बिना ज़ोर ज़बरदस्ती के, लोग खुद से आ रहे हैं कह रहे हैं अरे इधर भी लगाओ इधर भी लगाओ, और कुछ ऐसी मूवीज़ हैं कहीं कह रहे हैं ये हटाओ और वो हटाओ, तो बस ऐसे ही है बॉलीवुड का, कभी फ्राइडे अप और कभी डाउन, तो ये ज़िंदगी में हमारे भी होता ही रहता है कि कभी कुछ कभी कुछ। तो चलिए भाई इंजॉय करते हैं गानों को और साथ में जुड़े रहिए बॉली ब्रंच के साथ।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musty.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the musty. Feel the musty.
3: टाइम चेक, दोपहर के 1 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना से। याचना, आपको नमस्कार।
4: नमस्कार पूनम, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। आज से श्री वेंकटेश्वर स्वामी व्रत दीक्षा महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट स्थित तेलुगु महासभा के मुख्यालय में कलश स्थापना विधि के साथ 40 दिनों के व्रत का आरंभ हुआ। कल 13 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक समारोह लगेगा। समापन अगले 20 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ किया जाएगा। दो सदियां पहले भारत से निकले जहाज अपने साथ लेकर गए थे सपने, उम्मीदें और एक विरासत। आज उन्हीं प्रवासियों की आने वाली पीढ़ियां दुनिया के अलग अलग कोनों से मॉरिशस समेत एक मंच पर जुटे हैं। पूर्वजों ने समुद्र पार करके दुनिया में अपनी नई पहचान बनाई थी। आज उनकी संतानों के पास उस पहचान को एक वैश्विक ताकत में बदलने का मौका है, अवसर है। 16वें गोप्य इंटरनेशनल कन्वेंशन 2026 का, जहां भारतीय डायस्पोरा की एकता, पहचान और भविष्य पर मंथन हो रहा है। मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, जापान, कनाडा, म्यांमार, भारत और अन्य देशों से भी प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल तथा मॉरिशस के अंतर्राष्ट्रीय भारतीय डायस्पोरा के सदस्यों के साथ हुआ। विदेश की खबरों में, सऊदी अरब के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑयल पाइपलाइन पर ईरान ने ड्रोन हमला करवाया है, जिसके बाद उसे बंद करवा दिया गया है। ये 1200 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन है, जिसने मध्य पूर्व संकट की शुरुआत से ही सऊदी अरब को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बाईपास करने में मदद की है। रियाद ने दावा किया कि सैटेलाइट तस्वीरों में पाइपलाइन के पास काला धुआं दिखाई दिया है, जिसके बाद इसे बंद करवा लिया गया है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। मोसेलमा कॉन्स्टांस पोस्ट डे फ्लैक में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्डर के श्री आत्मा प्रभु जो प्रभु के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दोपहर 2:30 बजे उनकी पत्नी अनीसा प्रभु के मकान मोसेलमा कॉन्स्टांस पोस्ट डे फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। विष्णुदत्त प्रसाद, क्षमा करें, टैगोर लेन लाफ्लोहा में 61 साल की 61 ईयर्स ओल्ड की कुमारी प्रमिला कालीचरण जो आदुन के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनके भांजे शिव कुमार विष्णुदत्त प्रसाद के मकान टैगोर लेन लाफ्लोहा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ग्रैंडबुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हम

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: मॉर्निंग ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 1:08 हो चुके हैं और थर्ड आवर लग भी चुका है और पता ही नहीं चल रहा है कैसे टाइम भाग जाता है। अभी तो हमने शुरू किया था और फिर देखिए ऐसे ही थर्ड आवर स्टार्ट होता है और वहाँ पे एहसास होता है अरे कितने सारे गाने सबको नचाना है, थोड़ा सा हंसाना है, थोड़ी सी मस्ती करनी है। पर हम स्पेशली उन हाउस वाइफ्स को के लिए थैंक यू बोलेंगे, आप सभी के लिए जो इस समय सुबह से उठी होती हैं, घर के काम कर रही होती है, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े, बच्चों को देखना,

0: हस्बैंड को देखना या खुद को संवारना सजाना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अपने लिए टाइम नहीं निकल पाता पर फिर भी निकालते हैं आप लोग, तो बहुत अच्छी बात है। और हम हस्बैंड्स को भी और मेल्स को भी यही कहेंगे, आप भी कमाल के हैं भाई, क्या बात है, आप लोग भी छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, सब्जी लाना, उनको संभालना, गार्डनिंग करना, छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी होती हैं जो हफ्ते में हमें रियलाइज़ ही नहीं होती बट हमको वीकेंड में ही याद आता है। तो हम आपको बोलेंगे आप सभी हीरो हैं, क्यों आप अपने आप को कम समझें, हम तो दोनों को ही बैलेंस में रखते हैं, दोनों को बराबर रखते हैं, आप दोनों ही कमाल के हैं। इंजॉय कीजिए गानों को और साथ बने रहिए हमारे साथ में, यानी कि बॉली ब्रंच के साथ मैं हूँ इस समय आपका साथ दे रही हूँ पूनम। पर ये गाना जो नेक्स्ट आने वाला है ना, माई नेम इज़ खान से है, मूवी से, और इस गाने ने बहुत ही धूम मचाई थी। चलिए एक बार यही हम धूम आपके साथ भी मचाते हैं।
1: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 1:18 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं बॉली ब्रंच के साथ में। और यहाँ पर हम बहुत सारी बातों के साथ में कई बार बहुत छोटे छोटे से टिप्स लेकर आते हैं, क्योंकि कई बार हमारी जो दोस्त होते हैं वो भूल जाते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। तो मैं तो आपको बोलूँगी कि देखिए, अगर आप घर में से भी बहुत सारी चीज़ें निकालेंगे ना, तो उससे भी आपकी स्किन बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है। और जब स्किन अच्छी लगने लगती है, अपने चेहरा थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है, तो मुझे लगता है कि इंसान हेल्थ पर भी ध्यान देने लग जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको घर के अंदर ना हमेशा एक चीज़ ज़रूर रखनी है। अगर आपको अपने स्किन से बहुत ज़्यादा प्यार है, वैसे तो कैसे कह सकते हैं कि जो भी आपको चीज़ें मिले वो सब अच्छी ही होती हैं, पर एक चीज़ होती है जो हमारे क्रश्ड राइस होते हैं ना, जो कच्चे राइस होते हैं उसको बिल्कुल क्रश मिलता है, वो ग्राउंडेड होते हैं और वो बिल्कुल पिसे हुए होते हैं। आपने मार्केट में जाके बस वो पिसे हुए राइस लेने हैं, जिससे मतलब बहुत सारे टेस्टी टेस्टी गातो बनते हैं। और अगर आपको पुडिंग बनानी है वो भी यूज़ होता है उससे, पर वो जो

0: आइस है ना वो आपको हमेशा रखना है। आपको क्या करना है, अपने हाथ पे, जैसे हमारी स्किन बहुत डार्क सी लगने लगती है, डल सी लगने लगती है, बहुत ऐसा लगता है मतलब बिल्कुल फेस एकदम कहते हैं ना जैसे झुंझलाहट सी आ जाती है, जैसे चेहरे पे कोई भी शाइन नहीं है, तो आपको क्या करना है कि आपने जो एक चम्मच अपने हथेली पर, हाथ पर ही वो जो चावल हैं, जो क्रश्ड चावल हैं उसको डालने हैं, उसको थोड़ा सा अगर आपके पास रोज़ वाटर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नॉर्मल पानी आप लीजिए, उसको छोटा सा एक फिंगर से उसको मिक्स कीजिए पानी को और उन राइस को, जब वो मिक्स हो जाए अच्छे से तो उसके अंदर आपको क्या करना है, एक दो ड्रॉप कोकोनट ऑयल के डालने हैं, उसके अंदर डाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आपके पास बादाम ऑयल है वो डाल दीजिए, जो भी आपको अगर एक दो ड्रॉप्स भी है तो बहुत अच्छा है। आपने धीरे धीरे उसको अपने चेहरे पर दोनों हाथों से हल्का हल्का रब करना है, बिल्कुल हल्का, मतलब बिल्कुल हल्का, आपको एकदम से ऐसे नहीं करना कि एकदम से रगड़ दिया फेस, नहीं, बिल्कुल हल्का सा रगड़ना है, और हल्का सा मतलब आप 30 सेकंड्स करेंगे या 1 मिनट बस मैक्सिमम कीजिएगा, कम से कम 30 सेकंड्स कीजिएगा, और उसको पानी से बिल्कुल नॉर्मल वॉश कर लीजिए। उसके बाद अपने चेहरे पर मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाइए, ये मेल्स के लिए भी है और फीमेल्स के लिए भी है, और आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाइए अच्छी सी, मतलब ये नहीं बहुत लिटिल सा लगाएंगे, ज़्यादा लगाइए, जैसे 2-3 पंप लीजिए, अच्छे से लगा दीजिए और उसको रात भर छोड़ दीजिए। आप देखेंगे मॉर्निंग में आपका फेस एकदम बिल्कुल साफ, क्लीन, शार्प फीचर्स नज़र आएंगे, जो आपको डल सा फेस लग रहा है उसमें एकदम से शाइन और चमक आ जाएगी। तो यही तो हम लाते हैं कि आपके लिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लाते रहते हैं, बस आपको देखना है कि आपको ये मार्केट में कहाँ मिलेगा, और लेकर आइए और इन्जॉय कीजिए गानों को।
1: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: मस्ती ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 1:30 हो चुके हैं। फलक पर साथ चल, मेरे फलक पर चल। भाई फलक पर तो पता नहीं हम साथ जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, बट हाँ आपके साथ ज़रूर चल रहे हैं। चाहे आप कोई भी रास्ता पकड़ रहे हो, हमारा गाना, हमारी बातें, हमारा ये बॉली ब्रंच और पूरा MBC आपके साथ साथ चल रहा होता है। और बस आप चलते चले, हम आपको फॉलो करते रहेंगे। तो ये भाई फॉलो के साथ साथ में बहुत सारे नाम भी जुड़े हुए हैं, थोड़े से ले लेते हैं। ममा नंदा बुंगा शाय जो उनकी बेटियों ने विश करी है, उनको कह रही है कि मम्मा आप बहुत ही प्यारे और ख़ास हो और आपको इसका एहसास नहीं है। मैं कई बार बोल नहीं पाती हूँ पर फिर भी इतना कहना चाहती हूँ, आई रियली लव यू। क्या बात है भाई, बेटी की तरफ से ऐसा प्यार मिल जाए मम्मा को तो और क्या चाहिए होता है, कुछ नहीं चाहिए होता। राजन रघुपति जी साथ दे रहे हैं लंदन से और इन्जॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। ललित जी USA साथ दे रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। यलेश जी साथ हैं और मस्त लंच की प्लेट के साथ में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं लंच मैंने खा लिया, बस आपका मुँह में पानी दिलवा रहा हूँ। और आप सिर्फ बता रहे हो, जिस तरीके से प्लेट भेजते हो ना यलेश, सच पे मुंह में पानी आ जाता है। तो इंजॉय कीजिए और वो सभी लोग जो इस समय लंच कर रहे हैं या कर चुके हैं, अपने फूड को रियली इंजॉय कीजिएगा। सुया बिहारी जी साथ दे रही है और अपने बच्चों के लिए इतना ही कह रही है कि जान दे देती हूँ तुम पर क्या करूँ, तुम लोग क्यों नहीं समझते कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, पढ़ाई करो उसके बाद बातें करेंगे और फिर मैं बहुत तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट लेकर आऊँगी। तो बच्चा पार्टी अगर मम्मा आपको बोल रहे हैं कि वो कुछ लेकर आएंगे तो पक्का लेकर आएंगे, पर आपको सिर्फ इतना करना है अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, पूरा फोकस करना है। रवि जी साथ दे रहे हैं इंडिया से और इंजॉय कर रहे हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को। तैयब जी साथ दे रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं, कह रहे हैं आई एम इंजॉइंग रियली। ज्योति जी, आशनी, रेखा, सुरेखा और मधुप फैमिली के लिए भी ज्योति जी चाह रही हैं एक प्यारे से गाने की फरमाइश के साथ में आई हुई हैं। तो वही हम गाने तो आप ही की पसंद के चलाते हैं, कई अपनी पसंद के भी चलाते हैं, बट आपको इतना सिर्फ कहते हैं कि आप गानों को थोड़ा सा फील किया कीजिए। जब आप फील करते हैं ना तो रियली एहसास होता है कि गाने तो कितने इंपॉर्टेंट हैं बट जो उसके लिरिक्स हैं वो कितने अच्छे लगते हैं। तो मोहब्बत है तो ये गाना आप सबके लिए।
0: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: Holly Branch RM2 Radio Masti.
1: क्या प्यारा सा गाना था. मैंने आज उस गाने में अपना नाम सुना. अरे मैंने लगा ये गाने में नाम भी था. चलो कई बार ऐसे ही होता है, कई बार अचानक से कोई आपको पीछे से आवाज़ दे देता है, अरे कैसे हो, ठीक हो. तो ऐसे ही कई बार किसी को शॉक और सरप्राइजेस देते रहना चाहिए. अपने वो दोस्तों को कॉल कर लीजिए, क्योंकि सैटरडे संडे दो ऐसा टाइम होता है जहाँ पर सिर्फ आपने अपनों के लिए निकाला होता है टाइम. और अगर आपने वो टाइम अपने दोस्तों के साथ भी थोड़ा सा शेयर कर लिया ना, तो जब आप एक एज में आएंगे जब आपके पास बहुत सारे लोग नहीं होते, बहुत सिलेक्टिव लोग रह जाते हैं, तब वहाँ पर वो लोग काम आते हैं जिनको बहुत टाइम से आपने फ़ोन नहीं किया, मैसेज नहीं किया. तो ये टाइम आपका है, इसको यूटिलाइज़ कीजिए. किसी को कॉल कीजिए, पूछिए. अगर कोई काम नहीं है, अगर आपके अभी बच्चे बच्चे नहीं हैं, मतलब सभी के थोड़ा होते हैं, तो अगर नहीं है तो जाओ दोस्तों के साथ, थोड़ा घूम के आओ, कोई मॉल चले जाओ, आइसक्रीम खा लो. नहीं, आइसक्रीम नहीं खाना, ठंड बहुत है, आइसक्रीम नहीं खाना, तो थोड़ी गर्म कॉफ़ी पी लेना. कॉफ़ी भी मत पीना. क्या ऐसा कुछ खा सकते हो, कोई ऐसी चीज़ बता सकते हो जो आप हमें भी बताएं 5499 1294 पर, कि सर्दी में क्या खाना चाहिए. क्योंकि देखिए, हम टिप्स देते रहते हैं, कितनी बार आपको बताते हैं ये करो वो करो, पर आप भी तो हमें बताओ कि भाई ये जो स्पेशल चीज़ है ना, ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है, ये ओल्ड लोगों के लिए अच्छी है, या ये यंगस्टर्स के लिए अच्छी है. तो ऐसी चीज़ें करते रहा करो, क्योंकि इससे थोड़ा सा मूड भी रिफ्रेश रहता है और एहसास भी होता है अरे भाई हमने कुछ स्पेशल तो करना है. तो स्पेशल ये जो प्रोग्राम चल रहा है, इसमें एक गाना एक ऐसा स्पेशल है जो मेरे दिल के तो बहुत ही करीब है, और मुझे एहसास है कि आप सबके लिए भी अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि इसमें सच में इतने सारे एक्टर्स हैं, मतलब एक के बाद एक जो सरप्राइजेस देते हैं ना, तो दिल करता है कि उनको देखते रहो भाई. एक तो स्पेशल दिलेर मेहंदी की आवाज़ में है ये गाना, और बहुत सारे और सिंगर्स जुड़े हुए हैं इसके साथ में. पर इसमें जो खासियत बात है ना, ये अपनी जो मूवमेंट्स करते हैं, जो इनके लिरिक्स हैं, और उसके बाद में ये प्यारे प्यारे से जो वर्ड्स बोलते हैं, और उनकी जो क्लासिक डिज़ाइनिंग, जो डिज़ाइनर्स ने जो क्लोथ्स बनाए हैं, बहुत ही ऑसम बनाए हैं. इस गाने को फील कीजिए और इन्जॉय कीजिए इन गानों को, और हमें बताइए आपके दिल में कुछ चल रहा है. तो 5499 1294 पर ये गाना आप सबके लिए.
0: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: Party Brunch RM2 Radio Masti
1: 1:51 हो चुके हैं दोस्तों और इसके साथ ही आज का बॉली ब्रंच यहीं रुकता है, पर मस्ती कल फिर लौटेगी 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। जो आपने प्यार दिया है उसके लिए खास स्पेशली थैंक यू सो मच मेरी तरफ से। मैं थी आपके साथ पूनम और मेरे बाद आपको साथ मिलने जा रहा है हंसनी का। तब तक मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ाई कीजिए, जो भी आपका पैशन है उसको फॉलो कीजिए। बस आपका बस इतना ही कहना जो कि है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप वो सब कर पा रहे हैं जो आपको है। तो चलिए भाई RM2 रेडियो मस्ती से मैं तो जाती हूँ, पर बस हंसनी का इंतजार है और उसके साथ में आप जुड़ेंगे बहुत ही फंटास्टिक गानों के साथ में। उससे पहले आप सुन पाएंगे समाचार।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती

0: Radio Musty.
1: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musty. All the way. The latest news and the greatest mix of music.
0: RM2 Radio Musty.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Musty.
4: North, South,
5: 103.5.
4: East, West,
5: 96.4.
4: Center,
5: 99.4.
1: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
6: Wishing you all a very good afternoon. Check your time. It's 2 p.m. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना के साथ आपको नमस्कार याचना
7: नमस्कार हंसिनी सभी सुनने वालों को भी नमस्कार सुनिए संक्षिप्त समाचार कुछ जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं के बाद परिवार वाले अभी भी इंतजार में हैं कि कब जांच समाप्त होगी और न्याय होगा ये इंतजार उनके जख्मों को और कुरेद रहा है उनके दर्द को और बढ़ा रहा है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन दफ्तर के अनुसार एक न्याय संगत देश में ऐसी देरी सामान्य नहीं है और इनकी वजह का पता लगाना उतना ही जरूरी बन गया है रोड्रिग्स में ये घटना 26 साल की एक महिला को ने दम तोड़ दिया है उस पर चाकू से वार किया गया था 26 साल की ये बस कंडक्टर आज सुबह रोड्रिग्स के अस्पताल में भर्ती हुई जहां पर उसने अपने जख्मों के कारण दम तोड़ दिया आज शव परीक्षण किया जाएगा ताकि उसकी इस मृत्यु का पता लगाया जा सके ये महिला गोश बोंज की रहने वाली थी और ऐसा माना जा रहा है कि 27 साल के उसके साथी ने उस पर चाकू से वार किया संदिग्ध एक मैकेनिशियन है जो मोलवीबै का रहने वाला है उसे पुलिस ने गिरफ्तार करके हिरासत में रखा है आज से श्री वेंकटेश्वर स्वामी व्रत दीक्षा महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट स्थित तेलुगु महासभा के मुख्यालय में कलश स्थापना विधि के साथ 40 दिनों के व्रत का आरंभ हुआ कल 13 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक समारोह लगेगा समापन अगले 20 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ किया जाएगा श्री वेंकटेश्वर स्वामी व्रत दीक्षा महोत्सव का समापन 20 अक्टूबर को होगा विदेश में सऊदी अरब के एक बहुत महत्वपूर्ण ऑयल पाइपलाइन पर ईरान ने ड्रोन हमला करवाया है जिसके बाद उसे बंद करवा दिया गया ये 1200 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन है जिसने मध्य पूर्व संकट की शुरुआत से ही सऊदी अरब को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने में मदद की रियाद ने दावा किया कि सैटेलाइट तस्वीरों में पाइपलाइन के पास काला धुआं दिखाई दिया है जिसके बाद इसे बंद कर लिया गया है ये थी अब तक की खबरें थोड़ी देर में शोक समाचार
5: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
7: शोक समाचार सुनिए टैगोर इन ला फ्लोरा में 61 साल की 61 years old की कुमारी प्रमिला कालीचरण जो आदरण के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है उनके अर्थी सुपहर 3 बजे उनके रिश्तेदार शिव कुमार विष्णुदत्त प्रसाद के मकान टैगोलेन लाफ्लोरा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांवबुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 3 PM बुआशेरी रोड मोका में 88 साल के 88 ईयर्स ओल्ड के श्री प्रेम दत्त गुलाम जो बालू के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज सुपहर 2:30 बजे उनकी अर्थी कल

0: से पहल 2:30 बजे उनकी पत्नी अनीता गुलाम के मकान वाशेरी रोड मौका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोस्टांस सैंपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो ऑन संडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: RM2 Radio Musti

0: MPC-च्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। MBC की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। MBC wishes you all a pious गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: Plug and play.
1: RM2.
2: विघ्नहर्ता भगवान गणेश आपके सब के जीवन में सभी कष्ट और बाधाएं दूर करें, आपके घर में सुख शांति समृद्धि और खुशियां भरे। गणपति बप्पा मोरिया, हर एक परेशानी को दूर करना है, हर कदम पर बस बप्पा मार्गदर्शन देकर बस हम सबको आशीर्वाद दे और सबके जीवन में सुख शांति और सफलता से भर दे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। गणेश चतुर्थी जो प्रिपरेशंस बस शुरू हो गई है कब से और अभी भी जारी है, और कई लोग तो अभी बहुत ही बिजी है। दिल से प्रार्थनाएं जो बिल्कुल शुरू हो गई है और बप्पा घर आ रही है, घर आंगन जो है खुशहाल हो जाएंगे। सो इसी के साथ हम सब भक्तगण बस इसी भक्ति से हम बप्पा के गुणगान कर रही हैं। और रेडियो मस्ती इस है आपके साथ इस पावन माहौल में आप लोगों का साथ निभाने के लिए। जय श्री गणेश आप सभी को। तो यहाँ पर शुरुआत हो गई है फॉर म्यूजिकल जर्नी, जो सेट हम करने वाले हैं आपके साथ शाम के 4 बजे तक। इट्स ऑल अबाउट म्यूजिक, ग्रेट गाने और कुछ आपके मैसेजेस, कुछ आपकी तरफ से बातें जो हम वेलकम करना चाहेंगे ऑन 5499-1294 आपके मैसेजेस। और यहाँ पर इस मुलाकात को और भी रंगीन बनाने के लिए आ गई है आपके साथ हंसनी। आई बी विद यू, साथ साथ ही चलेंगे। सो विशिंग यू ऑल अ ग्रेट सैटरडे वाला आफ्टरनून। कैसे हो? वेली होप कि सब ठीक ठाक है, और अगर तबीयत कुछ ठीक नहीं है मौसम की वजह से, ये तो बदलाव हो रही है ना, कभी कड़ी धूप तो कभी एकदम से तापमान में गिरावट आ रही है। सो ऐसे में जो स्वास्थ्य है वो कुछ यू नो अबिट फ्रजाइल हो रहा है। सो टेक ऑल योर प्रिकॉशंस, जितने भी लोग इस समय साथ निभा रहे हैं, टेक मैक्सिमम योर विटामिन सी वाला डोज एंड गेट वेल सून जो अभी बस कुछ बीमार है। अदरवाइज जहाँ पर भी हमारे लिसनर्स जुड़े हुए हैं, एकदम फिट एंड फाइन मुस्कुराते हुए, रेडी टू हैव दिस फैबुलस डोज ऑफ म्यूजिक, जहाँ पर कुछ आराम फरमाएंगे, जहाँ पर हम इस दिन को और भी खास बनाएंगे, वहाँ पर हम चले आएंगे टू वेलकम एवरीवन। तो जहाँ पर भी आपका साथ है, स्टिल वर्किंग वेरी हार्ड, सुबह से काम हो रहा है, सुबहों को हार्श आपको, और कई तो इस समय सफ़र करते हुए आपने बस ओनली रेडियो मस्ती को ऑन कर लिया है, क्योंकि वही तो है आपका हम सफर, आपका हम कदम। सो वी आर हियर आपके साथ अप टिल 4 PM।
0: प्लग एंड प्ले
1: RM2।
0: प्लग

2 रेडियो मस्ती। सैमसंग गैलेक्सी S26 FE अब आ गया है सिर्फ 36,990 रुपीस में। साथ में मिल रहा है 6,000 रुपीस का डिस्काउंट। आप सब जानते ही हैं, लेकिन थ्वासिसाई में आपके पास पेमेंट की चॉइस भी है। आप चाहें तो अपने बैंक कार्ड से 3 महीने में बिना किसी इंटरेस्ट की पेमेंट करें, या फिर अपने क्रेडिट कार्ड से 12 महीने में बिल्कुल बिना इंटरेस्ट की पेमेंट। और हाँ, भूलिएगा मत, गिफ्ट में मिलेंगे सैमसंग केयर प्लस और गूगल AI प्रो। तो देर किस बात की है, सैमसंग गैलेक्सी S20

0: Plug and play.
1: RM2.
2: सैटरडे के इस खूबसूरत दोपहर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास म्यूजिकल शो में, जहां पर एकदम वंडरफुल वाला जो सिलेक्शन है हम लेकर आएंगे डेफिनेटली, ताकि जो एंटरटेनमेंट है वो पक्का हो जाए आप लोगों के लिए. और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी अपनी आरजे हंसनी. एंड बस अगले घंटों के लिए जो आने वाले हैं गाने, दैट विल बी ग्रेट. बिताएंगे शानदार गीतों के साथ एक वंडरफुल सफर, खूबसूरत यादें और ढेर सारी मुस्कुराहटों के साथ हम इस सफ़र को तय करने वाले हैं. सब कुछ ऐसा होता है कि इस सैटरडे वाला दिन जो आता है, काम की टेंशन थोड़ी कम होती है डेफिनेटली, मूड थोड़ा सा और बेहतर बन जाता है और दिल कहता है आज बस अच्छे गाने तो सुने जाएंगे. और बिल्कुल सही जगह पे आए हो, जहाँ पर मंजिल आपने ढूंढनी है बिल्कुल सही, दैट्स आवर वे टू मस्ती. तो चलिए बिना किसी देरी से हम अपनी म्यूजिकल जर्नी को सेट करेंगे और 4 बजे तक जो मुलाकात रहेगी उनको और भी खास रंगीन बनाने के लिए विल गेट थ्रू द म्यूजिकल जर्नी. और यहाँ पर गाना जाएगा उन सभी लोगों के नाम जो इस वक्त अपनी चाय या फिर कॉफ़ी के साथ रेडियो सुन रही है और कुछ तो अभी अपने शॉप में हमारा साथ निभा रही है टू गेट सम कुराज, टू गेट सम और एनर्जी. और गणेश चतुर्थी के इस पावन माहौल में कई लोग तो धूमधाम से अपने यू नो शॉपिंग्स कर रही हैं, और जो झाकरी ग्रुप्स हैं वो तो अपने ज्वेलरीज को ढूंढ रही हैं, स्टिल गोइंग फॉर सम शॉपिंग्स. सबों को आज आप सभी को, ये तो डेफिनेटली एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा त्यौहार है जिसमें बप्पा के भक्ति के साथ हम झाकरी करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, पूजा प्रार्थनाएं कर लेते हैं, रात भर के लिए जागरण होता है. तो इन सबसे वे डोमेस्टिक का साथ है तो बस कायम रहेगा, ऑलवेज एंड फॉरएवर. तो इसी सैटरडे के हलचल में हम बिल्कुल आप ही के साथ हैं. सो बिग हेलो टू ऑल द फ्रेंड्स जो अभी साथ निभा रही हैं, मे बी यू गोइंग फॉर सम मोर शॉपिंग्स, या फिर थके हुए सुबह से काम हो रहा है और अब यू नीड अ ब्रेक, ये भी चलेगा, व्हाई नॉट, वी हैव गॉट म्यूजिक फॉर एवरीवन. सो यहाँ पर साथ निभाते रहिए हंसनी का एंड विल बी वेटिंग फॉर यू. जी हाँ, आपके कुछ बातें हम भी तो सुनना चाहेंगे. सो विल बी वेटिंग, आपका इंतजार रहेगा ऑन 5499 1294.

0: 92.2 रेडियो मस्ती।
1: इस गणेश चतुर्थी पूरे भाव भक्ति और जोश से मनाएं, वो भी चुरावन ब्रदर्स के साथ। यूनिफॉर्म साड़ीज, डिफरेंट कलर्स, रेडीमेड काश्ती कुर्ता यूनिफॉर्म्स फॉर जेंट्स एंड मेनी मोर आइटम्स नाउ ऑन सेल्स। चुरावन ब्रदर्स विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी। चुरावन ब्रदर्स, ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल, सेंट जोसेफ स्ट्रीट एंड औकात व्यजनी सेंट्रल फ्लैग। फोन नंबर 4132651।
0: RM2 Radio Musti

0: Plug and Play.
1: RM2.
2: क्या बात है, यहाँ पर शादी वाला गाना था एंड उम्मीद है कि इस गीत ने आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ला दी होगी। और अगर आप हमारे साथ अभी अभी जुड़े हुए हैं तो सभी का स्वागत आपका, और जो बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं, दैट वाज एक्चुअली अ फील ऑफ योर वेडिंग। तो यहाँ पर जैसे भी हो हालात, चाहे जैसे भी हो आपका मूड या फिर सिचुएशन के हिसाब से हम लेकर आते हैं गाने। और अगर बाय चांस मूड थोड़ा सा और हसमुख है तो उससे रिलेटेड कुछ और खास रोमांटिक गाने हम लेकर आएंगे, हैप्पी सॉन्ग्स हम लेकर आएंगे इस शनिवार को और भी ज़बरदस्त बनाने के लिए। वी हैव गॉट सम ग्रेट म्यूजिक जहाँ पर आपको की किसी पुरानी याद आएगी, किसी खास दोस्त या किसी प्यारे इंसान की याद दिला सकता है, क्योंकि संगीत की सबसे खूबसूरत बात तो यही है ना, कुछ गाने सिर्फ सुनने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। वी फील द म्यूजिक। और एक्चुअली यहाँ पर जो हम करने वाले हैं वो तो आपके मैसेजेस को पढ़ने का सबमिट होने वाला है ऑन 549-1294 पर आपके मैसेजेस हो जाए। यहाँ पर किसी ने कहा है महादेव टर्न्स पेन इनटू पावर, ये तो बिल्कुल सच बात आपने कही है। हर हर महादेव आपको सूरज भाई, आपका साथ जारी है ऑल द

0: way from Triuli, listening to Plug and Play, having a wonderful afternoon. तो यहाँ पर गाना आपके लिए जरूर चल जाएगा. Thank you so much for your positive vibes. Next one आ जाएगा for Akshat and Daksh के लिए, जो गणेश चतुर्थी की बस प्रिपरेशन कर रहे हैं. पापा की तरफ से प्यार है और गणपति बापा आ रहे हैं जी, धूमधाम से उनका हम स्वागत करने वाले हैं. तो मोकोहाश आपको, जितने भी यू नो प्रिपरेशंस आप कर रहे हो उनकी आराधना में, जो बस आप करने जा रहे हो पूरे शिद्दत के साथ, भक्ति भाव के साथ आप करिए. और बापा तो आएंगे आप सबको आशीष बरसाने के लिए आप पर. तो यहाँ पर खुशी के साथ ही हम इस त्यौहार को मनाने वाले हैं, धूमधाम से हम गणपति बापा को घर लेकर आएंगे. And we have it from Sulakshana. A big hello to all the friends and still doing some ghar ke kaam kaj. Actually, hafte bhar ke liye aap kitne busy the, ghar aangan ki saaf safai jo aap kar rahi thi, aur kal Ganpati Bappa ko ghar par aap lekar aa rahi ho. Aur sthapna ke baad yes, puri raat aarti, bhajan, kirtan, jagri aur aise hansi khushi ke saath aap bappa ko aur bhi you know खुशी खुशी के साथ विदा करने से पहले उनका हम स्वागत करेंगे सबसे पहले घर में. जी हाँ बिल्कुल, हम तो गणपति बापा को लेकर आते हैं और चाहे हम उनका विसर्जन तो कर लेते हैं, लेकिन मन ही मन में वो तो हमेशा हमारे दिल में रहते हैं, हमारे मन में बसते हैं. जी हाँ राइट, ये है फ्रॉम स्वराज सेंडिंग सम ब्यूटिफुल पिक्चर्स, जहाँ पर वो सजावट कर रही हैं और कुछ डेकोरेशंस वो कर रहे हैं अपने घरों में और आंगनों में भी. को यहाँ पर डेकोरेशंस यू नो यहाँ पर भरे हुए हैं घर आंगन प्यार के साथ, और फैमिली सब जुड़े हुए हैं. सेंडिंग लॉट्स ऑफ गुड विशेस टू रेडियो मस्ती. ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है और बहुत बड़ी बात है कि आपने रेडियो मस्ती को बस शामिल कर लिया है आपके इस बड़े माहौल में. तो बस हम चले आएंगे टू वेलकम एवरीवन और हंसी खुशी के साथ जो पॉजिटिव वाइब्स है उनको बस पहुंचाते रहेंगे. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद रेडियो मस्ती. यहाँ पर आप भी शेयर करें अपने फोटोज को, अपने मैसेजेस को, जानकर खुशी होगी कि क्या कुछ हो रहा है, द लेटेस्ट हैपनिंग्स एंड ऑल. यहाँ पर हंसनी है एंड ऑल सेट आपके साथ रहने के लिए अब टिल 4 पीएम. टू बी विद अस, टू बी विद यू ऑल इन आवर म्यूजिकल जर्नी ऑफ आज का प्लग एंड प्ले.
1: Plug and play.
2: RM2.
1: Plug and play.

0: Plug and play.
1: RM2.
0: Plug and play.

0: Center, 99.4.
1: RM2, Radio Musty.
2: Radio Musty.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
3: Good afternoon, everyone. I check your time. It's at 3 p.m. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना के साथ आपको नमस्कार।
4: नमस्कार हंसिनी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। कुछ जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं के बाद परिवार वाले अभी भी इंतजार में हैं कि कब जांच समाप्त होगी और उन्हें न्याय मिलेगा। जिन्होंने ये दुर्घटना की है उनके जिम्मेदारियों के बारे में उन लोगों को पता चलेगा। ये इंतज़ार उनके जख्मों को और कुरेद रहा है, उनके दर्द को और बढ़ा रहा है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन दफ्तर के अनुसार एक न्याय संगत देश में ऐसी देरी सामान्य बात नहीं है। इस देरी के बारे में, उसके कारणों के बारे में पता लगाना उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। रोडवेज में 26 साल की महिला की मृत्यु चाकू लगने से हुई। 26 साल की इस बस कंडक्टर ने आज सुबह अस्पताल में दम तोड़ दिया। रोशबोंजे रहने वाली इस महिला पर 27 साल के उसके साथी ने चाकू से वार किया। मोलुबे रहने वाले इस मैकेनिशियन को गिरफ्तार करके हिरासत में रखा गया है। दो सदियां पहले भारत से निकले जहाज अपने साथ लेकर गए थे सपने, उम्मीदें और एक विरासत। आज उन्हीं प्रवासियों की आने वाली पीढ़ियां दुनिया के अलग अलग कोनों से मॉरिशस में एक मंच पर जुटे हुए हैं। पूर्वजों ने समुद्र पार करके दुनिया में अपनी नई पहचान बनाई थी। आज उनके संतानों के पास उस पहचान को एक वैश्विक ताकत में बदलने का मौका है, अवसर है। 16वें गोपियों इंटरनेशनल कन्वेंशन 2026 का, जहां भारतीय डायस्पोरा की एकता, पहचान और भविष्य पर मंथन हो रहा है। विदेशी समाचारों में, सऊदी अरब के एक बहुत महत्वपूर्ण ऑयल पाइपलाइन पर ईरान ने ड्रोन हमला करवाया है, जिसके बाद उस पाइपलाइन को बंद करवा दिया गया है। ये 1200 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन है, जिसने मध्य पूर्व संकट की शुरुआत से सऊदी अरब को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बाईपास करने में मदद की है। रियाद ने दावा किया कि सैटेलाइट तस्वीरों में पाइपलाइन के पास काला धुआं दिखाई दिया है, जिसके बाद इसे बंद कर लिया गया। ये थी अब तक की खबरें। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: RM2, Radio Musty.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: tag and play.
1: RM2.
2: Moriya Ganapati Bappa, Moriya Bappa ka aashirwad hamesha aapki aur aapke parivar par bana rahe. Yehi hamari shubhkamnaye hain. Ganapati Bappa Moriya Mangal Murti Moriya. Jahan par Ganapati Maharaj aate hain, unka aashirwad hota hai. Wahan har mushkil aasan ho jati hai. Aur Ganapati Bappa ka naam lene se jeevan ke sabhi vighna door hote hain. Aur khushiyan jo hai wo bas खिल जाते हैं और श्री गणेश जी हमारे घरों में सुख शांति और समृद्धि लेकर आते हैं. हर मुश्किल जो है वो बस दूर हो जाती है. हर आशीर्वाद शुभ हो, हर सपना पूरा हो, बस बप्पा का आशीर्वाद साथ हो. इसी के लिए हम प्रार्थनाएं करेंगे और हम अपने बप्पा को घर पर लेकर आएंगे.

0: एकदम शुद्ध वाला माहौल छा गया है मॉरिशस में और कई जगहों पर वर्ल्ड वाइड जहां पर भी गणपति चतुर्थी को मनाई जाएगी धूमधाम से प्रिपरेशन शुरू हो गई है और मिलकर हम इस माहौल को इस सफर को बस और भी खुशहाल बनाएंगे. दिस इज द सगन आवर प्लग एंड प्ले जहां पर आप लोगों के आने से कुछ और खास बन गया है. सो वी वेलकम यू इन द सगन आवर प्लग एंड प्ले. ये जो शो होता है एक मुलाकात होती है एक वादा होता है यहाँ पर एक दूसरे के लिए जो प्यार है दिल में जो दिल का रिश्ता है उनको बस हम कायम रखते हैं. दिस इज रेडियो मस्ती जहाँ पर ये अपनापन है ये दोस्ती है जो आपने बढ़ा ली है. सो वी आर हियर टू हैव योर फ्रेंडशिप योर लव योर सपोर्ट जो आपका साथ मिलता रहता है जो बहुत ही प्रेशियस है यकीन मानिए. और जब भी हम यहाँ पर आते हैं इट्स ऑलवेज बीन स्पेशल. जैसे कि हम पहली बार के लिए आए थे वो प्यार वो खुशी आज भी ऐसे ही है सेम लेवल. हम तो कहते हैं कि कुछ बढ़ गया है. दिस इज रेडियो मस्ती और यहाँ पर हंसनी है जो आपके साथ है. आई विल बी विद यू ना साथ साथ चलेंगे अब टिल 4 पीएम.
1: Plug and play.
2: RM2.
1: Plug and play.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: Welcome again on the Radio Masti. A big hello to everyone. Good afternoon, my beautiful friends jo yahan par connected hai. सैटरडे वाला दिन यहाँ पर मतलब तो यही है, नो स्ट्रेस नो टेंशन, बस गुड वाइब्स और सुपर हिट म्यूजिक. तो यहाँ पर इक्वेशन बिल्कुल सही है ना, इस दिन को और भी स्पेशल बनाने के लिए मैं हूँ आपकी दोस्त यहाँ पर और जो हंसनी है जो आपके साथ जुड़े हुई है और स्पेशल गाने हम लेकर आ रही हैं. चाहे आप घर पर रिलैक्स कर रहे हो फ्रेंड्स के साथ भी, यू हैविंग अ मस्ती भरा टाइम, और स्पेशली वाइल ड्राइविंग अगर गुड म्यूजिक हम सुन लेते हैं तो हमारा जो ड्राइव होता है और भी स्पेशल हो जाता है. स्टिल वी हैव टू मेंटेन ऑल द प्रिकॉशंस ताकि जो सफ़र है वो रहे सुरक्षित, आप सब रहे सेफ जहाँ पर भी आप बढ़ रहे हो. सो हैविंग योर चाय नाउ, इट्स आफ्टरनून वाला टाइम और कई जगहों पर बारिश हो रही है. सो मौसम के बारे में बात करें तो इट्स क्वाइट ग्लूमी और ठंड भी महसूस हो रही है. सो उन जगहों पर जहां पर बारिश हो रही है क्या प्लान्स हैं आज? आप घर पर रहेंगे, यू स्टे इंडो और परिवार के साथ कुछ अच्छा सा वक्त बिताएंगे? दैट्स वेरी नाइस, बिल्कुल सही सोचा है. और अगर कोई इवेंट है यहां पर बस बाहर जाना है, सो टेक ऑल द प्रिकॉशंस टू स्टे सेफ. तो यहाँ पर गाने जो है हम ऑफकोर्स लेकर आ रहे हैं इसी उम्मीद के साथ कि एंटरटेनमेंट यहाँ पर हो रहा है और आप खुश हो रही हो. और उन्हीं खुशियों के लिए यकीन मानिए हम सेट कर लेते हैं हमारा लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स. तो यहाँ पर गाना जो है हम डेडिकेट करेंगे फॉर निशिखा के लिए, द ब्यूटिफुल एंजल जो आज 2 years की हुई है. थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग हर ब्यूटिफुल फोटो, शी इज़ लुकिंग जस्ट लाइक अ डॉल. हैप्पी बर्थडे टू यू माई स्वीट लिटिल डॉलिंग, यहाँ पर विशेष है फ्रॉम मामा संजना, उनके पापा है नंदीश और सभी रंगलोल परिवार यहाँ पर है, दिबिदिन परिवार आए हैं, दादी माँ नानी माँ और चाचा चाची सभी परिवार आए हुए हैं. टू विश यू हैप्पी बर्थडे, यू आर जस्ट क्यूट एंजल. आप आई तो बाहर आई, आपकी नन्हे कदम से जो खुशी है जो प्यार है वो बस बढ़ गया है परिवार में. आप तो बड़ी हो और बड़ी बन के आप आई हो, घर की लक्ष्मी जो आप हो, तो लेकर आई ढेर सारी खुशियाँ टू एवरीवन. तो हैप्पी बर्थडे टू लिटिल प्रिंसेस. और यहाँ पर हंसनी है पूरे टीम के साथ, हम गाएंगे आपके लिए हैप्पी हैप्पी बर्थडे.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: और यहाँ पर जितने भी हमारे दोस्त, उनका नाम किरण है, दैट वाज अ स्पेशल ट्रैक अब सभी लोगों के लिए, जहाँ पर सर के गा रहे थे, क्या बात है. दैट वाज अ स्पेशल गाना टू मेक इट अ ब्यूटीफुल आफ्टरनून. और वैसे में जहाँ पर आपके मैसेजेस आए हुए हैं, बस हम तो रेडी होते हैं टू हैव योर लविंग मैसेजेस ऑन 5 4 9 12 94 एवर रेडी. तो चलिए बिल्कुल खूबसूरत लव मैसेजेस के साथ हम आगे बढ़ाते हैं प्लग एंड प्ले प्रोग्राम को. प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, प्यार वो है जो दिल से निभाया जाए. तुम्हारी एक मुस्कान मेरी पूरी दुनिया को खूबसूरत बना देती है. तुम साथ हो तो हर पल खास है. कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, दिल से जुड़ जाते हैं. तुम मेरे लिए उन्हीं खूबसूरत रिश्तों में से एक हो. जिंदगी में बहुत से लोग मिलते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा होता है जिसके बिना जिंदगी अधूरी से लगती है, और वो तुम ही हो. थैंक यू ऋषभ जी फॉर शेयरिंग द ब्यूटीफुल लाइंस. और आपके लिए, आपके हम सफर के लिए, बस ये था एक वंडरफुल शायरी. दिल से आपको कहेंगे थैंक यू. और साथ में गाना भी आएगा उसके पीछे. इसके लिए कीप लिसनिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर गुड वर्ड्स. थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग द शो प्लग एंड प्ले. यहाँ पर मुलाकात हमारी तो टिल द एंड है, आई मीन 4 बजे तक है. इसके बाद द म्यूजिकल जर्नी तो बस जारी रखा जाएगा, क्योंकि वो तो आएगी. यस, दिव्या विल बी हियर एंड शी इज एक्चुअली ऑन हर वे. दिव्या कम सून. यहाँ पर आपके जो लिसनर्स हैं, बस बेसब्री से अभी का इंतजार कर रहे हैं टू बी विद अस फॉर आज का बॉलीवुड टकटकाटक. लेकिन फिलहाल हम अपने प्लग एंड प्ले का जो मैजिकल सफर है उसको बस आगे बढ़ाएंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर लविंग द कलेक्शन. एंड आई गॉट द मैसेज कमिंग फ्रॉम लवली अनुषा. थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग योर विश गणपति बप्पा मोरिया. और फुल प्रिपरेशंस यहाँ पर हो रही हैं पूजा पाठ के लिए. और इस साल के लिए आप अपने मम्मी को बहुत ही मिस करने वाली हो. वो नहीं ही आ पाएगी, लेकिन शी इज़ योर राइट है, हमेशा रहेगी. मिस यू ममा, ये आपका मैसेज है. और जितने भी पल आपने बताए हैं जब मिठाइयाँ बनते समय, ये तो बस याद आएगी. लेकिन नो वरीज़.

0: I'm your strong beti. You will manage with the blessings of Bappa. Surely. आप एकदम स्ट्रांग हो और बप्पा के आने से जो ताकत है वो कुछ और बढ़ जाएगी. राइट. सो अनुषा, विशिंग यू ऑल द बेस्ट. कुराज टू यू और गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया. ये गुड विशेस है, हौसला हिम्मत आपके लिए, बिल्कुल टू मेक इट पॉसिबल एंड टू मेक इट फ्रूटफुल. बप्पा के आने से हमेशा घर आंगन जो है खुशहाल हो जाता है ना. तो विशिंग यू लॉट्स ऑफ लाइट, लॉट्स ऑफ पीस. और जितने भी हमारे परिवार जुड़े हुए हैं इस समय, जस्ट टू एंजॉय द बेस्ट ऑफ म्यूजिक, बिल्कुल सही जगह पे आए हो. दैट्स आवर रेटम मस्ती.
1: प्लग एंड प्ले.
2: RM2.
1: प्लग एंड प्ले.

हाँ बकौल आप लोगों से जो रिश्ता है वो सबसे खास ही तो है, दिल का रिश्ता। इसी गुड वाइब के साथ आपको छोड़े जा रही हैं। इशारा है ठीक है, 4 बजे सुनेंगे समाचार और इसके बाद विल बी हैविंग लॉट्स ऑफ ग्रेट म्यूजिक कमिंग अप इन आज का बॉलीवुड टक टकाटक विद दिव्या। शी विल बी हियर टू एंटरटेन अस टिल 7 PM। बस उनका साथ हम देने वाले हैं, जबकि मुलाकातें तो हमारी होगी, जल्द ही होगी, दोबारा होगी, कल होगी। तब तक के लिए प्लीज स्टे सेफ एंड हैव अ वंडरफुल टाइम ऑन रेडियो मस्ती।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना के साथ। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार हंसिनी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। रुड्रिग्स में 26 साल की महिला की मृत्यु, चाकू लगने से हुई। 26 साल की इस बस कंडक्टर ने आज सुबह अस्पताल में दम तोड़ दिया। वोश बोंजू रहने वाली इस महिला पर 27 साल के उसके साथी ने चाकू से वार किया। मोलू में रहने वाली इस मैकेनिशियन को गिरफ्तार करके पुलिस की हिरासत में ही रखा गया है। कुछ जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं के बाद परिवार वाले अभी भी इंतज़ार में हैं कि कब जांच समाप्त होगी और उन्हें इंसाफ मिलेगा। ये इंतज़ार उनके जख्मों को और कुरेदता है और उनके दर्द को और बढ़ाता है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन दफ्तर के अनुसार एक न्याय संगत देश में ऐसी देरी सामान्य नहीं है और इसके कारणों का पता लगाना उससे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आज से श्री वेंकटेश्वर स्वामी व्रत दीक्षा महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट स्थित तेलुगु महासभा के मुख्यालय में कलश स्थापना विधि के साथ 40 दिनों के व्रत का आरंभ हुआ। कल 13 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक समारोह लगेगा। समापन अगले 20 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ किया जाएगा। विदेश में सऊदी अरब के एक बहुत महत्वपूर्ण ऑयल पाइपलाइन पर ईरान ने ड्रोन हमला किया है, जिसके बाद उस पाइपलाइन को बंद करवा दिया गया है। ये 1200 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन है, जिसने मध्य पूर्व संकट की शुरुआत से सऊदी अरब को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बाईपास करने में मदद की है। रियाद ने दावा किया कि सैटेलाइट तस्वीरों में पाइपलाइन के पास काला धुआं दिखाई दिया है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: म्यूजिक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: आ गया, वही दिन आ गया जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। हम बात कर रहे हैं सैटरडे आफ्टरनून, ये मॉर्निंग कैसे निकल गया किसी को पता नहीं चला। कल फ्राइडे इवनिंग को हमने कहा था, आपको याद होगा, कि पलक झपकते ये वीकेंड भी निकल जाएगा, लेकिन आपको इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। चाहे वीकेंड हो, वीकडेज हो, हम तो आते हैं आपके मूड को एकदम टकाटक बनाने के लिए। ऑफकोर्स ये लेकर आए हैं द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती टिल 7 PM, जहाँ पर दिव्या का साथ है। हाँ, क्लाइमेट चेंज के चलते अगर आप भी थोड़ा सा

0: अच्छा फील नहीं कर रही हैं, तो इस मौके को पूरा पूरा इसका फायदा उठाइए, क्योंकि ये मौसम इट रियली रियली इज आस्किंग फॉर अ गर्मा गर्म चाय की प्याली और साथ में गर्मा गर्म पकौड़े। अभी ये बात भी है कि जब लेडीज कहते हैं कि मुझे गर्मा गर्म पकौड़े तलने हैं या फिर खाने हैं, तो किचन में सबसे पहले आपको ही जाना पड़ता है। ये सवाल उठता है कि कौन बना के खिलाए। चलिए कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। अगर आप लोग किचन में हैं, आप सोच रहे हैं कि शाम के लिए क्या कुछ बनाना है, तो खाना बनाते बनाते किचन में आप रहते हमारा साथ देते रहिए। एंड कीप सेंडिंग योर लव एंड सपोर्ट ऑन द मैजिकल नंबर विच इज़ 5499-1294। आपके प्यारे मैसेजेस का इंतजार। नंबर तो हमने बता दिया, बाकी आपको पता है आपको क्या करना है।
1: Music, Dr. Gutter. RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: वाह क्या गाना था, आज लहराते नाचते नचाते और यही करने का इरादा है आपको, बस थोड़ा सा नचाना है। एंड आई जस्ट होप दैट यू आर ग्रूविंग विद आवर ब्यूटीफुल गाने। एंड गाने ऐसे हैं जिसको सुनने के बाद आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि सैटरडे इवनिंग ही चल रहा है। तो चलिए यहाँ पर अभी के लिए हम खेल रहे हैं आपके साथ एक गेम बाय सियाक ज़वाता। अगर आपकी जीत होती है तो ऑफकोर्स यू विल विन टिकट्स टू सियाक ज़वाता एंड जस्ट गेट रेडी फॉर एन unforgettable experience filled with magic, thrills, laughter and spectacular circus performances for the whole family. तो चलिए कुछ ज्यादा डिटेल के साथ आपको हम कुछ और डिटेल शेयर करेंगे आपके साथ, लेकिन फिलहाल के लिए तो हम फोकस करते हैं गेम पे और कौन है हमारा लकी विनर आज का, ये तो ज़रूर खेलने पर और लकी ड्रॉ करने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए बहुत ही सिंपल सा सवाल हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। जो गाना आप अभी आपने सुना आजा लहराते, यस आजा लहराते नाचते नचाते, यू हैव टू टेल मी इस गाने के अंदर जो फीमेल सिंगर है उनका नाम क्या है। जो गाना अभी अभी आपने सुना आजा लहराते, उसमें जो फीमेल सिंगर है उनका नाम क्या है। वेटिंग फॉर योर राइट आंसर्स ऑन 5499-1294। प्लीज़ आप ध्यान में रखिएगा, अगर आप अपना पूरा नाम और पता नहीं भेजते हैं तो ऐसे में आपका नाम लकी ड्रॉ में हम शामिल नहीं कर पाएंगे। सो अगर आप अपना पूरा नाम और पूरा पता भेजते हैं तभी जाकर हम एक लकी ड्रॉ करते हैं, जहाँ पर जो जिसका नाम आता है फाइनल लकी ड्रॉ में उसको ही हम विनर घोषित करते हैं। सो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड डोंट फॉरगेट, हमारा सवाल यही था जो गाना अभी अभी आपने सुना आजा लहराते, यू हैव टू टेल मी कि इसमें जो फीमेल सिंगर है उनका नाम क्या है। वेटिंग फॉर योर राइट आंसर्स ऑन 5499-1294 पूरे नाम और पते के साथ। ऑल द बेस्ट
0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: क्या बात है, दिल में है तू, धड़कन में तू, ऑलरेडी 4:31 आप तो हमारे दिलो दिमाग में बसे हुए हैं, इसलिए आपके चॉइसेस को ध्यान में रखते हुए एक से बढ़कर एक गाने लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। चलिए यहाँ पर सिर्फ गाने नहीं बल्कि गिफ्ट भी लेकर आते हैं। यस, थोड़ी देर पहले आपसे हमने एक सवाल किया था एंड हमने चलाया एक गाना आप लोगों के लिए, आजा लहराते, दैट वाज टेकन फ्रॉम द मूवी व्हाट्स योर राशि। और यू हैव टू टेल मी कि इस गाने के अंदर जो फीमेल सिंगर है उनका नाम क्या है। द राइट आंसर इज भाव्या पंडित। यस, भाव्या पंडित इज द राइट आंसर। बहुत सारे लोगों ने हमें सही जवाब दिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन आपको तो पता है ही कि गेम का बस एक ही रूल होता है कि बस एक ही लकी विनर को चुना जाता है। तो हमने पूरी ईमानदारी के साथ हमने यहाँ पर फाइनल लकी ड्रॉ किया एंड लकी ड्रॉ करने के बाद ऑफकोर्स नाम आया है पूजा पगन। यस, पूजा पगन, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप रहती हैं लातू के निक, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू वंस अगेन पूजा, यू जस्ट वोन टिकट्स टू सियाक जावाता, गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फिल्ड विद मैजिक

0: thrills, laughter and spectacular circus performances for the whole family. Yes, catch Siak Zavata at Bagatelle with shows every Thursday and Friday at 6 PM. Saturday, Sunday ko bhi ye hone wala hai. दोपहर के 2:30 बजे यानी कि एट 2:30 PM एंड एट 5:30 PM. बुकिंग्स और इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन कॉल ऑन 5250-9413. डोंट मिस द मैजिकल बिग शो. एंड आपको हम बता देते हैं पूजा कि आपको एमबीसी आकर अपना गिफ्ट कलेक्ट करना है. जो आपका एंट्री टिकट है ये आपको कलेक्ट करना है ड्यूरिंग वीक डेज एज फ्रॉम 9 AM टिल 3 PM आपके पास टाइम है. सो आप वीकडेज के दौरान जरूर आइएगा अपने आईडी कार्ड के साथ और ले जाइए अपना इनाम. वंस अगेन पूजा आपको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस.
1: म्यूजिक टक टक टक. RM2 रेडियो मस्ती.

0: Actu.
1: Radio Musty.
0: Des projets plein la tête? Avec la SICOM My Speedy Loan, prenez les devants pour faire de votre envie une réalité, telle que l'achat ou la rénovation de votre chez vous, de voyage ou le financement des études des enfants, ou encore de s'offrir une nouvelle voiture avec la SICOM. Dès aujourd'hui, vous pouvez prendre un prêt d'un maximum de 300 000 roupies sans garantie et donner un nouveau souffle à vos projets avec la SICOM My Speedy Loan. Offre uniquement pour les fonctionnaires, les employés des organisations para-étatiques et les pensionnaires de la SICOM. Conditions applicables. Pour plus d'infos, appelez-nous sur le 203 84 70 ou visitez notre site web sicom.me.
2: SICOM Group, a lifetime commitment.
0: SICOM Financial Services Limited opère sous licence de la BOM et de la FSC. Loan is not an insurance policy under Insurance Act 2005.
3: RM2
1: Radio Musty.
3: Well, चलिए 4:40 हो चुके हैं. ये गाना आप ध्यान से सुनिए क्योंकि इससे रिलेटेड हम आपसे एक सवाल बिल्कुल करने वाले हैं. एंड चलिए यहाँ पर ये गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे हमारी प्यारी सी चाची प्रिया के लिए जो रहती है ईलो. यस, ऑल द वे कनेक्टेड है हमारे साथ और आप ऑप्लेमोसिस काम करती हैं, शायद अभी आपकी सिलाई चल रही है तो इसके लिए आपको बों कुहाज. एंड आई नो इट्स रियली नॉट ईजी और अ बिग थैंक यू टू यू. आप एंड मोमेंट में भी बस हमारे कपड़े की सिलाई कर ही लेती हैं. सो स्वीट ऑफ यू. थैंक यू सो मच चाची प्रिया हमारा साथ देने के लिए. और चाची प्रिया ने तो बस एक प्यार भरा मैसेज भेजा और कहती है कि आवाज़ के लिए कुछ ज़रूर पियो, सिट्रोनेल पियो एंड ज़रूर हम ये ट्राई करेंगे. एंड कल आपका बर्थडे था सो आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू चाची प्रिया. एंड वंस अगेन हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. एंड बीसीएस ऑफ फैमिली की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार फ्रॉम इलो. आपके बच्चे हैं, आपके पति देव की तरफ से भी आपको बहुत बहुत सारा प्यार. नाम शायद आप टाइम पे नहीं भेज पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि आपके बच्चे और आपके पति बस आपसे यही कह रहे हैं कि वी लव यू अलॉट. सो चाची प्रिया वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू एंड एन्जॉय दिस वन स्पेशली फॉर यू.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: ये गाना और इसका वाइब, ये हमेशा हमेशा मुझे कॉलेज के दिनों के बारे में याद दिला देता है। ओ माय गॉड, सच ब्यूटीफुल डेज एंड वो गोल्डन मेमोरीज लौट कर कभी नहीं आता है। तो जितने भी सारे हमारे अभी बच्चा पार्टी हमें सुन रहे हैं ना, अगर आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए। एक दिन पलट कर जब आप देखेंगे तो आपका भी मन होगा स्कूल जाने के लिए, लेकिन बहुत देर हो चुका होगा और आप ऑलरेडी जिम्मेदारियों से घिरे पड़े रहेंगे। तो चलिए, आपका कंधा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और जिंदगी में सबसे पहला आपको बस ब्यूटीफुल मेमोरी ही क्रिएट करना चाहिए, ताकि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार आपके सर पर आए ना, तो आप उन पलों को याद करके हंसे मुस्कुराए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए, 4:45 हो चुके हैं एंड हमने कहा था कि इस गाने से रिलेटेड एक सवाल लेकर आएंगे और ऑफ कोर्स एक बार फिर से हम लेकर आए हैं एक गेम आप लोगों के लिए। वी आर प्लेइंग विद Island Cricket Extravaganza Season 4. Get ready, Mauritius. The grand finale of the Island Cricket Extravaganza Season 4 is here, organized by the Mauritius Cricket Federation in partnership with the Indian Oil Servo, co-sponsored by Mayup and food partner for finals, Gents Little India. Kuch aur details ke saath zarur aap tak ye saari information hum aap tak pahunchayenge. लेकिन इससे पहले आपके साथ गेम हम खेल लेते हैं। यस, ये सबसे ज़रूरी है। तो अभी के लिए आपको हमें बताना है, जो अभी गाना आपने सुना हनी हनी हा हनी हनी, ये गाने में कौन सा एक्टर पिक्चराइज हुआ था, ये आपको हमें बताना है ऑन 5499-1294। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के पास सही जवाब होगा। और देखिए, आज वीकेंड है और हम नहीं चाहते हैं कि आप अपने दिमाग पर इतना जोर लगाए, इसलिए हमने सोचा कि लेट्स बी फेयर टू यू एंड अच्छे अच्छे और बस इजी सवाल पूछे आपसे। तो चलिए, आपको हमें बताना है कि इस गाने में जो एक्टर हैं उनका नाम क्या है, कौन सा एक्टर पिक्चराइज हुआ था इस गाने के अंदर। यू हैव टू गिव मी द राइट आंसर ऑन 5499-1294 पूरे नाम और पते के साथ। ऑल द बेस्ट।
0: म्यूजिक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Music Taktakata.
1: RM2 Radio Musti.
2: मेरे ख्वाबों में जो आए वो तो आप लोग ही हैं, इसीलिए तो बार बार आप लोगों से मुलाकात करने के लिए आ ही जाते हैं। बस मौके का फ़ायदा उठाकर हम तो बहाने बनाकर और हमारे गाने बस बहाने बनकर आ ही जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमने आपसे एक सवाल किया था एंड वी आर प्लेइंग विद आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागांजा सीजन 4 एंड हमारा सवाल यही था कि जो गाना हमने आपको सुनाया हनी हनी हाँ हाँ हनी हनी, उसमें आपको हमें बताना था कि कौन सा

0: ट्विटर पिक्चराइज हुआ था एंड द राइट आंसर इज द सबकी जान सबकी धड़कन हमारे भाई जान यानी कि सलमान खान पिक्चराइज हुए थे एंड थैंक यू सो मच टू ऑल दोज जिन्होंने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया लेकिन लकी ड्रॉ करने के बाद हमारा लकी विनर है फादिला गुलप ऑफ पाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फादिला एंड आपको क्या मिल रहा है ऑफ कोर्स यू आर गेटिंग ₹500 का गिफ्ट वाउचर यस यू प्लेड विद RM2 एंड आपको मौका मिल रहा है टू विन दिस ₹500 गिफ्ट वाउचर courtesy of Indian Swad restaurant where you can savor the authentic flavors of India. So many many congratulations to you. और आपको हम बता देते हैं फादिला कि ये जो gift voucher है आपको by post भेज दिया जाएगा लेकिन फिर भी our team will get back to you and आपको confirm करने के लिए कि how you are expecting to receive the gift. So get ready Mauritius, the grand final of the Island Cricket Extravaganza Season 4 is here. Organized by the Mauritius Cricket Federation in partnership with Indian Oil Servo, co-sponsored by Myop and Food Partner for Finals, Gents Little India. This thrilling season kicked off on 1st August with 6 power-packed teams on up. It all comes down to the big finale between Continental Cheetah and... Continental Cheetah versus Campus Abroad Alliance on Sunday 13th September at SSR National Cricket Ground at Mapu aur ye match shuru hoga subah ke 10 baje so join us live at the ground for a day full of high energy cricket fun and excitement cheer for your favorite team enjoy great food and music and stand a chance to win exciting gift vouchers and bilkul Radio Masti will definitely go live from the ground and don't miss the biggest cricketing showdown of the year, Island Cricket Extravaganza Season 4, the Grand Final.
1: Music, Dr. Gutter.
2: RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: क्या बात है, गाना तो बस बहाना है, ये हमने आपको फर्स्ट आवर में बताया था, याद है आपको ना, इसलिए तो बस एक बार फिर से बहाना मार के हमने ये गाना चलाया। बस आप ऐसे ही समझ लीजिए कि आई लव यू वाला गाना सिर्फ गाना नहीं था, ये हमारा एहसास था, एंड इट वाज माय फीलिंग ट्राइंग टू कन्वे यू दिस मैसेज दैट आई रियली

0: आई है, चिट्ठी आई है, बहुत ही प्यार से किसी ने हमें कहा प्रणाम दीदी, हियरिंग योर वॉइस सिम्स योर सिक, ये तो एक हफ्ते से चल ही रहा है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्सर्न अंतिश एंड ऑल द वे फ्रॉम स्विट्जरलैंड ऑलवेज कनेक्टेड विद अस। एंड चलिए आप का जो मैसेज है ना वो इतना प्रेशियस है कि आपका ये मैसेज पढ़ के हम इतना मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं एंड आई एम फीलिंग रियली हैप्पी एंड लकी टू हैव लिसनर्स एंड ब्रदर लाइक यू। थैंक यू सो मच अंतिश हमारा साथ देने के लिए। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। यस, चतुर्थी तो बहुत ही करीब है, गणेश चतुर्थी इज राउंड द कोर्नर है और बहुत सारे लोग तैयारियों में लगे हुए हैं। टू ऑल दोज जो शायद तैयारी करते करते हमारा साथ दे रहे हैं, आपको बो कुहाज। एंड अंतिश थैंक यू वंस अगेन हमारा साथ देने के लिए। एंड टू ऑल दोज जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, मे बी आप किचन में हैं या फिर आप काम पर हैं या फिर आपका काम खत्म हो गया है, आप घर वापस जा रहे हैं, इफ़ यू ड्राइविंग हैव अ सेफ एंड म्यूजिकल ड्राइव विद रेडियो मस्ती। चलिए दिव्या का साथ तो है ही, नॉन स्टॉप ऐसे ही गाने चलाते रहेंगे आप लोगों के लिए।
1: म्यूजिक टक टक टक।
2: RM2 रेडियो मस्ती।

All right, already 5:30 and it's a wonderful Saturday evening. चलिए आपके कुछ messages की ओर बढ़ते हैं. नमस्ते जी, कल कुशल का बर्थडे था, सो बेस्ट विशेज उनको बहुत ही प्यार से दे रहे हैं कौन अनला के लिए. आपका मैसेज यहाँ पर थोड़ा इनकम्प्लीट आया है. प्लीज़ अगर आप अपना पूरा मैसेज हम तक भेजना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर एक बार फिर से अपने मैसेजेस भेज सकते हैं. नंबर वही है 5499-1294. सो कुशल, वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम ऑल दोज जो आपको जानते हैं, जो आपको पहचानते हैं, और हमारी पूरी टीम की तरफ से भी. साथ में यहाँ पर एक मैसेज आया है, हैप्पी हेवनली बर्थडे टू डियरेस्ट डैड मानंद, और ये मैसेज भेजा है उनकी प्यारी बेटी नेहा ने, ऑल द वे फ्रॉम पुएर्टो पिमा. और नेहा कहती है कि वी मिस यू सो सो मच, एंड मुझे पता है कि कभी कभी जब कोई इंसान आंखों के सामने नहीं होता है ना, तो उनको इस हद तक हम मिस करते हैं, इस हद तक याद करते हैं कि कभी कभी आंखें नम हो जाती हैं. लेकिन उन्हीं आंखों के सहारे आपको उनको मन की आंखों से देखना है. एंड आप कहते हैं कि डैड यूल ऑलवेज बी आवर हीरो, स्पेशल थॉट्स फ्रॉम वाइफ देविका. उनकी बेटियां हैं नेहा, दीपा, आपका पोता है श्रेयान, और आपके दामाद हैं नितिन एंड शैलेश की तरफ से. हैप्पी हेवनली बर्थडे टू डियरेस्ट डैड मानंद. और उन्होंने, अगर वो आपके बीच में होते तो कल वो मनाते अपना बर्थडे, लेकिन कोई बात नहीं, आई एम श्योर कि ही इज़ गार्डियन एंजल, डेफिनेटली सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे इन हेवन. और अभी के लिए तो खुद वो एंजल बनकर ही इज़ वॉचिंग ओवर यू एंड हीज़ होल फैमिली. सो चलिए नेहा, द नेक्स्ट ट्रक गुजाउट स्पेशली फॉर यू एंड आपके पापा मानंद के लिए, और उन तमाम लोगों के लिए जो हमेशा कोई ना कोई खास इवेंट में अपने पापा को ज़रूर याद करते होंगे.

चलिए हर सैटरडे की तरह हम फैशन टिप्स लेकर आए हैं आप लोगों के लिए. इट्स ऑलरेडी 5:41 और कभी कभी हम मेकअप के बारे में बात करते हैं तो कभी कलर व्हील आउटफिट चाहे मेकअप चाहे लिपस्टिक के बारे में बात करते हैं. और आज हम बात करेंगे आपके एक्सेसरी के बारे में. इसके बारे में भी हम आए दिन बात करते रहते हैं बट आज हम बात करेंगे पर्टिकुलरली अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर. तो कभी भी अगर आप अपने एक्सेसरी को मैच करना चाहते हैं विद योर आउटफिट तो हमेशा आपको

0: याद रखना चाहिए कि गोल्डन कलर एक्सेसरी और सिल्वर कलर एक्सेसरी को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए, उनका एक अलग कलर व्हील होता है। और अगर कभी भी आपने गोल्ड एक्सेसरी डालने की सोची तो उसमें आप पेयर अप कर सकते हैं विद आउटफिट्स लाइक बेज कलर, वी हैव ऑफ वाइट, ब्लैक और गोल्ड तो बहुत ही सुंदर लगता है, इट्स लाइक अ स्टाइल स्टेटमेंट। और कैरामेल के साथ भी गोल्ड बहुत ही अच्छा लगता है। वी ऑल्सो हैव ऑलिव, बर्गंडी, टेराकोटा, एमराल्ड, वाइन एंड बर्गंडी कलर, जैसे हमने कहा ये सारे आउटफिट कलर्स में गोल्ड एक्सेसरी बहुत ही मैच करता है इन आउटफिट्स के साथ। एंड सिल्वर एक्सेसरी के बारे में बात करें तो यू कैन मैच योर सिल्वर एक्सेसरी विद दीज कलर्स, वाइट, लाइट ग्रे, नेवी कलर, ब्लू कलर, लाइलैक, पिंक, मिंट कलर, आइस ब्लू, सॉफ्ट लाइलैक, आइस ब्लू एंड साथ में अगर आप ब्लैक को भी चूज करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स, लेकिन ट्रस्ट मी ब्लैक एंड गोल्ड इट्स अ कॉम्बिनेशन जो आप कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। तो आप हमेशा हमेशा जब भी गोल्ड या फिर सिल्वर एक्सेसरीज डाल रहे हैं तो इन कलर्स को आपको ध्यान में रखना है। एंड आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा कि गोल्ड एक्सेसरीज के बारे में जब भी हमने बात की तो यहाँ पर इट वॉज ऑलवेज द वेरी लाउड एंड द वेरी अट्रैक्टिव कलर, और जब सिल्वर के बारे में हमने बात की तो इट वॉज द वेरी सॉफ्ट एंड द वेरी पेस्टल कलर्स। तो आप हमेशा इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप अपने आउटफिट और अपने एक्सेसरीज को जरूर चूज करिएगा।
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments. Music, Tuck Tuck Tuck.
2: RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: चलिए, इट्स ऑलरेडी 5:54 एंड थोड़ी देर में हम बढ़ने जा रहे हैं 6 बजे के समाचार बुलेटिन की ओर। इससे पहले कुछ आपके मैसेजेस, डेडिकेशंस। प्लीज डेडिकेट द नेक्स्ट गाना टू माय हस्बैंड केशव, जिन्होंने कल अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। सो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू केशव फ्रॉम वाइफ अविष्का। एंड यहाँ पर आप कहती हैं, हेलो टीम, आई एम अनुषा, प्लीज डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर माई पापा हु इज नो लॉन्गर विद मी। एंड अनुषा, अनलकीली फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, बट फॉर श्योर द नेक्स्ट ट्रैक गोज आउट स्पेशली फॉर यू एंड टू होल योर फैमिली। एंड मुझे पता है कि कभी कभी हम अपनों को इतना याद करते हैं, कभी ये एहसास भी करते हैं कि वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं होता है। बट ट्रस्ट मी, आपके पापा आपका गार्डियन एंजल बनकर ही इज वॉचिंग ओवर यू एंड योर फैमिली। हाई कुशल फ्रॉम बिले, आई वॉन्ट टू विश माई डैड अ वेरी हैप्पी बर्थडे, आई लव हिम सो मच एंड मिसिंग ऑल माई फैमिली, मामा, सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, होप ही लिसन्स टू दिस, डेडिकेटेड नाइस सॉन्ग फॉर हिम एंड फैमिली, आई एम सो फार वर्किंग ऑन क्रूज शिप, थैंक यू सो मच टीम। थैंक यू सो मच कुशल कि आपने अपने पापा के लिए इतना प्यार भरा मैसेज भेजा है। कभी कभी क्या होता है ना कि जो बाप बेटी का रिश्ता है वो बहुत ही अनोखा होता है, और माँ बेटी का भी रिश्ता बहुत ही अनोखा होता है, लेकिन जो बाप और बेटा का रिश्ता होता है, दिस इज़ अ ग्रेट बॉन्ड, और ये बॉन्ड आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है बाय एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स एंड लव टू योर डैड। कभी ऐसा होता है ना कि बेटों को या फिर पापाओं को अपने प्यार का इजहार करना या फिर जताना नहीं आता है, और ये प्यार ऐसे ही चुप्पी में गुजर जाता है, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। थैंक यू सो मच कुशल कि आप उस तरीके का बेटे हो जिन्होंने अपने पापा के लिए प्यार को जताया है। एंड चलिए, नेक्स्ट गाना गोज आउट फॉर माय ब्रदर सुनील विदेशी, आज उनका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू योर ब्रदर सुनील फ्रॉम बदवक विदेशी, उनकी बहन है माला रामदुनी, एंड ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स की तरफ से उनको बहुत बहुत सारा प्यार। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल, स्पेशली माय 4 ग्रैंड चिल्ड्रन हु सेलिब्रेटिंग, एंड साथ में वी हैव रिद्धि, सोनाक्षी, अवनी, लवली वंश, गॉड ब्लेस देम ऑल फॉर देयर एजुकेशन फ्रॉम सुया बिहारी ऑफ कुंगुमा, थैंक यू सो मच जी हमारा साथ देने के लिए। चलिए, इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर, हमें लेकर जाएगा 6 बजे के समाचार बुलेटिन।

0: सभी को नमस्कार। बुलेटिन में स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां। कैबिनेट ने शागस मुद्दे पर गुरुवार को अटर्नी जनरल और बरतानी सरकार के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में चर्चा किए गए विषयों का जायजा लिया। दोनों सरकारों के बीच समझौते को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से बातचीत जारी। देश में कई ऐसी जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं के बाद परिवार वाले अभी भी इंतजार में कि कब जांच समाप्त हो। ये इंतजार उनके जख्मों को और कुरेद रहा है। डीपीपी दफ्तर के अनुसार एक न्याय संगत देश में ऐसी देरी सामान्य नहीं। देश में दो सदियां पहले भारत से निकले जहाज अपने साथ लेकर गए थे सपने, उम्मीदें और एक विरासत। आज उन्हीं प्रवासियों की आने वाली पीढ़ियों दुनिया के अलग कोने में मॉरिशस से एक मंच में जुटे। गोपियो इंटरनेशनल कॉन्वेंट 2026 का मंच। विदेश की खबरों में सऊदी अरब के एक बहुत महत्वपूर्ण ऑयल पाइपलाइन पर ईरान ने किया ड्रोन हमला। उस पाइपलाइन को बंद किया गया है। बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत। अब समाचार विस्तार से। कैबिनेट ने शागुस मुद्दे पर गुरुवार 10 सितंबर 2026 को अटर्नी जनरल और बरतानी सरकार के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में चर्चा किए गए विषयों का जायजा लिया। दोनों सरकारों के बीच समझौतों को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से बातचीत जारी है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: ये मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम के बीच 2 महीनों के भीतर हुई दूसरी वर्चुअल बैठक है। पहली

0: जुलाई को हुई थी। अटोर्नी जनरल गाविन ग्लोवर ने शागुस मुद्दे पर ब्रिटेन के फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के ओवरसीज टेरिटरीज एंड पोलॉ डायरेक्टोरेट के निदेशक रोबी बुलॉक के साथ चर्चा की। बैठक के दौरान बरतानी पक्ष ने एक बार फिर शागुस द्वीप समूह को मॉरिशस को वापस सौंपने के समर्थन में अपनी स्थिति दोहराई। ब्रिटेन ने यह भी पुष्टि की कि अक्टूबर की शुरुआत में एक बरतानी प्रतिनिधिमंडल मॉरिशस आएगा। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और निगरानी से जुड़ी मॉरिशस की जरूरतों का आकलन करना होगा। यह आकलन उस संधि के तहत मॉरिशस की जिम्मेदारियों के अनुरूप किया जाएगा जब वो संधि लागू हो जाएगी। दूसरी ओर मॉरिशस मालदीव के दावे पर भी बारीकी से नजर रख रहा है। मंत्रिपरिषद ने 7 सितंबर को नागरिक और मानवाधिकार समूह पेन फॉर राइट्स मालदीवियंस फॉर शागुस द्वारा प्रकाशित एक लेख का जायजा लिया। इस समूह ने मालदीव सरकार से अपील की है कि वह संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का इस्तेमाल शागुस द्वीप समूह पर अपने उस दावे को आधिकारिक रूप से दर्ज कराने के लिए करे जिसे वो एक ऐतिहासिक क्षेत्रीय दावा बताता है। वो शागुस द्वीप समूह को फुल हवाई के नाम से संदर्भित करता है। मॉरिशस सरकार ने कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र में शागुस मुद्दे पर मालदीव की ओर से की जाने वाली हर घोषणा, राजनयिक संचार या आधिकारिक पहल पर नजर रखेगी। मालदीव की इस पहल के बीच मॉरिशस सरकार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
1: मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रसभा में 9 विधेयक पेश किए जाने पर मंजूरी दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, नेशनल क्राइम एजेंसी बिल, नेशनल क्राइम इंटरिम एजेंसी बिल, सेक्रेटेरियट ऑफ द इंडिपेंडेंट एडवाइजरी पैनल बिल, सेक्रेटेरियट ऑफ द इंडिपेंडेंट एडवाइजरी इंटरिम पैनल बिल, फाइनेंशियल क्राइम बिल, एसेट रिकवरी एंड अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ बिल, नेशनल क्राइम एजेंसी मिसेलेनियस प्रोविजंस बिल और क्रिमिनल जस्टिस ऑफेंडर्स असिस्टिंग इन्वेस्टिगेशंस एंड प्रोसिक्यूशंस बिल। इनका मकसद है नेशनल क्राइम एजेंसी की स्थापना का प्रावधान करना। कैबिनेट ने एक स्वतंत्र निकाय के रूप में नेशनल एविएशन कंसल्टेटिव काउंसिल की स्थापना को मंजूरी दी। ये परिषद राष्ट्रीय स्तर पर हवाई संपर्क से जुड़ी दिशा तय करेगी और विमानन क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण फैसलों को राष्ट्रीय हित के आधार पर परखेगी। कैबिनेट ने सचिव सागर राम गुलाम की 126वीं जयंती के मौके पर शिक्षा और मानव संसाधन मंत्रालय के तहत आयोजित की जा रही विभिन्न गतिविधियों का जायजा लिया। इन कार्यक्रमों का मकसद विद्यार्थियों को उनके विचारों, नेतृत्व और देश निर्माण में उनके योगदान के बारे में बेहतर जानकारी देना, देशभक्ति, जिम्मेदार नागरिकता और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना है। इनके तहत प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए कला और भाषण प्रतियोगिताएं, विरासत कोनों की स्थापना, संगीत कार्यक्रम, आज़ादी के संघर्ष और देश निर्माण पर चर्चा तथा युवा नेतृत्व कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही विद्यार्थियों को सचिव सागर राम गुलाम के कार्यकाल में लागू की गई मुफ्त शिक्षा के महत्व को भी बेहतर ढंग से समझने का मौका मिलेगा। कल 11 सितंबर को दिवंगत सतकाम बुलेल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सिपाही भुइले वाले दिवस में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली इस हस्ती की 106वीं सालगिरह के अवसर पर फूल चढ़ाए गए। उनके बेटे डॉक्टर अरविंद बुलेल सहित लेबर पार्टी के कई सदस्य वहां मौजूद रहे। सुर्खियों में हम आपको बता रहे थे कुछ जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं के बाद परिवार वाले अभी भी इंतजार में हैं कि कब जांच समाप्त होगी और उन्हें न्याय मिलेगा। ये इंतजार उनके जख्मों को और कुरेद रहा है, उनके दर्द को और बढ़ा रहा है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन दफ्तर के अनुसार एक न्याय संगत देश में ऐसी देरी सामान्य बात नहीं है। सिरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
2: किसी अपने को एक दर्दनाक हादसे में खो देना एक ऐसा दर्द है जिसके साथ परिवारों को जीना सीखना पड़ता है, लेकिन जब जांच और अदालती कार्रवाई सालों तक चलती रहती है तो दुख भी अधूरा रह जाता है। कुछ हादसों को 6 साल बीत जाने के बाद भी परिवार आज तक जवाब का इंतजार कर रहे हैं।
3: Station à police.
2: 28 दिसंबर 2019

0: 2019 में उनकी मृत्यु हुई। पुलिस कहती है कि जांच अभी जारी है। एक महीना पहले मैं पुलिस स्टेशन गई तो मुझे बताया गया कि बोम्बू पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है, वहां जाना चाहिए। ये जटिल है क्योंकि हम पहले से ही दुख में हैं, एक सदस्य को खो दिया है। जब किसी जानलेवा हादसे के बाद मामला अदालत तक पहुँचता है और किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है तो कानून में क्या प्रावधान है? असिस्टेंट डीपीपी वकील ओद्रे स्टीफन कहती हैं, हालांकि जब कोई व्यक्ति सच स्वीकार कर लेता है या जिम्मेदार होना स्वीकार कर लेता है, तब अपराध के सभी तत्वों को इकट्ठा करना चाहिए ताकि व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सके। एक व्यक्ति पुलिस जांच के दौरान कुछ बातें स्वीकार कर सकता है, लेकिन अदालत में खुद को निर्दोष बता सकता है। अपराध के सभी सबूत इकट्ठा करने चाहिए। जब कानूनी कार्रवाई समाप्त हो जाती है तब क्या होता है? अगर किसी जानलेवा हादसे में व्यक्ति का रिश्तेदार गवाह है तब वो अदालत को पत्र भेज सकता है, क्योंकि अदालती कार्रवाई तक की अवधि होती है, या फिर अदालत आकर सुनवाई के दौरान शिकायत कर सकता है। डीपीपी दफ्तर की असिस्टेंट डायरेक्टर के अनुसार कानून में इतनी लंबी देरी सामान्य बात नहीं है।
1: Il est vrai que la Constitution prévoit que un accusé, il doit être un inculpé, il doit être jugé dans les plus brefs délais.
0: संविधान में व्यक्ति पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का प्रावधान है, लेकिन मारे गए व्यक्ति या उसके रिश्तेदार को लेकर कोई कानूनी शर्त नहीं है। मॉरिशस में अब तक ऐसा कोई ढांचा नहीं है कि दुर्घटना होने से लेकर मामले की समाप्ति तक अपने आप उसमें हो रहे विकास को वे देख सके।
1: Du moment où l'accident est arrivé jusqu'à la résolution de l'affaire. Nous n'avons pas de structure comme telle à Maurice jusqu'à présent.
0: इस बीच परिवार अपनी स्थिति समझाते हुए डीपीपी दफ्तर को पत्र लिख सकता है और मदद की मांग कर सकता है। इन परिवारों के लिए मकसद सिर्फ जवाब पाना नहीं बल्कि अपने खोए हुए परिजनों की याद में इंसाफ हासिल करना भी है।
2: कप सचिवान यानी जलवायु पर आधारित सालाना अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करीब है। तुर्की में 9 से 20 नवंबर के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है। इसी दिशा में पर्यावरण मंत्रालय ने विश्वविद्यालय और गैर सरकारी संगठनों के नौजवानों को एकत्र किया। मॉरिशस में जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रकोपों और चुनौतियों पर उन्होंने अपने विचार और सिफारिशें पेश की। 12 सितंबर की तारीख मॉरिशस के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण। 6 सदी पहले इस तिथि को सभी मॉरिशनों के बीच देशभक्ति की लहर दौड़ उठी थी जब आकाशीय जहाज के कारण तेल रिसाव हुआ था। रेजिस्टेंस के नाचीव के सदस्य आज मीबर्ग वाटर फ्रंट पर इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि ये वर्तमान सरकारी प्रोग्राम के कई कदमों का कारण बना है। उन्होंने जनता से संवैधानिक सलाह मशवरे में शामिल होने की मांग की और 24 सितंबर को पोटली में आयोजित गतिविधि में भाग लेने की भी उन्होंने मांग की। 2 सदियां पहले भारत से निकले जहाज अपने साथ लेकर आए थे कई सपने, कई उम्मीदें और एक विरासत। आज उन्हीं प्रवासियों की आने वाली पीढ़ियां दुनिया के अलग अलग कोनों से मॉरिशस में एक ही मंच पर एकत्र हुए। अवसर रहा 16वें गोपियों इंटरनेशनल कन्वेंशन 2026 का, जहां भारतीय डायस्पोरा की एकता, उसकी पहचान और भविष्य पर मंथन किया गया। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
3: भारत से मॉरिशस, मलेशिया से दक्षिण अफ्रीका, जापान से कनाडा और म्यांमार से लेकर दुनिया के कई देशों तक, कभी मजबूरी कभी उम्मीद और बेहतर भविष्य की तलाश में निकले भारतीयों ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनी पहचान बनाई और आज उनकी संतानों को जो रहा है गोपियो, एक ऐसा वैश्विक मंच जो भारतीय डायस्पोरा को एक परिवार की तरह करीब लाने का प्रयास कर रहा है।
4: जब जहाज में से लोग अलग अलग देश में उतरत अलन जा तो सबके अंदर से है ये पुकार रहल कि हमने फिर मिलब जा। उस समय सोच जहाज से निकल जहाज में दोस्ती होल, कठिन स्थिति में जिलन जा और दो जना है जा, एक जना के बोतन जा तू है जा उतर, तू मॉरिशस में उतर, तू साउथ अफ्रीका में उतर, तू फिजी में उतर, तू हब जा उतर, तो कितना कठिन दायक स्थिति हुई उस समय और हाउ समय दिल से कौन चित्कार निकल हुई।

0: अपन के समझाए खातिर चिंता नहीं कर, हम फिर मिलेंगे, फिर मिलब जा। और हवे फिर मिलब के हमने के 2 साल लगभग लगल है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बनाई के।
1: युवाओं को जोड़ना, व्यापार और पेशेवर अवसरों को बढ़ाना, नेटवर्किंग को मजबूत करना और भारतीय संस्कृति एवं भाषा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना सम्मेलन के मुख्य मुद्दों में शामिल है।
2: लगभग 3.5 मिलियन जो प्रवासी भारतीय हैं वो दुनिया में रहते हैं और गोपीय उसका सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो सबको जोड़ता है और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको भारत सरकार के समक्ष रखता है। तो ये कन्वेंशन हर 2 साल में एक बार होती है और तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि इन कन्वेंशन में जाएं और हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है वो सम्मिलित होके आप डिस्कस करें और उसके बाद अगर आप उसका फिर भारत सरकार के साथ बात करें और उनका सॉल्यूशन निकालें।
3: बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग प्लस क्रिप्टो बैंकिंग के को प्रमोट कर रहा हूँ जिसके कारण से ये जो बैंकिंग प्रॉब्लम है, जो फंड जो है कहीं कहीं पे काफ़ी टाइम से पहुँचते हैं, अभी बहुत सारा सेंक्शन लग रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही फ़ंड ट्रांसफ़र और उसके कारण से बिजनेसमैन को हो रहे लॉसेस बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर टाइमिंग एंड ऑल, सो वी आर ट्राइंग टू डू इट शॉर्ट।
1: मुख्य मेहमान मॉरिशस गणराज्य के राष्ट्रपति ने प्रवासन यानी माइग्रेशन को आज की वैश्विक चुनौती बताया। उन्होंने विभिन्न समुदायों के बीच सिर्फ साथ रहने के बजाय एक्टिव डायलॉग इंटरकल्चरलिज्म को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया।
4: मॉरिशस इज नॉट इम्यून टू दिस वाइडर करंट्स, येट माइग्रेशन इज आल्सो डीपली एम्बेडेड इन आवर ओन नेशनल एक्सपीरियंस। इट इज अ वेरी स्टोरी through which Mauritius became the country it is today. Our responsibility is therefore not simply to manage diversity or ensure peaceful coexistence, but to cultivate the conditions for genuine interaction, dialogue and a stronger sense of belonging to a common society.
1: रविवार 13 सितंबर को ये वैश्विक सम्मेलन समाप्त हो रहा है, गोपी इंटरनेशनल कन्वेंशन 2026, जहां विरासत जुड़ रही है, समुदाय एकजुट हो रहा है और भारतीय डायस्पोरा अपने भविष्य की नई कहानी लिख रहा है। मॉरिशस में 11 से 13 सितंबर 2026 के बीच 16वें गोपियो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2026 का आयोजन किया जा रहा है और उद्घाटन समारोह के दौरान कई देशों से आए प्रतिनिधि इस समय भाग ले चुके हैं। इस सम्मेलन, ये जो सम्मेलन है, दुनिया भर में बसे भारतीय प्रवासी समुदाय यानी कि इंडियन डायस्पोरा के विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों को एकजुट करने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर है और इसी उद्देश्य से इसका आयोजन भी किया गया है। सम्मेलन का मुख्य ध्यान युवाओं और प्रवासी समुदाय के भीतर व्यवसाय एवं व्यापार को बढ़ावा देने पर आधारित विभिन्न विषयों और सत्रों पर आधारित रहेगा।
5: हाईलैंड्स के हॉनरिस एजुकेशनल नेटवर्क में 11 से 13 सितंबर के बीच इस्लामिक सिविलाइजेशन पर आधारित 5वां अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस लगा। आज अलग अलग साझेदारी की मकसद के लिए एकत्र हो रहे हैं अफ्रीकी इलाके और हिंद महासागर के टापू देशों में इस्लामिक रीति रिवाज को बढ़ावा देना और साथ में इसके संरक्षण और इसके प्रचार प्रसार पर भी विचार करना। मॉरिशस भारत और तमिल समुदाय के बीच ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को आर्थिक सहयोग का एक सशक्त माध्यम बनाना, ये 13वें वर्ल्ड तमिल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस एंड ग्लोबल इकोनॉमिक समिट के प्रमुख देशों में से एक है। इस वार्षिक सम्मेलन में कई देशों से आए ठेकेदार, निवेशक, पेशेवर और अधिकारीगण भाग ले रहे हैं। कल रात इस्लामी सकाफती सेंटर पोटली में कौमी खैरात मुकाबले का फाइनल लगा। 17 साल की उम्र वाले मोहम्मद हमीद रजा खान जुमन ने पहला इनाम जीता। मकतुल मुकरम सोसाइटी ने एमबीसी के ताउन से इस मुकाबले का एहतमान किया। मकसद नई नस्ल में कुरान की तिलावत को फरोग देना। कुरान इस्लाम की सबसे अजीम किताब है जिससे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद पर नाजिल फरमाया गया था। आज से श्री वेंकटेश्वर स्वामी व्रत दीक्षा महोत्सवम का शुभारंभ हो रहा है। ग्रैंड रिवर न्यू फर्स्ट स्थित तेलुगु महासभा के मुख्यालय में कलश स्थापना विधि के साथ 40 दिनों के व्रत का आरंभ हुआ।

0: स्टेटस रिपोर्ट में।
1: पूजा विधि, मंत्रोच्चारण और भजनों के साथ तेलुगु समुदाय के श्रद्धालुओं ने श्री वेंकटेश्वर स्वामी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए 40 दिनों की व्रत दीक्षा का संकल्प लिया। इस अवधि के दौरान भक्तजन उपवास एवं विभिन्न धार्मिक नियमों का पालन करते हुए भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी की भक्ति और आराधना में शामिल होंगे।

को समर्पित करना चाहिए। ये माध्यम है उनके कमल चरणों की ओर समीप जाने का। इन 40 दिनों के दौरान तेलुगु महासभा की पहल पर कई विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। सभा के अध्यक्ष के अनुसार इस व्रत दीक्षा का उद्देश्य श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक रूप से जोड़ना तथा मर्शन समाज में धार्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करना है। हम शुरुआत राष्ट्रीय स्तर पर श्री वेंकटेश्वर स्वामी पूजा के साथ कल तेलुगु महासभा में करेंगे। पूजा शाम 5 बजे से शुरू होगी। हम चाहते हैं कि ये महोत्सव समस्त मॉरिशन समाज एक साथ मिलकर मनाए। इन 40 दिनों के व्रत के दौरान 7 अक्टूबर को युवा शाखा द्वारा वाल्डेवी में स्पिरिचुअल कंसर्ट लगेगा और 11 अक्टूबर को महिला संगम द्वारा बटुकम्मा का आयोजन होगा। श्री वेंकटेश्वर स्वामी व्रत दीक्षा महोत्सव का समापन 20 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ किया जाएगा।

0: भारत के महाराष्ट्र राज्य से मॉरिशस तक मराठी संस्कृति का प्रचार नेत्र के माध्यम से भी हुआ। गांवों और मछुआरों के बीच या फिर खेतीहरों द्वारा की देशज कई देशज नृत्य किए गए, जो एक अलग कहानी सुनाते हैं, एक अलग रीति रिवाज को आगे बढ़ाते हैं। समय के साथ साथ अब ये नृत्य गणेश चतुर्थी के अवसर पर भी किए जाने लगे हैं। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: हर एक नृत्य की अपनी एक कहानी होती है, एक समुदाय की, उसके काम की और उसके मान्यताओं की कहानी। महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक नृत्यों में कोली नृत्य का एक विशेष स्थान है। ये नृत्य मुख्य रूप से कोली मछुआरा समुदाय से जुड़ा हुआ है, खासकर महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में। इसके हाव भाव समुद्र में मछुआरों के जीवन को दर्शाते हैं। लहरों की गति, मछुआरों का काम और उनकी नावों की गतिविधियों को इन नृत्य मुद्राओं के माध्यम से दिखाया जाता है। मछुआरे इन मूवमेंट्स के माध्यम से सुरक्षा की मांग करते हैं। एक अन्य परंपरा, एक अलग दुनिया, किसानों की दुनिया। महाराष्ट्र के कुछ लोक नृत्य कृषि उत्सवों और अच्छी फसल के लिए की जाने वाली प्रार्थनाओं से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में जब नाचते हैं तो ज्यादातर हाथों का प्रयोग किया जाता है और किसान प्रार्थना करते हैं कि फसल अच्छी हो। लेकिन ये अलग अलग परंपराएं एक दूसरे से अलग नहीं हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर महाराष्ट्र के विभिन्न लोक नृत्यों के ताल और नृत्य हाव भाव एक ही प्रस्तुति में देखने को मिलते हैं।
2: डांस की एसोसिएशन अवेक गणेश चतुर्थी से झाकरी।
1: गणेश चतुर्थी की बात जब करते हैं तो झाकरी की बात होती है। झाकरी भी एक फोक डांस है। समय के साथ झाकरी में बदलाव लाए गए, इसकी प्रस्तुति में विशेषकर। मराठी समुदाय के प्रतिनिधि झाकरी को यूनेस्को के सामने ले जाना चाहते हैं, एक इनटेंजिबल हेरिटेज के स्तर पर। ये नृत्य सिर्फ अलग अलग कदमों का मेल नहीं है, ये मराठी संस्कृति, इसके इतिहास और उसकी पहचान की अभिव्यक्ति है।
0: विदेश में सऊदी अरब के एक बहुत महत्वपूर्ण ऑयल पाइपलाइन पर ईरान ने ड्रोन हमला करवाया है, जिसके बाद उसे बंद करवा दिया गया। ये 1200 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन है, जिसने मध्य पूर्व संकट की शुरुआत से सऊदी अरब को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने में मदद की है। रियाद ने दावा किया कि सैटेलाइट तस्वीरों में पाइपलाइन के पास काला

0: धुआं दिखाई दिया है। और अब चलिए जानते हैं कि स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा।
1: हमारे इलाके पर हल्की हवाएं चल रही हैं। आज रात और कल सुबह बादल घिरे रहेंगे। ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 13 से 15 और साहिली इलाकों पर 17 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 20 से 23 और साहिली इलाकों पर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। पूर्व की ओर से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। लगुनों के परे समुद्र चंचल रहेगा। दक्षिण में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। कल सुबह 6:08 पर सूरज निकलेगा।

देश विदेश की नई खबरों के साथ बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको अब तक पहुंचाने में पूरे न्यूज विभाग तकनीकी पर लुडोविक का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।

शोक समाचार सुनिए। लासूजिन लेस्कालिये में, लासूजिन लेस्कालिये में 64 साल के 64 years old के जनाब मोहम्मद इकबाल नसरुला, जनाब मोहम्मद इकबाल नसरुला जो इकबाल मेकानिसिया के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज रात 8:30 बजे उनके मकान लासूजिन लेस्कालिये से उठाकर दफनाने के लिए लासूजिन लेस्कालिये का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 8:30 PM। सागर लेन कोंकावाल क्यूपिप में 56 साल के 56 years old के श्री जितेंद्र गोपी जो गोपी क्वाफर के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दोपहर 2 बजे उनके मकान सागर लेन कोंकावाल क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2 PM। लुइस स्ट्रीट रॉयल रोड ले ओशे तेरूज में 45 साल की 45 years old की श्रीमती प्रविता केतू पैदाशी नाम जगू और जो फी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके मकान लुइस स्ट्रीट रॉयल रोड लोशे तेरूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वालिद फत की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। नंबर पाँच रोजलिन लेन कासिमे 60 साल के 60 years old के श्री मानाजी आबाजी जो दादो कैकायरी अपला के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनके मकान नंबर 5 रोजलिन लेन कासी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लिसालिन पोर्टलुई की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11:30 AM। अटलास लेन गुडलैंड्स में 60 साल के 60 years old के श्री जगदीप लखवा जो देवानंद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दोपहर 3 बजे उनकी पत्नी निशा लखवा के मकान अटलास रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागोचे की श्मशान भूमि दी जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 3 PM। रामचंद्र रोड रिश्मा सेंट्रल फ्लैक में 83 साल के 83 years old के श्री गोइनसामी चिलम्बन जो तंगावेल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और कॉन्स्टांस शुगर स्टेट के पूर्व ड्राइवर थे उनकी मृत्यु

0: हो गई हैं अर्थी कल दिन के 12:30 बजे उनके मकान रामचंद्र रोड घिश्माओ सेंटर रिफ्लक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए घिश्माओ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 12:30 noon। पाई रोड पाई में 58 साल के 58 ईयर्स ओल्ड के श्री राजेंद्र नाथ हर को श्री राजेंद्र नाथ अकु जो गौसों के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और दागोचिया रहा करते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9 बजे उनके रिश्तेदार विनय गणपत के मकान पाई रोड पाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पाई की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट 9 AM। नंबर 12 रुथवायल कासी में 58 साल की 58 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती माधवी लाचा की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी मां कुशीला लाचा के मकान नंबर 12 रोड कासी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लिसालिन पोटली की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। बुआशहरी रोड मोका में 88 साल के 88 ईयर्स ओल्ड के श्री प्रेम दत्त गुलाम जो बालों के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 2:30 बजे उनकी पत्नी अनीता गुलाम के मकान बुआशहरी रोड मोका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सियाकोस्तान सैंपिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 2:30 PM। कथबो रोड बोनाकई में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड के श्री चित्रंजन माधो जो राजू मौशाओ रुचि के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके मकान कथबो रोड बोनाकई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोचा की श्मशान भूमि दे जाई जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। रुद्बुआशहरी मोका में 65 साल की 65 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती भामा रामचंद जो फी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 10:30 बजे उनके भाई अशोक रामचंद के मकान रुद्बुआशहरी मोका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सियाकोस्तान सैंपिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV.
2: Music, Dr. Gutter.
3: RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: हायो हायो रब्बा. अगर आपको भी प्यार हो गया है, इफ़ यू आर इन लव, तो डेफिनेटली आपको प्यार को एक्सप्रेस करना चाहिए. एंड अगर आपको लगता है कि बस उस स्पेशल समवन को इम्प्रेस करने के लिए आप प्यार को एक्सप्रेस करेंगे, और एक बार जब रिलेशनशिप में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो सब कुछ बंद होगा, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं. क्योंकि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उनको हमेशा स्पेशल फील कराएं. एंड शादी के बाद भी, दो बच्चों के बाद भी, या फिर एक बच्चे के बाद भी, ये आपको हमेशा ऐसे ही ऑनगोइंग रखना है. एंड बहुत बहुत ही कम लोग रियलाइज़ करते हैं कि जिससे आप प्यार करते हैं उनको स्पेशल फील कराना, ये आपका सबसे बड़ा प्रायोरिटी है. एंड अगर कोई इंसान एक रिलेशनशिप में अकेला महसूस करता है, इसका मतलब ये है कि आप गलत एफर्ट डाल रहे हैं. और जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द प्रायोरिटीज़, एंड हमेशा सबसे पहले में आना चाहिए आपकी फैमिली. एंड द फैमिली दैट यू कम फ्रॉम एंड द फैमिली विच यू क्रिएट इज़ ऑलवेज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट. तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने प्यार को प्रायोरिटाइज़ करेंगे. एंड वीकेंड के दौरान नो काम. मुझे पता है कि कभी कभी काम

0: के आड़े आप स्ट्रेस में पड़ जाते हैं, लेकिन स्ट्रेस को थोड़ा सा बाजू में रखेंगे क्योंकि वीकेंड है और थोड़ा सा और हम गाने को एंजॉय करेंगे एंड विल ट्राई टू फील लव एंड ऑफ कोर्स प्यार के साथ साथ. इट्स अ सैटरडे सो लेट्स कीप ऑन वाइबिंग विद दिस ब्यूटीफुल गाने.
1: Music, Dr. Gutter. RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: ओरिएंटेड रेडियो मस्ती।
2: भाई देखिए, कहते हैं कि ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, और आप हमें ये कहना चाहते हैं कि आपको ढूंढने से खुशी नहीं मिल रही है, तो ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि कभी कभी अगर आपको खुशी नहीं मिलती है, आपको पता है आपको क्या करना चाहिए, आपको इसको क्रिएट करना चाहिए। यस, अ टाइम्स When you are searching for happiness, you don't need to forget that you can create one. और इस खुशी को आप क्रिएट करिए, एंड जस्ट बी इन द लाइट ऑफ हैप्पीनेस, और आप देखेंगे कि किस तरीके से आपकी ज़िंदगी अच्छे के लिए ही बदल जाती है। 7:51, चलिए यहाँ पर विशिंग अ वेरी हैप्पी 7th बर्थडे टू माई डॉटर आसिया, विश इज़ कमिंग फ्रॉम ममा अनीसा, साथ में पापा जुनैद जिब्रील और उनके ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से उनको बहुत सारा प्यार एंड लोड्स ऑफ ब्लेसिंग्स। टू बेटी आसिया और हमारी पूरी टीम की तरफ से भी आसिया को वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। सो चलिए, जितने भी सारे लोग इस वक्त अपना स्पेशल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको बहुत सारा प्यार। हाय, प्लीज़ प्ले अ सॉन्ग फॉर माय फ्रेंड शाइनी बोयरू, जिनका बर्थडे है, विच इज़ कमिंग फ्रॉम ऑल योर फ्रेंड्स। और माया चुकालाल का भी बर्थडे है, और मिलविल, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। एंड चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे कुछ और खूबसूरत गीतों की ओर, एंड डोंट फॉरगेट वी आर टुगेदर टिल 7 PM।
0: म्यूजिक टक टक टक
1: ओरिएंटेड रेडियो मस्ती।

वेल फ्रेंड्स 6:55 हो चुके हैं और चलिए इसे खूबसूरत गीत के साथ छोड़े जा रहे हैं, एक और खूबसूरत गीत के साथ है। एंड हमारी और आपकी मुलाकात होने वाली है ऑन मंडे इवनिंग, जहां पर हम कुछ खूबसूरत कूल म्यूजिक लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाजत। हैव अ ब्यूटीफुल वीकेंड अहेड, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।

0: to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Musti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: It's 7 PM.
0: Jhankar Beats.
3: RM2, Radio Musti.
0: Jhankar Beats.
5: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Junka Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: और M2 के सभी इन लिसनर्स को संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेलकम इन झंकार बीट्स। और झंकार बीट्स में

आज मुख्यतः वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश प्रीमियर लीग एंड आई कैन गिव यू फॉर द टाइम बीइंग द हाफ टर्म रिजल्ट्स ऑफ द मैचेस जो शुरू हुए शाम के 6 बजे फिलहाल 48 मिनट्स प्लेड बिटवीन एस्टन विला एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट और नॉटिंघम फॉरेस्ट ने अभी अभी सेकंड हाफ की शुरुआत में एक गोल बनाया सो फॉर द टाइम बीइंग इट्स एस्टन विला नील नॉटिंघम फॉरेस्ट 1 हाफ टाइम रिजल्ट बोर्नमुथ 1 ब्रेंटफोर्ड 1 आश्चर्य यानी कि चकाने वाली बात ये है दैट चेल्सी अपने ही मैदान में हल सिटी के खिलाफ हार रही है चेल्सी ने 7वें मिनट पर अपना खाता खोला बाय मोगन रोजर्स लेकिन उसके बाद ऑन द 28th एंड 34th मिनट पर हल सिटी के मोहम्मद सलाह तो लिवरपूल कुछ हो गया यहाँ पर हल सिटी में मोहम्मद बेलोमी सबको हिला रहे हैं सो डबल फ्रॉम मोहम्मद बेलोमी चेल्सी 1 हल सिटी 2 49 मिनट्स प्लेड चेल्सी अपने अपने गैलेक्टिक कोज के साथ साथ अभी भी हार रही है अगेंस्ट हल सिटी क्रिस्टल पैलेस 1 इप्सविच टाउन 2 46 मिनट्स प्लेड और इसमें क्रिस्टल पैलेस को एक रेड कार्ड भी मिला है टू एक्सेल डिसाजी ऑन द 34th मिनट सो क्रिस्टल पैलेस प्लेइंग विद ओनली 10 मैन एंड लूजिंग अगेंस्ट इप्सविच टाउन लेकिन मैच अभी इसमें सिर्फ 47 मिनट्स खेले गए हैं लेकिन हम जानते हैं कि ज़्यादातर लोग इस समय जानना चाहेंगे कि लिवरपूल वाले मैच में क्या हो रहा है फिलहाल 53 मिनट्स प्लेड 53 मिनट्स प्लेड एंड द स्कोर इज लिवरपूल 0 फुलहम 0

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Chunka Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: सात बजकर 19 मिनट आप सुन रहे हैं जनकार बीट्स संजय के साथ। Yes, अभी तक we're still waiting for the first goal to be scored at Anfield between Liverpool and Fulham. 63 minutes playing. आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते सभी लोग कह रहे थे कि इसाक अब जागा है, लेकिन लगता है फिर से सो गया है। So 63 minutes played, Liverpool nil, Fulham nil. इससे पहले हमने आपको बताया था नॉटिंघम फॉरेस्ट जीत रहा है ऑन द फील्ड ऑफ एस्टन विला 0-1, ब्रेंटफोर्ड 2 ब्रेंटफोर्ड बोर्नमुथ 2 ब्रेंटफोर्ड 2। मैच अभी समाप्त नहीं हुआ है। 60 मिनट्स प्लेड बिटवीन चेल्सी एंड हल सिटी एंड चेल्सी की हार हो रही है। क्रिस्टल पैलेस 1 इप्सविच टाउन 2, अभी मैच समाप्त नहीं हुआ है। 56 मिनट्स प्लेड। आपको ले चलते हैं स्पेन के लालीगा में, जहां पर रेसिंग सांतांडर ने अलावेस को 2-1 के स्कोर पर हराया। हालांकि रेसिंग को एक रेड कार्ड भी मिला था ऑन द 89th मिनट, और अलावेस ने खाता भी खोला था वेरी अर्ली, लेकिन यसीर जबीरी ने 2 गोल्स दाग कर रेसिंग सांतांडर को जिता दिया। दैट्स अ फुल टाइम रिजल्ट। ओसासुना नील स्पेनियल 2। ये मैच 48 मिनट तक पहुंचा है, जबकि आज के दो अन्य मैचेस होंगे। एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस एल्चे, रियल मैड्रिड खेलेगा अगेंस्ट राये वालुकानो। थोड़ी देर में आपको ले चलेंगे बुंदेसलीगा में, जहां पर 5 मैचेस कुछ ही देर में समाप्त होने वाले हैं, एंड वी विल बी गिविंग यू फुल टाइम रिजल्ट्स।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Junkard Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: जी हाँ, झंकार बेत संजय के साथ ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती 7:30 बज रहे हैं। आज प्रॉमिस्ड आपको ले चलते हैं जर्मनी इन द बुंडेसलीगा, जहां पर आज 5 मैचेस खेले जा चुके हैं और समाप्त भी हो चुके हैं। फुल टाइम रिजल्ट, ऑक्सबू 2 बायर 2, बोरुशिया डॉर्टमुंड 3, पाडेबोर्न 0, फ्रीबू 5, बोरुशिया मोंचेनग्लादबाख 0। इसमें बोरुशिया मोंचेनग्लादबाख के एक खिलाड़ी को रेड कार्ड भी मिला। ऑफेनहाइम 2 स्टुटगार्ट 1, मैंस 1, एंट्राक्ट फ्रैंकफर्ट 3। और आज का लेट मैच होगा बिटवीन कोलोन एंड वेरिया डे ब्रेम। सो आज के मैचेस के बाद समथिंग क्वाइट अनयूजुअल इन द बुंडेसलीगा टेबल, जहां पर पहले स्थान पर वी हैव फ्रीबू। जैसे कि हमने आपको बताया, फ्रीबू ने बोरुशिया मोंचेनग्लादबाख को 5-0 के स्कोर पर पछाड़ा। सो पहले स्थान पर फ्रीबू, 3 matches played, 3 wins, 10 goals scored, 1 conceded and 9 points au compteur. और लीग टेबल यानी कि बुंडेसलीगा टेबल के अंत में कौन है? बोरुशिया मोंचेनग्लादबाख, जिनकी आज 5-0 से हार हुई। यस, बोरुशिया मोंचेनग्लादबाख एट द वेरी बॉटम ऑफ द बुंडेसलीगा टेबल। पहले स्थान पर फ्रीबू, दूसरे स्थान पर बोरुशिया डॉर्टमुंड, इक्वली 9 पॉइंट्स। और सभी लोग सोच रहे हैं कि बायर्न कहां पर है? बायर्न 5वें स्थान पर है। 2 मैचेस प्लेड, 4 पॉइंट्स, 1 ड्रॉ और 1 विन। सो आई सपोज कि बायर्न विल बी प्लेइंग टुमारो। सो फ्रीबू ऑन टॉप ऑफ द बुंडेसलीगा टेबल। थोड़ी देर में आपको देंगे द लेटेस्ट फ्रॉम द प्रीमियर लीग।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Chunka Beats.
1: RM2 Radio Musti.
2: सर्वज का 40 मिनट आपको वापस ले आते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग में, जहां पर 5 मैचेस जो शुरू हुए शाम के 6 बजे अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं, लेकिन अप्रोचिंग द फाइनल क्वार्टर ऑफ एन आवर, और 5 मैचेस जो खेले जा रहे हैं उनमें एक भी टीम की जीत नहीं हो रही है. Yes, quite surprisingly, 5 matches aur 5 matches draw. Aston Villa 1, Nottingham Forest 1, Bournemouth 2, Brentford 2, Crystal Palace 2, Hull City 2, Crystal Palace Chelsea 2, Hull City 2, Crystal Palace 2, Ipswich Town 2, aur Liverpool 0, Fulham 0. Yani ki kisi bhi team ki jeet nahi ho rahi hai. क्या हो रहा है आज पता नहीं. सो लेट्स वेट फॉर अनदर 10 मिनट्स एंड सी अगर इन 10 टीमों में से कोई एक टीम की आज जीत हो पाए या नहीं.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhankar Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: जबकि द मैच इज अप्रोचिंग फुल टाइम, एक नजर दौड़ाते हैं आपके मैसेजेस की ओर. नमस्ते भाई जी, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू माय स्वीट बेबी अरशाद, नेवर फॉरगेट यू. मैसेज है रेबिका जी की ओर से, जो उन्हें बहुत ही प्यार करते हैं. हेलो सन जी, प्रणाम. नेक्स्ट आई एम गोइंग नंदिनी जी की ओर से फॉर हर होल फैमिली. और ये मैसेज है कृष्टि जी की ओर से, कृष्टि निकेत सिंह जी की ओर से फ्रॉम रोजबेल, डेडिकेटिंग नेक्स्ट सॉन्ग फॉर प्यारी बेटी कायरा, बेटा प्रयान रिटर्निंग फ्रॉम रिहर्सल एंड एंजॉयिंग द नाइस सिलेक्शन. वाओ, रिहर्सल यानी कि डांस रिहर्सल. सो बच्चे माइट सर्टेनली बी प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर परफॉर्मेंस इन द फोरकमिंग गणपति फेस्टिवल. ये मोस्ट सर्टेनली. ये अगला मैसेज लेते हैं. Wishing a happy 7th birthday to daughter Vasia.

Mama Anissa, Papa Junaid Jibril, and from grandparents.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Raste 8 baj rahe.
6: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा. गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Junga Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: So full time results of the matches जो आज शाम 6 बजे शुरू हुए local time. Aston Villa 1, Nottingham Forest 2, Bournemouth 2, Brentford 2, Chelsea 2, Hull City 2, Crystal Palace 2, Ipswich Town 3, Liverpool 0, Fulham 0. जो दो अन्य मैचेस निर्धारित हैं आज के लिए और जो बाद में शुरू होने वाले हैं, Tottenham Hotspur खेलेगा अगेंस्ट Everton और Sunderland स्वागत करेगा Arsenal का. फिलहाल लीग टेबल, प्रीमियर लीग टेबल में स्थिति ऐसी है. पहले स्थान पर मैनचेस्टर सिटी, फ्री मैचेस प्लेड 9 points. दूसरे स्थान पर आर्सेनल, फ्री मैचेस प्लेड 9 points. तीसरे स्थान पर हल सिटी, 4 matches प्लेड 8 points. चौथे स्थान पर चेल्सी, जिनकी आज ड्रॉ मैच गई, 4 matches प्लेड 7 points. ब्रेंटफोर्ड पांचवें स्थान पर, 4 matches प्लेड 6 points. और छठे पोजीशन पर लिवरपूल, 4 matches प्लेड 6 points. सो देखते हैं कि आज टॉटनहम हॉटस्पर एवर्टन के बीच मुकाबला कैसे चलता है. एंड ऑल्सो द लेट मैच विल बी बिटवीन संडरलैंड एंड आर्सेनल. कल का महा मुकाबला होगा बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड मैन सिटी.

0: टू रेडियो मस्ती। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय और रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। और केजी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी। RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: झंकार
1: बीट्स RM2 रेडियो मस्ती।
2: झंकार बीट्स।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Chunka Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: Time to take you now to स्पेन की ला लीगा, जहां पर दो मैचेस समाप्त हो चुके हैं। पहले हमने आपको बता दिया था कि रेसिंग सांतोंडेर ने अल्वेस को 2-1 से हरा दिया। अभी ओसासुना की हार हुई अपने होम मैदान में, इस्पानियोल ने उसे 2-0 के स्कोर पर हरा दिया। आज के दो लेट मैचेस होंगे, एथलेटिक बिलबाओ वर्सेस एल्चे और रियल मैड्रिड खेलेगा।

फैंस रायो वालेकानो। सो एक नजर दौड़ाते हैं स्पेन की ला लीगा के टेबल की ओर। पहले स्थान पर 4 मैचेस प्लेड, 4 विंस, 17 गोल्स स्कोर्ड, 2 ओनली कंसीडेड। हम बात कर रहे हैं पहले स्थान पर टीम बार्सिलोना की। Yes, Barcelona in top form, top position. 4 matches played, 12 points. Sans faute, jaise kehte hain. Dusre sthan par Alaves. 5 matches played, 10 points. Tisre sthan par Sevilla. 5 matches played, 10 points. Aur chauthe position par Real Madrid. 4 matches played, 9 points. So, अगर आज रियल मैड्रिड रायो वालेकानो को हरा देती हैं, then it can come ex-aequo with Barcelona on top of the table of Spain की La Liga.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhankar Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: आपके दिल को तन्हा नहीं छोड़ेंगे. वेरी क्विकली टू योर मैसेजेस एंड दिस वन कमिंग फ्रॉम माला जी फ्रॉम बासन रोड काठमांडू लिखते हैं ओम गंग गणपते नमः टेकिंग डिनर एंड एट द सेम टाइम लिसनिंग टू RM2 गुड म्यूजिक फ्रॉम योर साइड संजीव वन सॉन्ग फॉर मी इफ पॉसिबल ऑफ कोर्स बोन एपेची शुभहार माला जी टू यू एंड टू द होल सिसहाय फैमिली नेक्स्ट सॉन्ग आल्सो गोइंग नशन जी के लिए जो पोट्री से हमारा साथ निभा रही है थैंक यू नशन जी ने मैसेज लिखा है आई प्रेड फॉर चेंज सो आई चेंज माई माइंड कोटेशन फ्रॉम रूमी थैंक यू नशन फॉर योर मैसेज एंड दिस नेक्स्ट वन गोइंग उर्मिला जी के लिए जो मोनाको से हमारा साथ निभा रहे हैं लिसनिंग टू यू इन ट्रेन टू मिलान वाओ आशा करते हैं कि अभी भी आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं थैंक यू उर्मिला जी एंड डू एंजॉय योर सफर इन इटली साथ ही साथ नेक्स्ट सॉन्ग गोइंग इन

के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. वेरी गुड इवनिंग सर. चेल्सी ने जीता तो लंबा सफर तक टीम जारी रखेगा सर. मैसेज है दीपक भाई की ओर से. यस दीपक भाई, अंततः चेल्सी की ड्रॉ हुई 2-2 अगेंस्ट हल सिटी. Just informing you that the match between Drumhorse and Everton should ho chuki hai. 3 minutes played, it's nil-nil.

0: 92 रेडियो मस्ती। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। आर के जी क्लासिक प्योर घी विशेष यू अ पायस गणेश चतुर्थी। RM2
1: रेडियो मस्ती
0: झलकार बीट्स।
1: RM2 रेडियो मस्ती
0: झलकार बीट्स।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Junga Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: सो इंग्लिश प्रीमियर लीग बुंदेश लीगा और स्पेन की ला लीगा के टू करने के बाद आपको ले चलते हैं इटली की सीरी आ में जहां पर एक मैच समाप्त हो चुका है बिटवीन जेनोआ एंड फ्रोजिनोने मैच ड्रो गया एक एक इसमें जेनोआ को एक रेड कार्ड भी मिला दूसरा मैच अभी जारी है बिटवीन लाजियो एंड मिलान लाजियो की जीत हो रही है 2-0 के स्कोर पर और आज का लेट मैच होगा बिटवीन अटलांटा एंड कैग्लियारी इटली में लाजियो पहले स्थान पर है 4 matches played, 12 points. Sans faute, jaise kehte hain. Dusre sthan par Roma, 3 matches played, 9 points. Tisre sthan par Inter Milan, 3 matches played, 9 points. Chauthe sthan par Como, Pantui, Frosinone. Aur Juventus, chhatte position par hain. 3 matches played, 7 points. Inter Milan, saatve position par hain. 4 matches played, 7 points.

कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Junga Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: प्रोग्राम के अंत में आपके लिए चलते हैं फ्रांस के लीग ए में जहां पर एक मैच खेला जा रहा है बिटवीन स्ट्रासबूर और मोनाको और 79 मिनट्स प्लेड एंड द स्कोर इज 1-1. आज और चार मैचेस निर्धारित हैं उससे नीस ले हावर एंजे लोरियन टूलूज पारी एफसी और लियों. सो इस फ्रांस के लीग ए में स्थिति कैसी है. After four matches played, Monaco पहले स्थान पर है 10 points के साथ. दूसरे स्थान पर Rennes, 4 matches played, 10 points equally. तीसरे स्थान पर Lyon, 3 matches played, 7 points. चौथे स्थान पर Paris FC. Not Paris Saint-Germain, but Paris FC. 3 matches played, 7 points. जबकि Paris Saint-Germain 14वें स्थान पर है 3 matches played, 2 points. So, अभी तक जितने भी हमने देखे हैं कॉन्टिनेंटल यूरोप में जितने भी चैम्पियनशिप्स देखे हैं काफ़ी उठाव चढ़ाव है बिटवीन द यूजुअल टीम्स. सो यहाँ पर हमारा आपका साथ समाप्त होता है. कल सुबह 7:40 पर आप स्पोर्ट्स ज़रूर सुने स्पोर्ट्स अपडेट, जबकि हमारी आपकी मुलाकात रेडियो मस्ती पर कल शाम 4 हो रही है. टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स, हमें आज्ञा दीजिए और बेशक हमारी ओर से गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं.
3: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा. गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.
1: Jhankar Beats. RM2 Radio Musti.
0: Jhankar Beats.

0: Late Night Grooves.
1: RM2 Radio Musti.
2: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनिशा का प्यार भरा प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है ऑन RM2 रेडियो मस्ती इन योर लेट नाइट ग्रूव्स। और वैसे आज रात अगर आप किसी की यादों में खोए हुए हैं तो ये सफ़र हम साथ मिलकर तय करेंगे। जी हाँ, हर गाना एक एहसास होता है दोस्तों, और हर सुर एक कहानी सुनाती है। बस दिल खोल कर आप बस हमारा साथ दे दीजिए और हर एक गाने को आप दिल से महसूस कीजिए। लेकर आई है बहुत ही खूबसूरत गानों का सिलेक्शंस फॉर यू इन योर लेट नाइट ग्रूव्स ऑन RM2 रेडियो मस्ती। गिनिशा का साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी।

वैसे कहते हैं कि प्यार प्यार की लैंग्वेज अलग होती है और बॉलीवुड म्यूजिक उस लैंग्वेज उस भाषा का सबसे खूबसूरत ट्रांसलेशन है। आज की रात सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स के नाम। कभी कभी जिंदगी में बस एक अच्छा गाना ही काफी होता है दोस्त मूड बदलने के लिए। इसलिए

हाल के लिए आप स्माइल कीजिए, रिलैक्स हो जाइए और रेडियो मस्ती के साथ इस रात को यादगार बना दीजिए। वैसे आप कहीं से भी अगर हमारा साथ दे रहे हो, ये अगला नगमा खासकर आपके लिए।

वैसे आज की रात को यादगार बनाइए और उन गीतों के साथ जो आज भी दिलों पर राज करता है, ये है सुनहरे पल। यादों की किताब के कुछ खूबसूरत पन्ने आज फिर खुलने वाले हैं मेरी जान। जी हाँ, हम बस चाहते हैं कि आप खुश रहें, हमेशा आप मुस्कुराते रहें। और ये अगला गाना आपकी होंठों की मुस्कुराहट के लिए हमारी तरफ से आपके नाम।

रात का ये सुकून और आपका साथ, इससे ज्यादा खूबसूरत फीलिंग और क्या हो सकती है। तो चलिए बॉलीवुड के प्यार भरे नगमों के साथ दिल की हर धड़कन को महसूस करते हैं। अगर आप किसी को याद कर रहे हो तो उस एहसास को रोकना मत मेरी जान। हर याद की अपनी एक मुस्कान होती है और आज की रात उन्हीं यादों के नाम, सिर्फ रेडियो मस्ती पर।

कभी किसी की हंसी याद आती है तो कभी उसकी बातें और कभी सिर्फ एक गाना पूरी कहानी सुना देता है वो एक गाने के जरिए। So stay tuned, stay connected on our radio, Radio Masti, जहां पे गिनिशा बड़े शिद्दत से आपका साथ दे रहे हैं क्योंकि रोमांस अभी शुरू हुआ है। और आज रात एक छोटा सा प्रॉमिस कीजिए, जो भी हो दिल में प्यार और चेहरे पर मुस्कान हमेशा रहेंगे, बाकी सब रेडियो मस्ती और बॉलीवुड संभाल लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये अगला नगमा खासकर आपके लिए और उनके लिए जो आपके दिल में बसते हैं।

हर गाना एक पोस्टकार्ड की तरह होता है किसी की यादों से भेजा हुआ आज देखते हैं कौन सा गाना आपके दिल का एड्रेस ढूंढ लेता है कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है जिंदगी में और उस खामोशी को सिर्फ एक खूबसूरत मेलोडी ही समझ सकती है ये है आपका लेट नाइट ग्रूव्स आपके मनपसंद रोमांटिक गानों के साथ बस यूं ही आप ही साथ देते

प्यार में सबसे खूबसूरत चीज होती है उम्मीद और जब तक उम्मीद है तब तक हर गाना एक नई कहानी लिखता रहेगा तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ अगला रोमांटिक ट्रैक सुनते हैं जो हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन तमाम सुनने वालों के नाम जो मॉरिशस के बाहर भी होते हुए हमारा साथ दे रहे हैं दूर है लेकिन दिल के करीब हो आप थैंक यू सो मच जी अक्रॉस द ग्लोब इतने सारे हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स इस वक्त इन खूबसूरत रोमांटिक गानों का मजा ले रहे हैं तो ऑन रेडियो मस्ती दिस वन गोज आउट टू यू

रात की हवा, चांद की रोशनी और बॉलीवुड के अनमोल रोमांटिक गाने, बस इतना ही तो चाहिए एक परफेक्ट नाइट के लिए। थैंक यू फॉर मेकिंग रेडियो मस्ती अ पार्ट ऑफ योर नाइट। लाइफ बहुत फास्ट चलती है दोस्तों, लेकिन आज कुछ देर के लिए स्लो हो जाइए। हर नोट को महसूस कीजिए, हर लिरिक्स को दिल में उतरने दीजिए। ये वक्त सिर्फ आपका है, आपके प्यार भरे गानों का। तो चलिए, स्पेशली स्ट्रेट अवे फ्रॉम माई हार्ट टू योर्स, ये अगला नगमा आपके नाम।

रात का ये सुकून और बॉलीवुड के एवरग्रीन रोमांटिक गाने, जी हाँ, इसे खूबसूरत कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है। मैं हूँ आपका दोस्त गिनिशा, जो आपका साथ निभा रही हूँ और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा है ये खूबसूरत गानों का सिलेक्शन। और अगला गाना शायद आपके दिल की धड़कन बन जाए, किसको पता। हर लव स्टोरी परफेक्ट नहीं होता है मेरी जान, लेकिन हर लव स्टोरी स्पेशल जरूर होती है। आज उन्हीं इमोशंस को सेलिब्रेट करते हुए, हाँ जी, अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे आपके प्यार के नाम।

Well guys, I really hope कि हर एक गाना आपको दिल से अच्छा लग रहा है और बस आप भी हमारे साथ गुनगुना रहे हैं। तो वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि प्यार क्या होता है, तो शायद उसके बहुत सारे डेफिनेशंस होंगे आपके लिए, लेकिन प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं होता है, इस बात को याद रखना। कभी इंतजार का, कभी दुआओं का और कभी सिर्फ एक मुस्कान का नाम भी होता है प्यार। आज के रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग्स आपके दिल को जरूर छू जाएंगे। बिल्कुल हमारे प्यारे प्यारे रेडियो मस्ती फैमिली, अगर आप किसी को मिस कर रहे हो, आप किसी की यादों में खोए हुए हो, कहना मुश्किल लग रहा है, तो आज का गाना उसकी जगह बोल देगा। दिल से सुनिए, क्योंकि म्यूजिक कभी झूठ नहीं बोलते।

तो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, रात जितनी खामोश होती है दिल की बातें उतनी ही गहरी हो जाती हैं। आज की रात बॉलीवुड के रोमांटिक मेलोडीज के नाम, जी हाँ, जो बात लफ्जों में ना हो पाए शायद एक गाना कह दे आपके दिल की बात। वैसे अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, बालकनी में चाय के साथ बैठे हुए हैं या बस अपनी दुनिया में खोए हुए हो, तो रेडियो मस्ती आपका परफेक्ट कंपेनियन है। तो चलिए प्यार के रंगों में रंग जाते हैं। ये अगला नगमा हमारी तरफ से आपके नाम।

तो चलिए जी, थैंक यू सो मच, दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारा साथ दिया इस खूबसूरत से शो में, इन योर लेट नाइट ग्रूव्स। गिनिशा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखना और बस कीप ऑन एंजॉयिंग द गुड म्यूजिक ऑलवेज ऑन आवर एंटी रेडियो मस्ती। शुभ रात्रि एंड शब्बा खैर।

ये कचतुर नार हम छोड़े गए।

0: घोड़ा चतुर एक पैर है ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला,
1: एक चतुर नार

0: RM2 Radio Masti.
1: अरे जल गई जल गई जल गई।